प्रकृति हमारे लिए जिस कर्तव्य का विधान करती है उसका विरोध करना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसी कारण उसे छोटा नहीं कहा जा सकता। कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य

उच्चता या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं। देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव से करता है। भिन्न भिन्नाते रहने वाले पुरुषों के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे कभी किसी चीज से संतोष नहीं होता और फलस्वरूप उसका जीवन दुभर हो उठना और असफल हो जाना स्वाभाविक है। हमें चाहिए कि हम कार्य करते रहें, जो कुछ हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें, अपना कंधा सदैव काम से भिड़ाए रखें, तभी अवश्य हमें प्रकाश की उपलब्धि होगी।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू, आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। हमारे स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2026 अक्टूबर महीने का शुक्रवार दिन और तारीख है 2। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और तेज दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक गैर अत और तकनीकी अभियंता MZ2। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहाने सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों अब एक नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले प्रोग्राम्स पर। चमच के 10 बजे दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ आपको एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा। चमच के 40 मिनट पेश है गालो दाली न्यूज, अपने क्षेत्र के समाचार अपनी भाषा में। 6:45 मिनट पेश है सुबह सवेरे, जहां योगा एक्सरसाइज हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ आपको एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:10 सुने या पताने दैनिक न्यूज 7:15 रहेगा मॉर्निंग इंटरटेनमेंट प्रोग्राम जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए तागिन दैनिक न्यूज। सात बज के 7:40 पेश है सदाबहार सूदी म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8:00 सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्रीय समाचार। 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में। 8:30 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर की खास खबरों के साथ।

0: 9:05 रहेगा इंग्लिश न्यूज, 9:10 सुनिए, एंजॉय कीजिए फिल्मी गपशप, जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स, मूवी रिव्यूज, ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की बातें। 10:10 शुरू होगा रेडियो ऑन डिमांड, जहां बजेंगे आपके पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट। तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ, क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से

0: आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को केवल एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। विदेशों में भी भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकास का लाभ किसी भी नागरिक से न छूटे, इसके लिए संवेदना और समावेशिता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 125वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज राजघाट पर गांधी जयंती और विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किए हैं। कार्यक्रम की सुगमता तथा यातायात सुचारू एवं सुरक्षित रखने के लिए राजघाट, रिंग रोड और आसपास की सड़कों पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
2: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई की उड़ान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें आबुधाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। जापान में 20वें एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत अब तक 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदक सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has said 21st century

0: दोस्तों, ये तो भक्ति गीत उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव शुरुआती होगी। ये आकाशवाणी ईटानगर का रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे कालो भाषा में समाचार।
1: आकाशवाणी ईटानगर हिलो पिरापोल गे आलो लोनी तारीख नाने लुगार होके गालो मेंकेन आगमन मेलेन जे दाखनांगो दक्षापेते प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स संतोष कुमार मुमलो गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनायक ने लोक

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

वेलकम बैक दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कालो भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर कारण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर ये समय है आपके मनपसंद सुबह के सिलसिले का, सुबह सवेरे। नमस्कार ईटानगर और सुप्रभात अरुणाचल। मैं हूं आपके अपने साथी आरजे याजू और उम्मीद करती हूं कि दोनों पोलों की पहली धूप आपके आंगन तक पहुंच चुकी होगी। पहाड़ों की ठंडी हवा, खिड़की के बाहर पत्ती पर थमी हुई शबनम और हाथ में गर्म चाय का प्याला। दिन की शुरुआत अगर ऐसी शांत और ताजा हो तो पूरे दिन का मिजाज ही बदल जाता है। दोस्तों, अक्सर हम सुबह उठकर सबसे पहले अपनी घड़ी देखते हैं या फोन पर आने वाले कामों की लिस्ट, लेकिन कभी ठहर कर सोचिए, क्या दिन शुरू होने से पहले हमने खुद के साथ 2 मिनट बिताए? हमारा शरीर और हमारा मन, यही दोनों हैं जो हमें सुबह से शाम तक हर जिम्मेदारी निभाने की ताकत देते हैं। आज सुबह सवेरे में हम बात करेंगे इसी ताकत को बनाए रखने की, थोड़ा योगा, थोड़ी बॉडी मूवमेंट और रोजमर्रा के छोटे छोटे हेल्थ हैबिट्स। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गीत जो आपके इस सुबह के माहौल को और भी सुहाना बना दे, सुनिए ये गाना।

खूबसूरत नगमा आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। सुबह का ये वक्त आमतौर पर बागडोर से बड़ा होता है, लेकिन अगर इसमें से सिर्फ 15 या 20 मिनट हम योगा के नाम कर दें तो उसका असर पूरा दिन नजर आता है। योगा को अक्सर लोग सिर्फ मुश्किल आसनों से जोड़ कर देखते हैं, जबकि योगा असल में आपके शरीर और सांस के बीच का एक संवाद है। सुबह की शुरुआत आप प्राणायाम से कर सकते हैं। खुली हवा में बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और लंबा गहरा सांस लेने का अभ्यास कीजिए। अनुलोम विलोम और भस्त्रिका हमारे फेफड़ों को नई ताजगी देते हैं और खून में ऑक्सीजन का बहाव बढ़ाते हैं। इसके बाद अगर आप सूर्य नमस्कार के चक्कर से 6 राउंड्स भी नियमित रूप से करते हैं तो शरीर की हर मांसपेशी खुल जाती है। जो लोग डेस्क पर लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं उनके लिए तदासना और भुजंगासना रीढ़ की हड्डी और कमर की दर्द को ठीक रखने के लिए बेहतरीन विकल्प है। योगा का मकसद शरीर को थकाना नहीं बल्कि उसे अंदर से सहज और स्थिर महसूस कराना है। तो इसी शांति और सहजता के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज का दूसरा गीत।

स्वागत है एक बार फिर सुबह सवेरे में। अभी हमने बात की कि शरीर को लचीला और मन को शांत रखने की, लेकिन हमारे शरीर को दिन भर चुस्त रखने के लिए फिजिकल एग्जर्शन या कार्डियो मूवमेंट की भी उतनी ही जरूरत होती है। अगर आपको योगा करने का मन ना हो तो नियमित व्यायाम को अपनी आदत बनाएं। व्यायाम का मतलब हमेशा जिम जाना या भारी वजन उठाना ही

नहीं होता। हमारे ईटानगर की ऊंची नीची सड़कों पर 30 मिनट की तेजी से की गई ब्रिस्क वॉक किसी भी कार्डियो वर्कआउट से बेहतर है। ढालन पर चढ़ते वक्त आपका हार्ट रेट बढ़ता है, जो दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा घर पर ही बेसिक बॉडी वेट मूवमेंट्स जैसे स्क्वाट्स, थोड़े आर्म रोटेशन और हल्की स्ट्रेचिंग हमारे जॉइंट्स की लुब्रिकेशन को बरकरार रखते हैं। उम्र चाहे जो भी हो, हर दिन थोड़ा पसीना बहाना और मसल्स को चैलेंज करना हमारी बोन डेंसिटी और एनर्जी लेवल को जिंदा रखता है। याद रखिए दोस्तों, एक घंटे का आलस पूरे दिन की थकान बन जाता है और 15 मिनट की मेहनत पूरे दिन की ताजगी। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ सुनते हैं हमारा अगला गाना।

दोस्तों, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आते हुए बात करते हैं उन छोटी आदतों की जो बिना किसी मेहनत के हमारे सेहत को सुधार सकती है। सबसे पहले नियम, सुबह उठते ही खाली पेट कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी पीना। यह आपके मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है और रात भर जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। दूसरी बात, सुबह का नाश्ता कभी मत छोड़िए। अक्सर जल्दबाजी में लोग बिना खाए निकल जाते हैं, जिससे दोपहर आते आते कंसंट्रेशन और एनर्जी दोनों गिरने लगते हैं। अपने नाश्ते में प्रोटीन और सीजनल फूड जरूर शामिल कीजिए। और आखिरी बात, दिन भर में पानी पीने का ध्यान रखिए और कम से कम काम के दौरान हर 1 घंटे में 2 मिनट खड़े होकर शरीर को स्ट्रेच जरूर कीजिए। सेहत किसी एक दिन की मेहनत से नहीं बनती, ये हमारे रोज के छोटे फैसलों का नतीजा होते हैं। घड़ी की सुइयां बता रही है कि आप सुबह सवेरे के सफर को यहाँ समाप्त करने का वक्त आ चुका है। उम्मीद है आज की बातें आपके दिन को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। तो हमारे साथ अगले कार्यक्रम के बने रहिए। तब तक के लिए आप सुनते रहिए अपतानी बोली में समाचार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अब पता नहीं बोली में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का रन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। दोस्तों अब वक्त हो गया है आपके मनपसंद कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट का, तो नमस्कार ईटानगर और शुभ प्रभात अरुणाचल। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त और होस्ट आरजे याजू। उम्मीद है आप सभी की सुबह शांति ताजगी और नई उमंग के साथ शुरू हुई होगी। तो दोस्तों हर सुबह हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम दिन की शुरुआत वही पुरानी बागडोर में करें या फिर कुछ पल ठहर कर अपने आसपास की दुनिया, उसके इतिहास और वर्तमान से जुड़े। हमारे इस प्रोग्राम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट का मकसद भी यही है, जहां अगले आठ पौन घंटे हम और आप मिलकर तय करेंगे जानकारी और मनोरंजन का एक संतुलित सफर। इस सफर में हम पहले

ग्लोबल लेवल पर आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं का गवा रहा है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज ही के दिन साल 1950 में चार्ल्स गोल्ड्स की बनाई हुई मशहूर कॉमिक स्ट्रिप पीनट्स पहली बार अखबारों में प्रकाशित हुए थे, जिसके जरिए चार्ली ब्राउन और स्नूपी जैसे किरदार हमेशा के लिए दुनिया की मुस्कुराहट बन गए। साल 1967 में थुरगुड मार्शल ने यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट के पहले अफ्रीकन अमेरिकन जस्टिस के रूप में शपथ ली, जो आगे चलकर सिविल राइट्स मूवमेंट की एक बड़ी मिसाल बना। साल 1835 में बैटल ऑफ गोंजेल्स लड़ा गया था, जिसे टेक्सस रेवोल्यूशन की पहली लड़ाई माना जाता है, और इसने नॉर्थ अमेरिका की सियासत का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, इतिहास की इन बातों को जब हम तहर कर देखते हैं तो एक बात समझ आती है, हर बड़ा परिवर्तन या आजादी, चाहे वो किसी देश की हो या समाज के किसी वर्ग की,

दोस्तों ये सुन रहे थे आप हमारा पहला गीत आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के प्रोग्राम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में। तो दुनिया के बाद अब आते हैं हमारे अपने देश भारत के इतिहास पर। 2 अक्टूबर का दिन भारत के आदर्शों, नैतिकता और आजादी की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले साल 1869 में गुजरात के पोरबंदर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ। उनके सत्य और अहिंसा के विचारों ने न सिर्फ भारत को आजादी दिलाई बल्कि पूरी दुनिया को सिखाया कि बिना किसी हथियार के भी बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। साल 1904 में इसी दिन हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ। उनका दिया गया अमरगान जय जवान जय किसान आज भी हमारे सीमाओं के रक्षकों और हमारे अन्नदाताओं के सम्मान के प्रतीक है। साल 1952 में गांधी जयंती के इस अवसर पर भारत सरकार ने पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की थी ताकि विकास का फायदा शहरों से निकलकर देश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचे। और साल 2014 में इसी तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया जिसमें सफाई और स्वच्छता को किसी एक विभाग का काम न रखकर हम सभी देशवासियों का एक सामूहिक कर्तव्य बना दिया। सच बताइए दोस्तों, जब भी हम 2 अक्टूबर को शास्त्री जी की सादगी और गांधी जी की अहिंसा की बात करते हैं तो क्या हम उसे सच में जी पाते हैं? अगर हम अपने गुस्से को थोड़ा संभाल सकें और रास्ते चलते या अपने आसपास थोड़ी सफाई का ध्यान रख सकें तो किसी बड़े भाषण के मुकाबले यही इन महान हस्तियों के लिए हमारी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आगे बढ़ने से पहले मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में वक्त है आज के दूसरे गीत का।

गीत संगीत के बाद स्वागत है एक बार फिर मॉर्निंग इंफोटेनमेंट के अंतिम दौर में। अब रुक करते हैं हमारे अपने राज्य की तरफ और देखते हैं आज के दी अरुणाचल टाइम्स के मुख्य समाचार क्या कहते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर गैब्रियल देनवांग वांगसू ने कहा है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और नई साइंटिफिक टेक्निक सिर्फ रिसर्च सेंटर्स तक सीमित न रहकर सीधे जमीन पर किसानों के खेत तक पहुंचनी चाहिए ताकि उनकी आमदनी और पैदावार दोनों में सुधार हो सके। अरुणाचल प्रेस क्लब और अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने मीडिया एथिक्स और बन कवरेज को लेकर एक स्पष्ट मर्यादा तय की है। उनका निर्देश है कि बन के दौरान पत्रकारों को निष्पक्ष रहकर रिपोर्ट करना चाहिए बिना किसी डर या किसी के पक्ष में जाए। सीपीसीसी चीफ ने स्टेट के बॉर्डर एरियाज के मुद्दे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के असर और वाटर इश्यूज को उठाते हुए सरकार से इन मामलों पर गंभीरता से और जल्द ध्यान देने की मांग की है। कन्फेडरेशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने सरकारी मुलाजिमों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ी लंबित शिकायतों का जल्द निवेदन निकालने की अपील की है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य प्रणाली में संतुलन बना रहे। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में चल रहा पखवाड़ा बाढ़ का हिंदी पखवाड़ा औपचारिक रूप से समाप्त हो गया है, जहां अलग अलग साहित्य और भाषाई प्रतियोगिता के जरिए छात्रों ने हिस्सा लिया है। तो दोस्तों, ये था आज का मॉर्निंग इंफोटेनमेंट, जहां हमने इतिहास के पन्नों से लेकर आज की ताजा खबरों तक का सफर तय किया। उम्मीद है ये जानकारियां और बातें आपके दिन की शुरुआत को रोचक बनाएंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM।

भारत मंदा फान लो दोंगवाम दुकुला बिफालें दुखो मोलो सजे मोकुलो संचाने दे दंगा पब्लिक सर्विस लो रिपा संपा मोदुकुब रिगदुकुने अला बिफालें दुखो सलूमो योग 21st सेंचुरी सो इंडिया ना न्यू वर्क कल्चर ना अलरोंग ब रिबाम गग दुखुने सो विकसित भारत ना अलरोंग बरिलिन ग दुखुब रिग दुखुने ला मेफालिन दुखु सो अलोलो मोदी ने मे यूपीएससी सेंटेनरी ना मंगब दुखुला कोमेमोरेटिव कॉइन ओके कोमेमोरेटिव स्टैम्प गुनी मिलिन जिला फुला दिगनी खुबा नेशन वाइड एक दिन एक घंटा एक साथ क्लीनिनेस ड्राइव गुनी स्वच्छते ही सेवा 2026 कैंपेन गुनी सलूलो कर रिडाप्ते ग दुखुनेला में फादुखु सी क्लीनिनेस ngai अलब रिलिंग दुब सैनिटेशन ग अलब रिलिंग दुखुब रिबाम ग दुखुनेला फालिन दुखु सो यूनियन पब्लिक ते दे तो सो यूनियन मिनिस्टर स्टेट मलंग लो चीफ मिनिस्टर्स सीनियर ऑफिसर्स और कसकन स्वच्छते ही सेवा 2026 ग रिबाम ते ग दुखुनेला फालिन दुखु सोग स्वच्छते ही सेवा अनाम सी बा स्वच्छ भारत ओक विकसित भारत अला अमेन गा पेलिन गे कुला रिवाम गा दुखुने ला में फालिन दुखो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गे संतोष कुमार मुयो स्टेट लो गवर्नर अरुणाचल प्रदेश के केटी फरनायक ने लोक भवन लो कारक सुला गामा गुरोरक बिरक सुला रिगनी खुबला में फालिन दोको सो स्टेट लो फ्लोरा और कफाउना प्रोटेक्शन लखंग ब काम रिबाम दोको ब सो अर्बन एरिया लो इकोलॉजिकल बैलेंस ओम अरुणाचल प्रदेश लो अलरोंग ब फैलिन दोको बला सकेन गमांग रोम रोजक सोगुनि कुबेला मिफादुकु गवर्नर ने मि पीसीसीएफ नि निला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ngabe pakunam nga sakena ribam sangbam kholo menang a chesik modoba awareness som ala rigeto do bari fela mifalin duku राजीव गांधी यूनिवर्सिटी लो मयो हिंदी पकवारा 2026 nga alarong ba sobam gen kubela mifaduku सोम आरजी योग इंडी सेल रिगेगन कुब सोम अंकुन सेप्टेम्बर फोलोग आलो लोरिंग लो लोप ने ने लोक लाराय कुला हिंदी भाषा और रोजगार अला अमेन गा फैलिन गई कुला रिबाम गे दुखुने अला मिफा दुखु सो रेडियो तो कॉम्पिटिशन गुका रिबाम गंज को बेला में फादर दुखो अरुणाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लुम्बियो नेशनल ब्लड डोनेशन कैंप गुनी रिबाम गंज को बेला में फादर दुखो सकेन अलुंगा राज्यसभा के एमपी ताई तगक दुंपो चुक बेरी गई खुला ब्लड डोनेशन देंगा सोवाम लखुला रिगंज को बेला में फालें दुखो सोम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन एला डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आर के मिशन हॉस्पिटल ट्रीम्स सोबम न्याला रिगनी खुबला में फादर दुखो मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर लोक में फाकुना अरुणाचल प्रदेश के करा दादी पफम पारे लफारा दा लोअर सियांग अंजाओ चंगलंग तिराप और कलोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के मोद दलो निदोंगा होकिन फकेला में फादुकु
So the district de delo dogum dori ang takla nya donga achalabo o kindula me fada doku seruga tagin gamba inung mentam sangka hebo

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तागिन बोली में समाचार आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। अब वक्त हो चला है एक ऐसे सिलसिले का जिसका इंतजार हर उस शख्स को रहता है जिसे बीते दिनों की मिठास और संगीत की गहराई से लगाव है। यह समय है आपके सबसे अजीज संगीतमय कार्यक्रम सदाबहार का। नमस्कार ईटानगर और सुप्रभात हमारे प्यारे अरुणाचल प्रदेश के कोने कोने में सुन रहे सभी श्रोताओं को। दोस्तों, जिंदगी चाहे कितनी भी तेजी से आगे निकल जाए, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो वक्त की धूप में भी पुराने नहीं पड़ते। वो लफ्ज जो सीधे दिल में उतरते थे, वो साज जिन्हें सुनकर लगता था जैसे संगीतकार ने अपना दिल निकाल कर रख दिया हो। सदाबहार में हमारा प्रयास यही होता है कि हम उन्हीं कलजियों धुनों के सहारे आपकी सुबह को थोड़ा ठहराव, थोड़ा सुकून और पुरानी यादों का आंचल दे सके। तो आइए यादों की इस मनमोहक महफिल का आगाज करते हैं पिछले दौर के एक बेहद खूबसूरत और रूहानी नगमे के साथ। सुनिए और महसूस कीजिए।

पुराने संगीत की इस मिठास के साथ अब वक्त है दिन की सबसे अहम पड़ाव का। अगर आप सुबह किसी जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं या आने वाले दिनों के सफर की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर ध्यान से सुनिए हमारा ये विशाद मौसम बुलेटिन। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज 2 अक्टूबर 2026 को हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश और राजधानी शहर का मौसम कैसा रहने वाला है, आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी राजधानी

कि रात का न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। सुबह के समय हवा में नमी यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग 88-90% के बीच दर्ज की गई है। आईएमडी ईटानगर के अनुमान के अनुसार आज दिन भर आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे यानी जनरली क्लाउडी स्काई बने रहेगी। कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना है। दोपहर के बाद गुनगुनी धूप और बादलों की आवाजाही चलती रहेगी और आज शाम का सूर्यास्त लगभग

अब बात करते हैं समस्त अरुणाचल प्रदेश के जिलों की। मॉनसून की वापसी के इस दौर में राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज काफी अलग नजर आ रहा है। पश्चिमी और ऊंचे वाले पर्वतीय जिले जैसे वेस्ट कमिंग और तवांग, इन ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में गुलाबी सर्दी का आगाज हो चुका है। तवांग और दिरंग जैसे क्षेत्रों में सुबह और शाम के

ट्रैफिक जैसे ईस्ट कमिंग, लोअर सुबनसिरी, अपर सुबनसिरी और पापनपारे। इन मध्य पर्वतीय वादियों में मौसम काफी सुहाना बना रहेगा। जीरो वैली में दिन का तापमान बेहद अनुकूल और रात में अच्छी खासी ठंडक महसूस की जा रही है। आईएमडी के अनुसार इन जिलों के एक दो स्थानों पर थंडर शावर या बूंदाबांदी होने की संभावना बनी हुई है।

Siang Belt or Valley Region जैसे East Siang, West Siang और Upper Siang. पासीघाट और सियांग नदी के तटवर्ती इलाकों में दिन के वक्त हल्की गर्मी और उमस महसूस हो सकती है, जहां अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. लेकिन दोपहर ढलने के बाद नदी की ठंडी हवाएं और आकाश में गरज के साथ हल्की फुल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है. पूर्वी जिले जैसे लोहित, तमसाई, चांगलांग और तिराप, प्लेन्स और फुटहिल बॉर्डर्स एरियाज, इन जैसो एरिया में दिन का मौसम गर्म और अपेक्षाकृत नम रहेगा, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ड्राई और शांत रहने की संभावना है. IMD ईटानगर के मुताबिक राज्य के किसी भी जिले के लिए फिलहाल कोई सीवियर या हेवी रेनफॉल वार्निंग जारी नहीं की गई है, परंतु ऊंचाई वाले पहाड़ी रास्तों पर सफर करने वाले वाहन चालकों को सुबह के वक्त हल्की धुंध और फिसल को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. मौसम के इस लंबे और विषाद अपडेट के बाद चलिए वापस लौटते हैं हमारे संगीत के खजाने की तरफ. पेश है सुनहरे दौर का ये दूसरा अमर गीत.

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500.
2: सदाबहार नगमों की बात ही अलग होती है दोस्तों. हर लफ्ज एक तस्वीर और हर धुन एक दास्तां. तो दोस्तों ये था आज 2 अक्टूबर 2026 के मौसम का पूरा हाल और हमारे संगीत का सिलसिला. उम्मीद है मौसम की ये विस्तार पूर्वक जानकारी आपको अपने दिन की योजना बनाने में जरूर मदद करेगी. चाहे आप ईटानगर की हरी भरी घाटियों में हो या तवांग की ठंडी फिजाओं में, मौसम चाहे कैसा भी रूप बदले, अपने मन के मौसम को हमेशा खुशनुमा बनाए रखिए. वक्त की पाबंदी अब हमसे आगे बढ़ने की इजाजत मांगती है. सदाबहार के इस सफर को यहां समाप्त करते हुए मैं आपसे लेती हूं विदा. तब तक के दिल दोस्त आप सुनते रहिए ये गीत, और इस गीत के बाद आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अबीब जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मित के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार हैं। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों

में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजयघाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसके उपरांत श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। देश भर की 2,55,000 से अधिक ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएं तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। इन ग्राम सभाओं में आम नागरिक और स्थानीय प्रतिनिधि एक साथ बैठकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अपने गांवों के विकास की प्राथमिकताओं को तय करेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: गुजरात में इस अवसर पर बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने खादी और पॉली वस्त्र के उत्पादन पर 30% विशेष बाजार प्रोत्साहन की घोषणा की है।
2: यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी के संकल्प को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस प्रोत्साहन सहायता का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को अधिकृत खादी बिक्री केंद्रों पर छूट के रूप में मिलेगा। आगामी त्योहारों के सीजन में स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रमुख शहरों में विशेष खादी प्रदर्शनी सह बिक्री मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाएं आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्य प्रवाह को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। मंत्रालय ने बताया कि ब्यूरो ने सुरक्षा मंजूरी के तरीके को आसान बना दिया है। अब सुरक्षा मंजूरी किसी विशिष्ट वर्ग या प्रक्रिया पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि विमानन संस्थाओं की 9 पहचानी की श्रेणियों पर लागू होगी। मंत्रालय ने बताया कि ये सुधार इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अवीब जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार ओमानी सह पायलट को कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मित मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और सेवा के निरंतर संकल्प से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत है ऐसा ही एक उदाहरण, जिसमें इस सोच को पंबन पुल के जरिए धरातल पर उतारा गया।
4: रामेश्वरम में नया बना पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। इसका उद्घाटन पिछले साल 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
5: द न्यू पंबन ब्रिज टू रामेश्वरम ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन टुगेदर। ए टाउन दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड इज बीइंग कनेक्टेड बाय अ 21st century engineering wonder. For many decades, there was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel.
4: पुराना ऐतिहासिक पंबन पुल श्रीलंका के साथ व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए बनाया गया था। 1870 के दशक में शुरू हुए इस पुल का निर्माण लगभग 2 किलोमीटर तक फैला था, जिसमें 143 पिलर थे और इसे 1914 में चालू किया गया था। नए पुल के वर्टिकल लिफ्ट में 72.5 मीटर का सेंट्रल स्पैन है, जो समुद्र में जहाजों के गुजरने के लिए 17 से 22 मीटर ऊपर उठ सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में मदुरै डिवीजन के रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पुल के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए 3000 टन से ज्यादा लोहे का इस्तेमाल किया गया था। आईआईटी मद्रास और बॉम्बे के विशेषज्ञों ने नवंबर 2024 में इसके डिजाइन की जांच की थी। इस पुल से अरब सागर का शानदार नजारा भी दिखता है। खाड़ी के ऊपर बना यह सबसे लंबा पुल 1988 तक रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग था। पुराना पंबन पुल उन बड़े चक्रवातों से भी बच गया था जिन्होंने धनुषकोडी को नष्ट कर दिया था। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री चौहान पोंडा में एक कार्यक्रम में किसानों और आम नागरिकों से संवाद करेंगे।
6: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा में गोवा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत करेंगे। इस पहल के तहत गोवा में उत्पादित कृषि उपज की ब्रांडिंग और पैकेजिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने गोवा के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें पहचान दिलाने के उद्देश्य से गोवा फ्रेश ब्रांड विकसित किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य भर के किसानों और महिलाओं को केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। इस दौरान कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, किसानों के कल्याण, ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे और वहां समीक्षा बैठक करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास से पूरा किया जाना चाहिए। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गोबर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही।
7: सरकार ने योजना ऐसी बनाई है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक नया इकोसिस्टम बना, जिसके द्वारा जो सीबीजी प्लांट लगाना चाहते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सहायता मिलेगी 2 करोड़ की। क्रेडिट गारंटी भी है एमएसएमईज के लिए, और अगर आप महिला एंटरप्राइज है आपका तो उसकी 20 करोड़ की जगह 25 करोड़ की गारंटी होगी।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से युद्ध समाप्त करने का मुद्दा उठाते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि भले ही भारत का रुख इस मामले में तटस्थ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के जरिए शीघ्र शांति स्थापित करने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में अंकिता भगत, कीर्ति

0: शर्मा और कुमकुम मोहोत की भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन और 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया पर रोमांचक जीत दर्ज की। ये भारत का एशियाई खेलों में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है। इस पदक के साथ ही भारत अब तक 11 स्वर्ण 23 रजत और 33 कांस्य सहित 67 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले वर्ष होने वाले क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। प्रतियोगिता में 14 टीमों के कुल 57 मैच खेले जाएंगे। भारत का पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
1: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई के विमान में भारतीय पायलट स्मित मच्छार के अदम्य साहस की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने शौर्य गाथा शीर्षक से दिया है, कॉकेट में जानलेवा हमले के बावजूद नहीं टूटा हौसला। भारतीय पायलट स्मित मच्छार की सर्वत्र सराहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले 9/11 जैसी साजिश नाकाम की। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, भारतीय पायलट स्मित को पूरी दुनिया ने किया सलाम। जनसत्ता के अनुसार फ्लाई दुबई विमान गिराने के प्रयास की जांच शुरू। दैनिक जागरण का शीर्षक है, परीक्षा तंत्र में बदलाव जरूरी। यूपीएससी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, सुभाष चंद्र बोस ने संस्कृत में दी थी सिविल सेवा परीक्षा। अमर उजाला के अनुसार मोदी ने कहा, अब सरकार माई बाप नहीं, नागरिक देवो भव। पंजाब केसरी ने वित्त मंत्रालय का बयान दिया है, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत बनी भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरी तिमाही में 7.3% वृद्धि का अनुमान, जीएसटी संग्रह 2,03,000 करोड़ रुपए के पार, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 7 माह के उच्च स्तर पर। लोकसत्ता की सुर्खी है, महानदी विवाद पर दिल्ली में बड़ा मंथन, समाधान की राह में बनी सहमति। गृह मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक। राजस्थान पत्रिका ने तरंग शक्ति 2026 शीर्षक से दिया है तेजस संग उड़ान, फ्रांसीसी मेजर जनरल बोले याद आया मिराज 2000। जोधपुर एयरबेस में भारत और फ्रांस के एयर क्रू ने साझा किए ऑपरेशनल अनुभव, रफाल की हवा में ईंधन भरने की प्रक्रिया भी देखी। एशियाई खेलों पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ग्रीको रोमन कुश्ती में 64 साल बाद रजत पदक, कभी दूध बेचते थे पानीपत के सिवाच, आज चांदी से चमके। सेलिंग में प्रिंस और मनु ने जीता रजत, बाढ़ में पिता को खोया, अब पानी पर ही रचा इतिहास। पत्र के अनुसार हॉकी में पाकिस्तान को हराकर भारत की नजरें गोल्ड पर, क्रिकेट में पाक से होगा फाइनल मुकाबला।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मित के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay, the headlines. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on the birth anniversary today. Special Gram Sabhas to be convened across the country on the occasion of Gandhi Jayanti. Civil Aviation Ministry initiates series of reforms to make aviation security processes simpler and quicker. Saudi Arabia hands over to UAE Omani co-pilot who made abortive attempt to crash Fly Dubai's Tel Aviv-bound plane. Brave Indian pilot Smit Machar airlifted to Abu Dhabi for treatment, India closely following his health condition. Russian President Vladimir Putin says Prime Minister Narendra Modi has very good ideas to find mutually acceptable solution for Ukraine conflict. And India bags gold medal in the women's recurve archery team event at the Asian Games in Japan. The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A series of functions have been organized across the country and by Indian missions abroad. A Sarva Dharma Prarthana Sabha was organized at his Samadhi Rajghat in the national capital.

0: वेलकम बैक दोस्तों, दिल्ली और शिलोंग से प्रसारित समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर अब घड़ी में वक्त हुआ है हमारे शैक्षिक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का। स्वागत है आप सभी का हेलो ईटानगर में।
1: हेलो ईटानगर।

0: ハローインターネット、
1: नमस्कार ईटानगर और सुप्रभात हमारे प्यारे अरुणाचल प्रदेश के सभी विद्यार्थियों, अध्यापकों और प्रबुद्ध श्रोताओं को। मैं हूं आपके अपने आरजे याजू। दोस्तों, हर सुबह जब हम खिड़की से बाहर हमारी इन शांत पहाड़ियों और ढालनों को देखती हूं, तो मन में एक अजीब सा सुकून होता है। लेकिन आज की सुबह आम सुबह से जरा अलग है। आज 2 अक्टूबर है, यानी गांधी जयंती का पवन अवसर। अक्सर हम और आप किसी नेशनल हॉलीडे को बस दुकानों, स्कूलों और दफ्तरों की छुट्टी के रूप में देखते हैं। एक ऐसी सुबह जब थोड़ी देर सोकर उठा जाए। लेकिन हेलो ईटानगर के माध्यम से आज हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस तारीख के मायने को एक नई नजरिए से देखें। क्यों दुनिया भर में देशों ने, यूनाइटेड नेशन ने मिलकर आज के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाने का फैसला किया। क्यों एक आम सा साधारण धोती पहनने वाला इंसान दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के सामने बिना कोई गोली चलाए, बिना लाठी उठाए खड़ा रहा और उन्हें झुकाकर छोड़ दिया। महात्मा गांधी ने हमें एक ऐसी सीख दी जो किताबी नहीं बल्कि जीने का दंग है। उनका सबसे पहला आदर्श था सत्य यानी ट्रुथ। बापू हमेशा कहते थे कि सच्चाई के साथ चलना शुरुआत में थोड़ा कठिन जरूर लगता है, लेकिन आगे चलकर वही आपको सबसे ज्यादा निर्दोष और निर्भर बनाता है। हम अपनी जिंदगी में अक्सर छोटी छोटी बातों पर सफाई देने या बचते रहने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, जिससे हमारे भीतर का तनाव बढ़ता है। सत्य का मतलब सिर्फ भाषण देना नहीं बल्कि खुद के प्रति और दूसरों के प्रति ईमानदार रहना है। तो आइए इस विषय पर थोड़ी और गहराई से बात करने से पहले सुनते हैं आज का पहला सुकून भरा गीत।
2: सारेगामा कारवा, सारेगामा कारवा।

दोस्तों अब आते हैं उनके दूसरे सबसे बड़े सिद्धांत पर, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। जब भी हम अहिंसा शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में दंगे, लड़ाई, झगड़े या हथियारों की तस्वीर आती है। लेकिन बापू का अहिंसा का सिद्धांत इसे कहीं ज्यादा गहरा था। उनका कहना था कि किसी को काटू वचन बोलना, किसी का अपमान करना या मन में किसी के प्रति नफरत रखना भी एक तरह की हिंसा है। सच पूछिए तो मुझे अपना एक किस्सा याद आती है। कुछ साल पहले तक जब भी सड़क पर कोई गाड़ी कट मार कर आगे निकल जाती थी या सोशल मीडिया पर कोई बेमतलब बहस शुरू कर देता था तो गुस्सा आना बहुत आम था। मन करता था कि तुरंत जवाब दूं, चिल्लाऊं। लेकिन फिर एक दिन मैंने ठहर कर सोचा, हिंसा पर पलट कर हिंसा करना कोई बहादुरी नहीं है। बापू का एक मशहूर विचार था, एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी आंख के बदले आंख लेने का तरीका पूरी दुनिया को अंधा कर देगा। असल ताकत गुस्से को दिखाने में नहीं, गुस्से को पी जाने और शांति से समाधान ढूंढने में है। हमारे स्कूलों और कॉलेज के युवाओं के लिए ये सीख बहुत जरूरी है। क्लासरूम में पीयर प्रेशर हो, दोस्तों के साथ मनमुटाव हो या परिवार में कोई मतभेद, अगर हम बिना चीखे शांत रहकर सामने वाले की बात सुनना शुरू करें तो 90% लड़ाइयां बिना शुरू हुए ही खत्म हो सकती है। अहिंसा कमजोर का हथियार नहीं बल्कि बेहद मजबूत आत्मबल का प्रतीक है। चलिए शांति के इस संदेश के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज का दूसरा मदर गीत।

गीत के बाद स्वागत है एक बार फिर हेलो ईटानगर के अंतिम चरण में। सत्य और अहिंसा के साथ जो तीसरे अहम स्तंभ जुड़ता है वो है शांति यानी इनर पीस। दोस्तों, आज हमारी जिंदगी इतनी तेजी से भाग रही है, मोबाइल नोटिफिकेशन, पढ़ाई की चिंता, करियर की दौड़ और आगे निकलने की होड़। हमारे दिमाग में शोर इतना ज्यादा है कि हमें खुद की आवाज सुनाई नहीं देती। गांधी जी ने नई तालीम यानी बुनियादी शिक्षा के जरिए ये सिखाया था कि सच्ची शिक्षा सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट लेने का नाम नहीं है, बल्कि बेहतर चरित्र निर्माण का नाम है। कैरेक्टर बिल्डिंग तब होती है जब हमारी बातों और हमारे कर्मों में तालमेल हो। शांति पहाड़ किसी जंगल या अकेलेपन में नहीं मिलती, शांति मिलती है संतोष से, कम से कम लालच रखने से और सभी के साथ सहानुभूति बरतने से। आज गांधी जयंती के इस मौके पर आइए हम सब एक छोटे से संकल्प लें। किसी बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं है, बस इतना कीजिए आज के दिन, किसी पर गुस्सा मत कीजिए। घर पर या दोस्तों के बीच अगर कोई पुरानी शिकायत हो तो उसे माफ कर दीजिए और अपने आलोक में

इशारा कर रही है हेलो ईटानगर के इस शैक्षिक सफर को यहाँ विराम देने का। उम्मीद है आज का ये बातें आपके दिल और मन तक जरूर पहुँची होंगी। पढ़ते रहिए, नया सीखते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अब आप सुनिए ये कार्यक्रम का अंतिम गीत है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजयघाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और आदर्श दुनिया भर में प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक उपयोगी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28

0: 28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्य प्रणाली को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अवीब जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में ओमान के सह पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार ओमानी सह पायलट ने कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मित मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा है कि कनाडा ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और एरोस्पेस क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इससे भारत के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहत की तिकड़ी ने विश्व चैंपियन और 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया पर रोमांचक जीत दर्ज की। ये भारत का एशियाई खेलों में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है। पदक तालिका में भारत 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 67 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले वर्ष होने वाले क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। भारत का पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A Sarv Dharm Prarthana Sabha was held at Bapu's Samadhi Rajghat in the national capital. President Draupadi Murmu attended the Sarv Dharm Prarthana this morning and paid floral tributes to the father of the nation. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal and Delhi Chief Minister Rekha Gupta also paid tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat. The nation also pays homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on his 122nd birth anniversary today. He was born on 2nd October 1904 in Pandit Deen Dayal Upadhyay Nagar, previously known as Mughal Sarai in Uttar Pradesh. As a teenager, he joined India's freedom struggle and participated in the non-cooperation movement in 1921. Following independence, Shastri held several important positions in Uttar Pradesh and later in the Union government. President Draupadi Murmu paid homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Vijay Ghat in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi paid floral tribute to the former Prime Minister at his memorial, Vijay Ghat. Special Gram Sabhas are being convened across the country today on Gandhi Jayanti to deliberate on governance reforms, strengthening panchayats and improving public services in rural areas. The Rural Development Ministry said the meetings will also

0: 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। 9:10 और सेवा से देश सेवा का 15वां भाग पुनः प्रसारण।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 15वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी और वरिष्ठ पर्यावरणविद आनंद कुमार शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
2: नमस्कार, विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में आप सभी का स्वागत। विकास की दौड़ में आज दुनिया के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक ओर ऊर्जा की बढ़ती मांग और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से पर्यावरण और मानव जीवन की रक्षा करना। भारत ने इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, सौर शक्ति, जैव ईंधन, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और जलवायु अनुकूल विकास को अपनी नीतियों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों के दौरान गुजरात में जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थापना से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस और मिशन लाइफ जैसी पहलों तक हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव सामने आए हैं। गुजरात का चारण का सोलर पार्क देश में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जरिए भारत वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विस्तार में सहयोग कर रहा है। और आज हम चर्चा करेंगे कि भारत की सौर क्रांति किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कहां तक पहुंची है, ऊर्जा सुरक्षा में स्वच्छ ऊर्जा की क्या भूमिका है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विज्ञान तकनीक नीतियों और जन भागीदारी का किस प्रकार समन्वय किया जा रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक श्री अरुण त्रिपाठी और भारत मौसम विज्ञान विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक श्री आनंद शर्मा। आप दोनों मेहमानों का आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार।
2: और आइए सुनते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत क्या कुछ कर रहा है और अभी तक क्या कुछ किया जा रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से।
5: भारत में सौर ऊर्जा देश के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। बड़े सोलर पार्क से लेकर घरों की छतों तक सौर ऊर्जा का विस्तार लगातार हो रहा है। भारत की इस यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत और फ्रांस की पहल पर 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान शुरू किया गया ISA सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक सहयोग मंच है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा की तैनाती को गति देना और तकनीक, निवेश, क्षमता निर्माण तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। देश के भीतर सौर ऊर्जा को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ी पहल है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को इसे मंजूरी दी। योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है। इसके लिए 75,021 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में भी पिछले एक दशक में बड़ी वृद्धि हुई है। 31 जुलाई 2026 तक देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 164.59 गीगावाट हो चुकी थी। वर्ष 2014 में ये क्षमता लगभग 2.8 गीगावाट थी। सौर ऊर्जा का विस्तार केवल अधिक बिजली पैदा करने तक सीमित नहीं है, इसका संबंध ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने से भी है। साथ ही रूफटॉप सोलर के विस्तार से परिवार बिजली की लागत कम करने और कुछ मामलों में अतिरिक्त बिजली से आय अर्जित करने में भी सक्षम हो रहे हैं।
2: आनंद शर्मा जी, आपसे ही शुरू करते हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थापना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहले बहुत चर्चा में रही है। गुजरात के इस अनुभव ने देश की जलवायु और ऊर्जा नीतियों को किस प्रकार प्रभावित किया है? क्या गुजरात का जो ये मॉडल था ये देश के दूसरे राज्यों के लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है?
3: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है ये विजनरी स्टेप था और वो भी 2009 में, जब शायद इतनी ज्यादा चर्चाएं नहीं हो रही थी नेशनल और ग्लोबल लेवल पर, उस समय एक स्टेप लेना और एक ऐसे डिपार्टमेंट का गठन करना जो कि ग्लोबल वार्मिंग, मिटिगेशन, अडेप्टेशन मुद्दों पे जिसने एक लीड रोल निभाया, और एक उसी विभाग के अंडर जो है उन्होंने अपना एनर्जी का डिपार्टमेंट है, गुजरात एनर्जी डिपार्टमेंट, उसकी भी स्थापना की, और वो आज एक पूरे इंडिया के लिए रोल मॉडल है, वर्ल्ड के लिए रोल मॉडल है। करीब करीब वहां पर आप देखेंगे तो 100 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी आज जनरेट की जा रही है, और 2030 तक उसका टारगेट शायद 150 गीगावाट का है, और 2050 तक 300 गीगावाट का है। और उसी की देखरेख में, उसी की पहल को देखते हुए अन्य स्टेट जो है, केरल भी है, तमिलनाडु, राजस्थान, वो भी उसको फॉलो कर रहे हैं, और एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और मुझे लगता है भारत जिस तरह से सौर ऊर्जा में, गुजरात में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अभी फिलहाल मोदी जी, उनके अंडर जो विजनरी

0: स्टेप लिया था वो एक मतलब कि इस समय जो दिख रहा है कि उस समय जो स्टेप लिया था, आप सोचिए कि इस समय जब लड़ाइयां शुरू हुई खासकर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर और हमारी एनर्जी जो है पेट्रोल डीजल ये सब प्रभावित हुआ है, तो अब समझ आ रहा है कि देखिए उस समय जो लिया हुआ स्टेप है कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। तो वो एक बहुत ही विजनरी स्टेप था और मुझे लग रहा है आज इसको हम और मतलब जैसे कहते हैं गति लानी होगी, और उसके लिए भी सरकार जो है पूरा सब्सिडी दे रही है, के साथ साथ जो उसके लिए इंटरेस्ट जो है 5 और 6% पे इंटरेस्ट पे पैसा भी मिल रहा है सोलर पैनल लगाने का। और आपने जैसे कहा पीएम सूर्य घर, करीब करीब 10 लाख घर जो है वो इसको लगा चुके हैं और मुझे लगता है टारगेट शायद 1 करोड़ जी से ज्यादा घरों का है आने वाले दिनों में। और उसके साथ साथ सोलर पंप्स, वो एक बहुत फायदा होगा किसानों को। कई बार क्या होता है आपके ग्राउंड में पानी तो है मगर आपके पास डीजल नहीं है उसको निकालने के लिए पानी के, सोलर पंप है तो आप खासकर सिंचाई कर पाएंगे फसल को उस समय जब आपकी लंबे समय से बारिश नहीं होती है। तो आपको ये देखिए ये जो एनर्जी सिक्योरिटी मिली उससे आपको फूड सिक्योरिटी में भी फायदा हो रहा है
1: जी
0: तो ये एक बहुत अच्छी पहल है मैं कहूंगा। और अन्य कंट्रीज को एग्जाम्पल दिया जा रहा है जहां यूरोप और चाइना इवन उनकी पूरी इकोनॉमी कोल बेस्ड है और खासकर लड़ाई के बाद उन्हें पूरा कोल पे आ गए, और वहीं इंडिया जो पहले शायद 5-7 साल पहले हम भी यही बात कर रहे थे और अब हमने शिफ्ट होके सोलर पे आ गए, तो जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा होगा, एनवायरमेंट के लिए अच्छी बात होगी क्योंकि हमें जीरो कार्बन पे आना है मिनिमम, और नेचुरली कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो आपकी तो क्लाइमेट चेंज में मिनिमम होगा या कम हो जाएगा, तो और यदि वो होता है तो हैजार्ड्स कम होंगे, हैजार्ड्स कम होंगे तो आपके जो पैसा और उससे जो नुकसान होता है और वो रिलीफ में जो पैसा आता है वो बचेगा और वो पैसा फिर डेवलपमेंट में जाएगा। तो ये अल्टीमेटली लिंक्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से।
1: और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ये फुल साइकिल आपने चर्चा की। आनंद शर्मा जी, 25 सालों का अनुभव सार्वजनिक जीवन में बहुत लंबा अनुभव होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और जो अनुभव वहां से उन्होंने इकट्ठा किए उसे प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी दूरदृष्टि को देखते हुए उन्होंने लागू किया, और उसके जो परिणाम हैं आज हम वो देख रहे हैं। हम कई देश में शहरों में कई राज्यों से जब गुजरते हैं तो घरों की छतों पर लगा हुआ सोलर पैनल इस बात की गवाही देता है। आज कई राज्य हमारे कई शहर जो हैं जितनी अपनी ज़रूरतें हैं उससे कहीं ज़्यादा बिजली उत्पादन कर रहा है। और आपने अभी जिस पूरी एक साइकिल की बात की देश के विकास में किस तरीके से लोगों के बिजली की बिल में जो बचत हो रही है वो पैसा अल्टीमेटली जीडीपी में बढ़ावा दे रहा है और हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कहना है आपका कि ये क्या जो सोलर पैनल हैं घर घर में कहाँ तक हम पहुंचे हैं और आगे 5 से 10 साल में हम कहाँ तक पहुंचने वाले हैं?
0: नहीं देखिए बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई है उसमें कोई डाउट नहीं है, यदि पूरे वर्ल्ड लेवल पे चले तो इंडिया की प्रोग्रेस सराहनीय है और कुछ स्टेट जो है बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इस पहला स्टेप गुजरात में लिया गया तो गुजरात तो बहुत जबरदस्त कर रहा है। आपने अभी एक वो पार्क की बात करी वो उसके अलावा खेवड़ा, खेवड़ा जो है सोलर पार्क है वो तो बहुत जबरदस्त उसके कहते हैं 30 गीगावाट जो कि एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट या कोई थर्मल पावर उतनी एनर्जी जनरेट करने वाला है जो कि करीब करीब मुझे लगता है 5,300 एकड़ में फैला हुआ है और आपने आप में शायद ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर एक जनरेशन वाला रीजन होगा। तो ये बहुत बड़ी पहल है और आपने भी सही कहा कुछ दिनों में ये गुजरात जो होगा सरप्लस स्टेट में होगा, और वो यही नहीं कर रहे उसके साथ साथ उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग वहां शुरू कर दिया है, मतलब कि पानी भी होगा आपके पास ऊर्जा भी हो सकता है और वो सब ये मार्जिनल लैंड में
1: जी
0: जहाँ कुछ ग्रो नहीं करता था, तो ये भी बड़ा अच्छा है कि वो वाली कोई अच्छी वाली कई बार लोग कहते हैं ना उपजाऊ भूमि खराब हो गई, वो भी नहीं है तो मार्जिनल लैंड थी तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाया है और हु नोस कि कल को उसी के नीचे कुछ और पानी हार्वेस्ट हो जाएगा तो कुछ और लगने लग जाएगा। तो ये सोलर पैनल बड़ी अच्छी प्रयास है और मुझे लग रहा है इसको जिसे वार फुटिंग पे मुझे करना चाहिए क्योंकि ये क्राइसिस को अभी जो हाल ही में एनर्जी क्राइसिस हुआ है तो हर घर पे हर बिल्डिंग पे ये जरूर देखने चाहिए और वार फुटिंग पे ये काम होना चाहिए मेरा ये मानना है, और ये होता है तो हम लोगों की जीडीपी भी बढ़ेगी, जो हमारी निर्भरता है दूसरे देशों से डीजल पेट्रोल की वो करने के लिए वो भी खत्म होगी, और जब एनर्जी सिक्योरिटी आपकी बढ़ेगी तो आपकी फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा और आप एक सुपर पावर भी बन पाएंगे।
1: बिल्कुल, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक अरुण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आते हैं। त्रिपाठी जी, पिछले 12 वर्षों के दौरान देश में जो सौर ऊर्जा की क्रांति हुई है, काफी घरों की छतों पर अब हम देखते हैं सोलर पैनल लगा हुआ है और हर घर लगभग बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। अब ये नहीं है कि बिजली आएगी गांव में पोल लगेगा तब होगा, लोग बड़े आराम से उसको लगा रहे हैं और सरकार सहयोग कर रही है। तो इन 12 वर्षों में अगर सिर्फ सोलर पैनल की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, तो आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं, कहां से कहां

0: हम पहुंचे हैं।
1: एक समय ऐसा आ रहा था कि नेचुरली आपको मालूम होगा कई प्रदेशों में तो बिजली आती ही नहीं थी, और आती भी थी तो मात्र 3-4 घंटे रहती थी। अब क्या है, लोग इंडिविजुअल अपने यहाँ जब से लगाने लगे हैं तो उनके पास अब घर में बिजली भी आ रही है, और नेचुरली बिजली होगी तो पढ़ाई लिखाई भी बढ़ेगी आपकी, और साथ साथ आपके सोलर पंप हैं, आप पानी भी निकाल पाएंगे, तो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी आपका बढ़ रहा है, बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन। अच्छा, एक समय भी ये बात हो रही थी कि ऑफ द ग्रिड, मतलब आपको मेजर ग्रिड से जुड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सोलर पैनल लगाइए और अपनी बिजली खुद पैदा कीजिए, और अब जिस तरह से ये बढ़ रहा है तो फिर बात हो रही है कि ये वाली जो ग्रिड है ऑफ ग्रिड नहीं, इसको मेन ग्रिड से, मतलब आप खुद तो अपने घर का खर्चा निकालेंगे ही बिजली का और बेचेंगे भी सरप्लस को, तो अब ऐसी स्थिति आ रही है कहीं जहां ज्यादा बिजली प्रोड्यूस हो रही है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द मेन ग्रिड।
0: मतलब आप अपनी जरूरत तो पूरी कर ही रहे हैं निःशुल्क, और साथ ही पैसे भी कमा रहे हैं।
1: पैसे भी कमा रहे हैं,
0: बिल्कुल। आनंद जी, आपसे एक सवाल और है कि जलवायु परिवर्तन जो है आज केवल पर्यावरण का विषय ही नहीं रहा, बल्कि कृषि, जैसा भी आप बता भी रहे थे, कृषि है, स्वास्थ्य है, जल संसाधन है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये हमारे आर्थिक विकास से भी जुड़ा हुआ है
1: जी।
0: भारत में बदलते मौसम के पैटर्न और चरम मौसमी घटनाओं को देखते हुए, कहीं बहुत तीव्र गर्मी है तो कहीं बहुत ठंडा है, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा है, इन सबको देखते हुए जलवायु अनुकूल विकास की क्या आवश्यकता है, और मौसम विज्ञान विभाग इस दिशा में किस प्रकार से योगदान कर रहा है?
1: देखिए, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट की बात हो रही है वो एक बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है जो कि कंबाइन करती है अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन टू रियलाइज द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि ये दोनों चीजों को अलग अलग नहीं मानते हैं, कह रहे हैं क्लाइमेट एक्शन को प्रमोट करेंगे आप तो यू विल बी बिल्डिंग रेजिलियंस इन द सोसाइटी, मतलब कि अडेप्टेशन है एक तरफ आपका मिटिगेशन है, और ये साथ में जुड़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। तो बेसिक गोल तो क्या है कि हमें, यदि आपको क्लाइमेट एक्शन जो है उस पर मेजर फोकस है, और क्लाइमेट एक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है आपका अडेप्टेशन, एक है मिटिगेशन। मिटिगेशन में मीन्स है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन हो रहा है, नेचुरली आपको ये तो मालूम ही होगा, एस्पिरेशनल सोसाइटी है, सबको बड़े घर चाहिए, कारें चाहिए, रहन सहन की और सहूलतें चाहिए, तो जब आप ये प्रोवाइड करते हैं तो आप ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन करते हैं, और उसके चलते जो होता है ग्लोबल वार्मिंग होती है, और वो ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उस क्लाइमेट चेंज से नेचुरली जब क्लाइमेट जल्दी से बदलेगा और जबरदस्त बदलाव आएंगे तो चरम सीमाएं, मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगी, कभी सूखा होगा, कभी फ्लड होंगे, कभी हीट वेव होगी, तो ये सब करने के लिए, इसको बचने के लिए हमें मिटिगेशन बड़ा जरूरी है कि हम कम से कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करें, यानी कि हमारा जीरो कार्बन इकोनॉमी की तरफ हमें आगे चलना है, मिटिगेशन आ गया ये पहला। दूसरा एस्पेक्ट हो गया इसका अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब है जहां भी कोई रिस्क है, समुद्र के पास है, गुजरात की बहुत बड़ी कोस्ट है, या ज्यादा पूरा इंडिया में इतनी, वहां पे सी लेवल राइज का खतरा लोग कह रहे हैं, साइक्लोन का खतरा रहता है, तो ये जो खतरे हैं उसमें कहां रिस्क है वो रिस्क को जानना, और उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसके लिए मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। यदि आप सही समय पे, आपको रिस्क मालूम है और आप हजार्ड को प्रिडिक्ट कर देते हैं, उसकी वार्निंग जनता को दे देते हैं, उनको समय पे हटा देते हैं, तो जान माल आप बचा लेंगे, और यदि आप ये कर लेते हैं तो वही बात होगी, आपका पैसा बच गया, वही पैसा आप डेवलपमेंट में जाएगा जो कि रिलीफ में जा रहा था पहले। तो यही अडेप्टेशन और मिटिगेशन है, और जब अडेप्टेशन मिटिगेशन ढंग से होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज क्या होगा, हर बार हजार्ड आएगा, आपने प्रिडिक्शन नहीं किया, हजारों जाने जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर उजड़ेगा, और आपका पैसा रिलीफ में जाता रहेगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और उसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखनी कि जब हम इतने सारे काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड हमारी चॉइसेस होनी चाहिए, यानी कि ये है कि ऐसा ना हो कि हम घर बना रहे तो वो उसके चलते क्या हुआ, घर ऐसी जगह पे बना दिया कि वो हजार्ड बाढ़ में बह गया, तो आपस में इन सब में लिंक्स होने चाहिए अक्रॉस द पॉलिसी, मतलब हाउसिंग, एनर्जी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, जिससे कि ऐसा ना हो कि एक को फिक्स करते हुए हम दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, तो आपस में एक इंटेग्रेटेड वो रहना चाहिए। मगर साथ में ये भी ध्यान रखना है हमें कि क्लियर इंप्लीमेंटेशन जो है गैप है उसको क्लियर करना है। अभी क्या है कि कई चीजें तो हम बोल रहे हैं, कमिट कर रहे हैं उनको, बट उसको अभी शायद उसका कार्यान्वयन करने की बहुत स्कोप पड़ा है हमारे पास, और यदि वो हम करते हैं तो ये गैप जो है हमारे गोल में और एक्शन में अभी थोड़ा गैप है, उसको पूरा करना होगा।
0: आनंद शर्मा जी, सौर ऊर्जा उत्पादन और सौर उपकरणों का जो निर्माण है, इस क्षेत्र में भी भारत ने काफी प्रगति की है। पहले हम इसे आयात करते थे, अब उत्पादन तो हो ही रहा है, और इसके उत्पादन में जो सामान लगता है, जो उपकरण लगते हैं, उसका निर्माण भी हम घरेलू स्तर पर कर रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से, आप अभी बात कर रहे थे, एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है?
1: नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई, क्योंकि ऐसा था, अभी जब हम कुछ साल पहले चले जाएं, 10 साल पहले, तो एक्चुअली जितने भी सोलर पैनल थे हम सब लोग इंपोर्ट कर रहे थे, और इंपोर्ट कर रहे थे वो तो एक चीज थी, उसके बाद में जब से फिर ये चला आगे को, तो जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो अब सवाल आया कि भाई दिन में तो हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और रात को तो नहीं है, तो इसको स्टोर कहाँ करें एक्स्ट्रा को, तो उसके लिए बैटरीज की बात आई, लिथियम

0: ये तो बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे। सिर्फ हमें जो दो करने की जरूरत है वो यही है कि लिथियम के जो बैटरीज हैं वो भी हम पूर्ण अपने मतलब कि खुद ही सेल्फ रिलायंट हो जाएं उसमें भी, और पूरे पैनल को बनाने से लेकर उसके जो उसमें जो सिलिका जो भी पार्ट्स लगते हैं उसमें भी हम पूर्ण सेल्फ रिलायंट होना हमें जरूरी है अभी।
1: और आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में मिशन लाइफ क्या है।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियों और तकनीक के साथ साथ हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली में बदलाव भी जरूरी है। इसी सोच के साथ भारत ने मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य लोगों और समुदायों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। मिशन के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं: ऊर्जा की बचत, पानी की बचत, कचरा कम करना, ई कचरा कम करना, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और टिकायु खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के एकता नगर में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया था। मिशन लाइफ के तहत देश भर में अब तक 40 लाख से अधिक गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 7 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया है। बच्चों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए देश भर में 12 लाख से अधिक इको क्लब भी मिशन लाइफ के तहत काम कर रहे हैं। मिशन लाइफ का संदेश है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों और संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है। मिशन लाइफ इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल यानी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है और टिकायु जीवन शैली को जन भागीदारी से जोड़ता है।
1: आनंद शर्मा जी, इसके माध्यम से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, काफी बड़े पैमाने पर सरकार कर रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में आम नागरिकों की दैनिक आदतों, ऊर्जा बचत, जल संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन और टिकाऊ उपभोग की कितनी भूमिका हो सकती है, और इस मिशन को जन आंदोलन का स्वरूप देने में मौसम विभाग और पर्यावरण जागरूकता की खास तौर पर क्या भूमिका आप देखते हैं?
0: बिल्कुल, सबसे पहले तो यह है कि ये जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो इनिशिएटिव था, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में जो आपका COP26 हुआ था ग्लासगो में, वहां ये इन्होंने ये इनिशिएटिव जो था लिया था, और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये, और इसका बेसिकली जो मेन है टू प्रमोट माइंडफुल कंजम्पशन एंड रिड्यूस माइंडलेस कंजम्पशन। अभी समय क्या हो रहा है, माइंडलेस कंजम्पशन हो रहा है, जबकि होना चाहिए माइंडफुल कंजम्पशन, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और साथ में रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन भी। दूसरा है कि अभी तक हम कर रहे थे यूज एंड थ्रो, यूज करो और थ्रो करो, और उससे क्या हो रहा है गार्बेज और बड़े बड़े कूड़े के पहाड़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है। तो उसको अब चेंज कर दिया है सर्कुलर इकोनॉमी में, यानी कि आप कचरा भी पैदा करेंगे तो उसको सेपरेट भी करेंगे और उसको आप रीयूज करेंगे। जैसे कि आपका वेस्ट निकल गया बायोमास, उससे आप बायोमास से आपने एनर्जी निकाल ली, आपने उससे आपने कहते खाद बना ली, आपने उसको मल्च की तरह यूज कर लिया खेती में, ये बहुत सारे बेनिफिट हो गए उससे, बायोगैस बना ली आपने, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी में सब आ रहा है। और उसमें पूरे एकदम जैसे कहते हैं ना SOP बनी है बड़े अच्छे ढंग से, हर चीज को मॉनिटरिंग भी हो रही है और उसमें जॉब भी क्रिएट होंगी और आपका वेस्टेज भी मिनिमम होगा, और ये प्रमोट करता है इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को। और इसमें फोकस क्या है, फोकस है आपका प्रो प्लैनेट पीपल, यानी कि हर जो नागरिक हो वो एक जिसे कहते हैं ना एक्टिवली प्ले करेगा कि भाई मैं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, प्रो प्लैनेट पीपल, वो इसका मेन फोकस है। तो उसमें आपने पूछा कि मौसम विभाग और पर्यावरण विभाग का क्या रोल हो सकता है इसमें, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आज की आ रही है वो ये आ रही है कि जो ज्यादातर लोग एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एयर कंडीशन ऑफिस है, एयर कंडीशन स्कूल है, एयर कंडीशन मॉल है, एयर कंडीशन घर है, एयर कंडीशन कार है, तो वो नेचर से जो है हमारी प्रकृति से कट ऑफ हो गए हैं। इसे मैं इसको कहता हूँ नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर हो गया कि उसको प्रकृति में पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है बाहर। तो जब वो पता ही नहीं तो वो उसको कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, उसको पता ही नहीं मेरी यमुना नदी खराब हो चुकी है, मेरे लैंडफिल इतने ऊंचे ऊंचे हो गए। पहले उसको कनेक्ट करना है, किताबी ज्ञान से ये लोग सीख नहीं पाएंगे पर्यावरण के बारे में, उनको फील्ड में ले जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा एक चीज। दूसरी बात, जब कनेक्टेडनेस कैसे होगी, जब उनको समझाना पड़ेगा भी देखिए आप जब एक्स्ट्रा कोई पॉलिथीन लेते हैं या AC कोई आप कहते हैं करना चाहिए, आपने 18 डिग्री पे लगा के रखा, यदि आप उसको 24 डिग्री पे करके रखते हैं, बिजली बचा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आपको ये भी बताना चाहिए बिजली कहां से आ रही है,
1: और आप अपना स्वास्थ्य भी बचा रहे हैं,
0: स्वास्थ्य भी बचा रहे, सबसे बड़ी बात है, एवरीथिंग इज लिंक्ड, बिल्कुल स्वास्थ्य भी बचा रहे हैं आप। और जब आपने, और इसको ये मालूम होना चाहिए कि पॉलीथिन कहाँ जा रहा है, ये नदी में जा रहा है, फिर उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो फिश वगैरह में जा रहे हैं, उसी को लोग खा रहे हैं, तो कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो उनको ये सारा कनेक्टेडनेस जो है इकोसिस्टम की, आइसोलेटेड नहीं है, पूरा कनेक्शन है, ये जब हम समझाएंगे और बताएंगे वही पॉलीथिन को आप जला रहे हो तो फिर CO2 गैस निकल रही है, फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, एक्सट्रीम

0: हो रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है और आप पिछड़ते रहेंगे क्योंकि आपका सारा पैसा तो कहते इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाएगा आपका, फिर आप उसी में पैसा लगाओगे तो नए स्कूल, नए कॉलेजेस, नए हॉस्पिटल, नई यूनिवर्सिटीज आप कैसे खोलेंगे।
1: बिल्कुल
0: ये कनेक्टेडनेस जब लोगों को ये समझ आ जाएगी सिंपल भाषा में कि भाई हाँ ये तो मुझे तो प्रो प्लैनेट पीपल बनना है
1: बिल्कुल
0: मुझे, है ना, मेरे को धरती पे अपना बोझ कम से कम करना है, तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम कितना पानी डेली यूज कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आपका डेली वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, तो लोग नहीं बता पाते, कोई कहता 10 लीटर, कोई कहता 50 लीटर, जबकि वो 500 लीटर कर रहे हैं। तो
1: बिल्कुल
0: वही जो है ना
1: वो दे आर नॉट माइंडफुल, उसके बारे में माइंडफुल नहीं है।
0: माइंडफुलनेस, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि माइंडफुलनेस
1: जी
0: लेके आनी है उनमें, कि उनको रियलाइजेशन हो कि भी हम कर क्या रहे हैं। आजकल के देखा होगा जो बच्चे हैं हर उठाते हैं फोन से सामान पे सामान आ जा रहा है, और आप देखेंगे तो दिन भर में इतना कचरा इकट्ठा हो जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा वो कचरा, वो सारा फिर वो आप जला देंगे कहीं ले जाकर। सेग्रीगेट तो सब नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सरकारों ने बड़ा अच्छा कर दिया, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है, तो वही उनको समझाना है ये फेंकना नहीं है, इसको रिसाइकल करना है। और काफी इसमें पहल हो रही है, काफी इंडस्ट्रीज आ गई हैं, आजकल तो कपड़े भी मिलते हैं आपको, बोलते हैं रिसाइकल्ड है ये कपड़ा या ये बैग है जो रिसाइकल्ड हो रहा है। तो
1: बिल्कुल
0: मगर इसमें एक और भी ध्यान रखना है कि ग्रीन वॉशिंग ना हो, कि बोल रहे हैं हम कर नहीं रहे हैं, करना है, करके दिखाना है, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: अदरवाइज जो है ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी हो रही है, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है।
1: आपने सही कहा, पॉपुलेशन बढ़ी है क्योंकि भारत इतना विशाल देश है, इसकी टोपोग्राफी हर जगह अलग अलग है, कहां अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और नागालैंड, और कहां केरल, और कहां जम्मू कश्मीर, कहां गुजरात, कच्छ, इतना बड़ा देश है। अब ऐसे इतने बड़े भौगोलिक देश में एक्सट्रीम वेदर्स की भी समस्या है, कहीं हीट वेव है, कहीं अत्यधिक वर्षा है, बाढ़ है, कहीं चक्रवात है, लेकिन पिछले 12 वर्षों में सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि और उनका सार्वजनिक जीवन में जो अनुभव रहा है उस पर चलते हुए उनके नेतृत्व में इन सब चीजों पर खास तौर पर ध्यान देना शुरू किया है। हमने ये भी देखा था एक वक्त पर कि IMD, आप वहां रहे हुए हैं एक बड़े पद पर, IMD जब कहती थी कि बारिश होने वाली है, बारिश होती नहीं थी, और उनके कई सारे जो पूर्वानुमान होते थे वो या तो सटीक नहीं होते थे या कई बार गलत साबित होते थे। लेकिन अभी हाल के दिनों में हमने देखा है कि पूर्वानुमान की सटीकता सही रही है, समयबद्धता में सुधार हुआ है, आम नागरिकों तक चेतावनी भी समुद्री इलाकों में बड़े समय से पहुंच रही है। IMD ने ये कैसे किया, क्या रणनीति है?
0: इसमें बहुत सारी चीजें, आप किसी से पूछेंगे मीडिया से तो एक एक्सेलेंट फोरकास्ट मेरी, चाहे वो मैं कर्नाटका में था, चाहे मैं सिक्किम में था, चाहे मैं देहरादून में था, दिल्ली में था, तो बहुत अच्छा काम हुआ है। और इसके पीछे सब कुछ है कि निरंतर प्रयास, मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी पिछले 15 साल में तो बहुत तेजी आई है इन प्रयासों में, पर पहले भी प्रयास हुए हम लोगों को, जो जिस तरह से मतलब सुपर कंप्यूटर 87 में आ गया था, उसका एक मेजर रोल रहा, सबसे मेजर रोल रहा, क्योंकि उससे पहले अमेरिका में सुपर कंप्यूटर दे नहीं रहा था, फिर सुपर कंप्यूटर मिला और उस सुपर कंप्यूटर के चलते जो है न्यूमेरिकल वेदर प्रोडिक्शन शुरू हुआ, उसने एक बहुत बड़ा रोल आया। दूसरा सैटेलाइट जो आए, सैटेलाइट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा
1: डॉपलर
0: किया,
1: रडार,
0: डॉपलर वेदर रडार आ गए, मगर इनके नंबर कम था डॉपलर वेदर रडार का, सैटेलाइट में भी कुछ इतने सेंसर्स नहीं थे जितने हम मौसम विभाग को चाहिए थे। फिर वो जब बोला गया और बीच में, तो ये पिछले 10-15 साल में इनमें बहुत भयंकर तेजी आई, यानी कि मतलब काफी पैसा इसमें गया और नए सुपर कंप्यूटर्स लिए गए, नेटवर्क को बढ़ाया गया। डॉपलर वेदर रडार जो है मेरा ख्याल अभी 25-30 लग चुके हैं और मेरा ख्याल 100 इनका नंबर पहुंचने की बात हो रही है अगले कुछ 1-2 साल के अंदर। तो इसमें निरंतर प्रयास हो रहे हैं और बिल्कुल सही है कि आज से 25-30 साल पहले लोग बोलते थे ऐसा कि भाई मौसम विभाग जो बोलता है गलत, पर अब नहीं है, अब काफी सालों से 15-20 साल से ये धारणा बदली है और रिजल्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं और बहुत लोगों की जानें बच रही हैं, सबसे बड़ी बात। तो ये सारी जो प्रयास हैं ये हमारे जो है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हमारी सोसाइटी को रेजिलिएंट बना रहे हैं।
1: बिल्कुल, और देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें कृषि और मानसून का कितना महत्व है ये कहने की जरूरत नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के वितरण, तापमान और मानसून के व्यवहार में होने वाले बदलाव किसानों के लिए क्या चुनौतियां पैदा कर रहे हैं, कृषि मौसम सेवाएं, जिला स्तर के पूर्वानुमान और समय पर सलाह किसानों को इन चुनौतियों से निपटने में किस प्रकार से मदद कर सकती हैं, और क्या नई तकनीक और IMD लेकर आ रहा है?
0: ये सवाल बहुत बढ़िया है आपको। एक तो मालूम है कि एक तरफ तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं और ये कहा गया कि भाई इससे क्या होगा, बीमारियां बढ़ेंगी पौधों में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा और तरह तरह की प्रॉब्लम आएगी, वाटर सिक्योरिटी का भी इशू होगा, भाई नेचुरली जहां बारिश नहीं वहां सूखा पड़ेगा। मगर उसके विपरीत आप देखेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है ओवर द ईयर्स, आप देखिए, हालांकि इस साल थोड़ा प्रोडक्शन में कमी हो सकती है क्योंकि एल नीनो ईयर था, मगर उसके बावजूद भी मौसम विभाग ने जिस तरह से तरक्की की है और जिस तरह से मौसम आधारित कृषि सलाह लोगों को मिल रही है, जिस तरह से कहते हैं ICAR ने ड्राउट रेजिस्टेंट, फ्लड रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप करी हैं, तो इन सब का एक मेजर रोल रहा है।

0: अब जैसे एग्जाम्पल है, समय समय पर यदि किसान को मौसम आधारित सलाह मिल जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई अभी ये बारिश आने वाली है, तो हम किसान भाइयों को बोलेंगे देखो किसान भाइयों आपकी फसल जो तैयार पड़ी है 3 दिन में बारिश आने वाली है, तो आपकी तैयार फसल को काट के सुरक्षित स्थान पर रख लो, तो नुकसान बच गया उसका। ऐसा ही है, मान लीजिए किसान को इस समय फसल है उसमें फ्लावरिंग आ रही है जैसे महाराष्ट्र में, और बारिश मान लीजिए कि आने वाली है, तो आप कहोगे किसान भाइयों को देखिए भाई बारिश आने वाली है तो आप सिंचाई को टाल दीजिए, तो आपका सिंचाई का पैसा बच गया। सिमिलरली बारिश आने वाली है और आपने मान लीजिए आप फर्टिलाइजर और केमिकल लगाने वाले हैं, तो हम उन्हें कहेंगे नहीं भाई बारिश आने वाली है आप फर्टिलाइजर और केमिकल अभी ना लगाएं नहीं तो वो पानी से बह जाएगा। तो ये जो मौसम आधारित कृषि सलाह है इसने बहुत फायदा किया है, और यही एक कारण है कि वी आर एबल टू स्टेबलाइज एग्रीकल्चर यील्ड्स। नहीं तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज जो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही, तो यही कहा गया था कि भाई एपिडेमिक्स होंगे, और यही नहीं क्योंकि हम समय समय में उनको बता दे रहे हैं कि अब ये मौसम जो है अनुकूल हो गया है पौधे पे बीमारी आने का, तो आप मॉनिटरिंग शुरू कर दीजिए मगर स्प्रे मत करिएगा अभी। जब वो थ्रेशोल्ड से बढ़ जाएगा तो हम बताएंगे आपको जब स्प्रे करना है आपको, और हो सकता है कि मौसम पौधे के लिए अनुकूल हो जाए और बीमारी जो पेस्ट होता है उसके लिए विपरीत हो जाए, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी स्प्रे करने की। तो केमिकल स्प्रे को भी बचा रहे हैं हम लोग, और वही स्प्रे जो केमिकल के पानी में जाते हैं मच्छी में जा रहे हैं फिर लोग उसको खा रहे हैं, तो हेल्थ खराब हो रही है, पर्यावरण खराब हो रहा है। मौसम आधारित जो कृषि सलाह है उससे हम किसान का पैसा बचा रहे हैं, लोगों की हेल्थ बचा रहे हैं, और साथ साथ पर्यावरण को भी बचा रहे हैं।
1: और देखिए भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल पर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की स्थापना हुई। आज ये सौर ऊर्जा के वैश्विक विस्तार और विकासशील देशों में निवेश और तकनीक सहयोग का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है जिसका हम लोग पूरा फायदा उठा रहे हैं। यूरोप के कई देश अगर आप देखें जैसे डेनमार्क, तो वहां पर पवन ऊर्जा भी बेहद महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल में आ रहा है और उससे ऊर्जा पैदा की जा रही है। भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए सौर, पवन, जैव ईंधन और परमाणु ऊर्जा जैसे जो विभिन्न स्रोत हैं, इनका संतुलित मिश्रण कितना जरूरी आप मानते हैं? क्या पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं?
0: नहीं, उसमें भी बिल्कुल बढ़ रहे हैं, और हम सोलर एनर्जी में ज्यादा हमने मतलब कि उसमें अचीवमेंट है हमारी। और बिल्कुल आपने कहा कि हमें मिश्रित चाहिए, हमें सोलर एनर्जी भी चाहिए, हमको विंड एनर्जी भी चाहिए, हमको ओशन वेव से भी एनर्जी जनरेट करना है, जियो थर्मल एनर्जी को भी एक्सप्लॉइट करना है, बायोफ्यूल्स को भी एक्सप्लॉइट करना है। यदि हम ये सब कर पाते हैं, और ये बड़ा अच्छा है कि जैसे आपने कहा कि मोदी जी ने 2009 में गुजरात क्लाइमेट सेंटर से लेकर 2015 में जो हमारा COP 21 हुआ था पेरिस में, वहां ये इनिशिएटिव लिया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो एक बहुत ही दूरदर्शिता थी उसके अंदर, और मुझे लगता है 140 कंट्रीज उसके मेंबर है जिसे सनशाइन कंट्रीज कहते हैं, और बिल्कुल उससे काफी बल मिला और हमें लीडरशिप एक मिली। और अब भारत सरकार जो है बिल्कुल बायोमास पे जो है पूरा फोकस है उनका, बायोफ्यूल्स, फिर वही मैंने कहा कि वो जो प्लांट्स लगाए जाएंगे मार्जिनल लैंड्स पे लगाए जाएंगे, और जो एनर्जी क्रॉप्स होंगी जहाँ पे कुछ नहीं उग रहा था उसके साथ जो आपकी यूज कुकिंग ऑयल है आप उसको बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोमीथेन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो हमें मल्टी जिसे कहते हैं प्रॉन्ग पॉलिसीज चाहिए, सिर्फ एक पे निर्भर नहीं होना है। सोलर एनर्जी, बायोमास, विंड एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी जितने पॉसिबल है उसको एक्सप्लॉइट करना है और टू द मैक्सिमम करना है, क्योंकि क्लीन एनर्जी चाहिए, ग्रीन एनर्जी चाहिए, और हमारा टारगेट है टू अचीव एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेट जीरो इमिशन, ये हमारा गोल है।
1: सौर ऊर्जा में तो हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, क्या विंड एनर्जी के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां हैं भारत में?
0: नहीं, चुनौतियां देखिए सोलर एनर्जी में तो एडवांटेज ये है कि क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री है, पूरे एक कोने से दूसरे कोने सनशाइन रहता है, ब्राइट सनशाइन रहता है, तो ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया, तो ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मगर विंड एनर्जी को हर जगह नहीं लगा सकते आप, उसके लिए आपको वहां पे विंड तेज चलेगी वहीं लगाया जा सकता है, या तो कुछ कोस्टल सिटीज हैं या फिर पहाड़ों के ऊपर आपको, और इसके लिए ये अगेन मौसम विभाग का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे पास विंड एटलस है, सोलर एटलस है, जहां बताया जाएगा आपका कि भी कहां आपको लगाना है कहां नहीं लगाना है। सोलर एनर्जी के लिए हमारे लिए प्लस पॉइंट है, विंड के लिए कोस्टल सिटीज पे लग सकता है, और कोस्टल सिटीज में भी हमें ध्यान रखना है कि हम लगाएंगे तो वहां साइक्लोन भी आते हैं, तो साइक्लोन आएगा तो वो नेचुरली बहुत तेज होगी स्पीड, 150-200-250 की, तो वो उखाड़ भी सकता है। मगर हाँ, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम विंड स्पीड जो 250 आती है करीब, तो उससे जो है ज्यादा की ताकत का हमें वो स्ट्रक्चर वहां खड़ा करना है जिससे कि वो आ भी जाए तो रेजिलियंट होगा, वो टूटेगा नहीं।
1: विंड एनर्जी के लिए हवा की स्पीड एक आमतौर पर कितनी होनी चाहिए?
0: देखिए कम से कम 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तो होनी ही चाहिए, तो वो आम ज्यादातर जगहों पे आपको नहीं मिलती है, वो आपको कोस्टल सिटीज में मिलेगी या हाइट, जैसे जब हाइट ऊपर जाते हैं हम लोग तो विंड स्पीड बढ़ती है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता जाता है, और यदि आप 12 किलोमीटर पे चले जाएंगे तो हवाएं चल रही है 150 किलोमीटर की स्पीड से, जिसे हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, नीचे तो पहाड़ है, पेड़ है, बिल्डिंग है, वो रेजिस्टेंस होता है तो विंड स्पीड कम हो जाती है, और जहां खुला इलाका होता है तो वहां विंड स्पीड ज्यादा होती है।
1: तो हेडविंड और टेलविंड जो होता है वो 80-100 बहुत आम
0: बात है। और आपने देखा होगा

0: किन वर्ल्ड मार में ये जेट स्ट्रीम का डिस्कवरी हुई थी कि जब अमेरिकन प्लेन्स जब कहते हैं जा रहे थे कहते हैं वेस्ट टू ईस्ट, तो वो फास्ट जा पा रहे थे, और जब वो ईस्ट से वेस्ट लौटते तो उनको ज्यादा समय लगता था। तो उन्होंने देखा क्यों हो रहा है, क्योंकि विंड उनको जेट स्ट्रीम वेस्ट टू ईस्ट जाने में मदद करती थी उनको, और जब आते थे तो अगेंस्ट
1: जब
0: विंड
1: भी
0: मिलती
1: हेडविंड
0: थी।
1: होगा तो वो
0: बिल्कुल
1: ज्यादा वक्त लगेगा। आनंद शर्मा जी, विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगले दशक में भारत की हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? क्या नवीकरणीय ऊर्जा, आधुनिक मौसम पूर्वानुमान, जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे और जन भागीदारी को एकीकृत कर यानी इंटीग्रेट करके भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर सकता है?
0: नहीं, बिल्कुल कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक तो हमने लीडरशिप तो ली, और एक और भी ध्यान रखिए, आज से 1000 साल पहले भी भारत जो था, देश जो था, हमारा जिस तरह का कल्चर था, हम लोग कंजर्वेशन में, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन में लीडर थे।
1: जी
0: पर बीच में कुछ गड़बड़ हो गई मुझे लग रहा है, और अब फिर दोबारा से हम एक इंटरनेशनल लेवल पे लीडरशिप का रोल अब निभा रहे हैं, और जिस तरह से हमारे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, हम डेफिनेटली जो है इस, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की समस्या हो, चाहे सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ने का प्रयास हो, उस सब में हम बिल्कुल कहते हैं सक्षम हैं। मगर हाँ, प्रयास ये है कि लोगों को, मैंने जैसे पहले भी कहा कि जब तक हम पर्यावरण से कनेक्ट नहीं करेंगे, उनको ये समझाएंगे नहीं पूरे साइकिल को कि किस तरह से काम करता है, और ग्रीन वॉशिंग ना हो, मॉनिटरिंग रेगुलरली हो और इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे उसके लिए आपको जितनी सब्सिडी देनी है सब्सिडी दीजिए, टैक्स रिलीफ देना है टैक्स रिलीफ दीजिए, पर हर कॉस्ट पे हमको पर्यावरण को बचाना होगा, कि पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। एनवायरमेंट सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी।
1: हर कॉस्ट पर पर्यावरण को बचाना होगा, और तभी हम विकसित भारत 2047 की दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ा सकते हैं। आज की चर्चा में हमने जाना कि हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा केवल भविष्य की जरूरत नहीं बल्कि वर्तमान की अनिवार्यता भी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद शर्मा जी, आप अतिरिक्त महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक श्री अरुण त्रिपाठी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 15वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी और वरिष्ठ पर्यावरणविद आनंद कुमार शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आशरेखा क्रिस्टल वॉइस। 9:45 और 56 सेकंड हो चुके हैं और आज हर जगह

ये खुशी जो है वो हम अपने आसपास के लोगों को भी दे सकते हैं। स्वच्छ भारत का सपना किसी एक का नहीं है, हम सबका सपना है। कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, पानी को जमा ना होने देना, ये छोटे छोटे कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं। याद रखिए, गंदगी सिर्फ बीमारियां लेकर आती है, लेकिन सफाई से आती है सेहत, सुंदरता और सम्मान। तो आइए आज हम सब मिलकर एक प्रण लें कि हम ना गंदगी करेंगे और ना गंदगी करने देंगे, है ना? तो दोस्तों, जब बात हुई है स्वच्छता की, तो स्वच्छ भारत मिशन को कैसे हम भूल सकते हैं। स्वच्छता हमारे जीवन की सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत है। जैसे भोजन और पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही स्वच्छता के बिना स्वस्थ जीवन भी संभव नहीं है। गंदगी से मक्खी, मच्छर, बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं। जहां सफाई है, वहां बीमारी जो है वो कोसों दूर रहती है। साफ सुथरी जगह पर मन जो है वो शांत रहता है, खुश रहता है। गंदी जगह पर बैठने से नकारात्मकता आती है, जबकि साफ जगह पर सकारात्मक ऊर्जा आती है। जब कोई विदेशी हमारे देश में आता है और उसे सड़क पर कचरा दिखता है, तो हमारे देश की छवि खराब होती है। स्वच्छ भारत, सुंदर भारत ही हमारी पहचान है और यही सम्मानित जीवन की नींव भी है। भारत सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था स्वच्छ भारत मिशन, जो एक राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान भी है। भारत में खुले में शौच मुक्त भारत बनाना, खुले में जो लोग शौच करते हैं उनको रोकना, वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रबंधन करना, ये सभी इसके लक्ष्य थे। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती तक यानी 2019 तक स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने का लक्ष्य रहा, लेकिन आज भी हम इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी आदतों में सुधार नहीं करते हैं। अगर हर इंसान ये सोचने लगे कि पूरा भारत हमारा अपना घर है, तो फिर ये समस्या हल हो सकती है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अगर बात करें तो और 6 लाख से अधिक गांवों में खुले शौच में शौच मुक्त उन्हें घोषित किया, गांवों को ODF प्लस बनाने की कोशिश की गई, यानी कि शौच मुक्त बनाने की कोशिश की गई। जहां खुले में लोग इसके लिए जाते थे, उस समस्या दूर की जा सके, जिसमें हर तरह के कचरे का प्रबंध भारत मिशन की, तो शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया। शहरों में 100% ठोस कचरे यानी सॉलिड वेस्ट का वैज्ञानिक संग्रह और प्रसंस्करण करना, मैनुअल जो हाथ से मैला ढोने वाली जो प्रथा है उसे पूरी तरह समाप्त करना, और लोगों में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लाया गया, पहुंचाया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए और इसके अलावा जो गीला या सूखा कचरा होता है उसे अलग अलग पुनर्चक्रण पर जोर दिया गया, ताकि उसको निपटारण किया जा सके। ये सभी इस मिशन के तहत काम किए गए और धीरे धीरे भारत स्वच्छता की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन पूरी तरह हम तब बढ़ पाएंगे जब हम अपनी सोच को बदलेंगे। तो आज ही अपनी सोच बदलिए। छोटा सा रैपर भी अगर आप सड़क पर फेंकते हैं तो 100 बार सोचिए कि क्या ये करना सही है, नहीं ना? तो उसे हमेशा डस्टबिन में डालिए और फिर देखिएगा कि हम इस मिशन से कैसे अपने भारत को स्वच्छ बनाकर आगे बढ़ पाएंगे, है ना? तो चलिए फिलहाल एक गीत सुनाती हूँ, उसके बाद कुछ और भी बताऊंगी आज के दिन जो खास है।

और अब वक्त बहुत कम बचा है तो जल्दी से आपको ये बता दूं कि आज का दिन बहुत खास है। क्यों खास है ये तो आप जानते ही हैं, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है और इसके अलावा भी इतिहास में बहुत कुछ दर्ज है। आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज की पुण्यतिथि भी आज के दिन होती है और वो भारतीय राजनीतिक में किंग मेकर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में देश की सेवा की। मरणोपरांत साल 1976 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया। और इसके अलावा आज का दिन जाना जाता है प्रसिद्ध हिंदी नाटककार और साहित्यकार डॉक्टर शंकर शेष की जयंती के तौर पर। हर साल 2 अक्टूबर को ये मनाई जाती है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1933 को बिलासपुर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था। और अगर मैं बात करूं तो उन्होंने प्रयोगधर्मी और चर्चित नाटक भी लिखे हैं। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता का सुंदर समन्वय किया है। बहुत से ऐसे नाटक हैं जो प्रसिद्ध हैं, जैसे एक और द्रोणाचार्य, महाभारत और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को जोड़ता हुआ ये बहुत ही खूबसूरत नाटक, फंदी जो कि 1971 में उन्होंने लिखा, घरौंदा जिस पर फिल्म भी बनी, रक्त बीज, खजुराहो का शिल्पी, कोमल गंधार, ऐसे बहुत सारे नाटक हैं जिनके लिए उन्हें जाना जाता है और उनके पात्र बहुत ही खास हुआ करते थे उनके नाटकों में। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार, न्याय प्रणाली में कमी और मध्यम वर्ग के आर्थिक शोषण को अपने नाटकों का मुख्य विषय बनाया। और अगर मैं बात करूं तो घरौंदा फिल्म जो थी वो उनकी कहानी पर आधारित काफी लोकप्रिय फिल्म रही और बीआर चोपड़ा की प्रसिद्ध फिल्म आज की आवाज भी डॉक्टर शंकर शेष के नाटक कांच के घर पर आधारित थी। तो आज हम डॉक्टर शंकर शेष की भी बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। और अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आज हम इस हफ्ते में वाइल्ड लाइफ वीक भी मना रहे हैं तो आज इसके बारे में भी आपको बता दूं, 2 से 8 अक्टूबर तक ये वीक मनाया जाता है, ये सप्ताह मनाया जाता है भारत में हर साल राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह के तौर पर जाना जाता है। और इस सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य है वन्य जीवों की सुरक्षा, उनके

संरक्षण और जैव विविधता के प्रति लोगों को जागरूक करना। हर साल 2 से 8 अक्टूबर तक ये आयोजित होता है और पहली बार इसे 1957 में मनाया गया था। इस दौरान देश के कई राज्यों में चिड़ियाघरों और राष्ट्रीय उद्यानों में बच्चों और आम नागरिकों के लिए मुफ्त प्रवेश या विशेष छूट दी जाती है। जागरूकता बढ़ाने के लिए पेंटिंग, निबंध प्रतियोगिताएं, रैलियां, वॉकथॉन जैसे कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, जितना अधिकार इस धरती पर इंसानों का है उतना ही बाकी जीवों का भी, लेकिन जब धीरे धीरे जंगलों को नष्ट करके इंसान बाकी जीवों से उनका घर छीनने लगता है तो जीवों की अस्तित्व पर खतरा धीरे धीरे मंडराने लगता है। और आज जरूरत है हमें ये समझने की कि सुरक्षा और संरक्षण कैसे किया जाता है और इसके लिए हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। वैसे अब वक्त ज्यादा नहीं, यहीं पर एक गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ और फिर से मुलाकात होगी 10:30 बजे लेकर दिल का मेलबॉक्स। इस बीच आप सुनेंगे विश्व दर्पण न्यूज और वर्ल्ड न्यूज, बहुत सारी चीजें हैं, हिंदी अंग्रेजी में समाचार और वर्ल्ड न्यूज सब कुछ सुनेंगे आप, लेकिन फिलहाल ये गीत आपके लिए। मैं लेती हूँ विदा म्यूजिकल दिल लगी से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजय घाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक उपयोगी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित उनके समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है।

0: इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। कक्ष से जया भारती।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अबीब जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में सह पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार सह पायलट ने कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद अब उन्हें आबुधाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा कि कनाडा ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और एरोस्पेस क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इससे भारत के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के अवसर पर श्री सिद्धू ने कहा कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं और पूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के प्रयास दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की तीरंदाजी रिकवर्स टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A Sarv Dharm Prarthana Sabha was held at Bapu Samadhi Rajghat in the national capital. President Draupadi Murmu attended the Sarv Dharm Prarthana this morning and paid floral tributes to the father of the nation. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal and Delhi Chief Minister Rekha Gupta also paid tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat. The nation also pays homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on his 122nd birth anniversary today. He was born on 2nd October 1904 in Pandit Deen Dayal Upadhyay Nagar, previously known as Mughal Sarai in Uttar Pradesh. As a teenager, he joined India's freedom struggle and participated in the non-cooperation movement in 1921. Following independence, Shastri held several important positions in Uttar Pradesh and later in the Union government. At his memorial Vijay Ghat in the national capital this morning. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that 11 metro stations have been closed till further instructions in the national capital. These include Janpath,

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जनजीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर आधारित ये विशेष श्रृंखला यही समाप्त होती है। आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर वक्त हो चला है हमारे सुबह के ट्रांसमिशन के आखिरी कार्यक्रम का, जहां बजेंगे आपके पसंद के कार्यक्रम।

अगला गीत जो हम बजाने जा रहे हैं वो फिल्म तेरे नाम से ओ जाना है। इस गीत की फरमाइश एक बार फिर भेजी है तेंसन क्रो ने लंखनसम कार्बी आंगलोंग से।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पावर डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश पूरे राज्य में आयोजित कर रहा है सेवा सेतु कैंप्स। हर कैंप्स में रजिस्ट्रेशन डेस्क होंगे, स्कीम काउंसलिंग डेस्क, वेंडर डेस्क और बैंकिंग डेस्क भी होंगे, ताकि कंज्यूमर्स कैंप पर ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सके, सवाल या समस्याओं का हल पा सके, रजिस्टर्ड वेंडर्स से कोटेशन प्राप्त कर कैंप पर ही बैंक लोन भी अप्लाई कर सके। कैंप शेड्यूल इस प्रकार है, 27 सितंबर 2026 को बोलंग इलेक्ट्रिकल डिवीजन सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, 29 सितंबर 2026 को राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, 1st अक्टूबर, 5th अक्टूबर, 7th अक्टूबर और 12th अक्टूबर को राज्य के सभी इलेक्ट्रिकल डिवीजन में ये कैंप लगाए जाएंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम से आप हर महीना 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त कर बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर 1 किलोवाट पर 33,000 का सब्सिडी, 2 किलोवाट पर 66,000 का सब्सिडी और 3 किलोवाट पर 85,800 रुपए का सब्सिडी ले सकते हैं। बैंक से 2 लाख तक के कोलेट्रल फ्री लोन पर लगभग 5.75 इंटरेस्ट रेट होंगे और 2 लाख से 6 लाख तक के लोन पर 7.9% इंटरेस्ट रेट होंगे, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट के 10% मिनिमम मार्जिन के साथ। इस योजना के लिए पावर डिपार्टमेंट से वैलिड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वाले कोई भी घर अप्लाई कर सकते हैं सही दस्तावेज के साथ। इस योजना में जिनका स्मार्ट मीटर नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो उपभोक्ता स्मार्ट मीटर नहीं लगवाए हैं वे डिवीजन ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए www.pmsuryaghar.gov.in या द पीएम सूर्य घर मोबाइल ऐप पर पावर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स। और ध्यान रहे, इंस्टॉलेशन के लिए नेशनल पोर्टल पर रजिस्टर्ड वेंडर्स का ही चयन करें। इस स्कीम को आप 31 मार्च 2027 तक ही प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए सभी कंज्यूमर्स जल्दी से अप्लाई करें। किसी भी तरह की सहायता के लिए स्टेट हेल्पलाइन 9378193870 पर आप संपर्क कर सकते हैं या अपनी नजदीकी इलेक्ट्रिकल डिवीजन सब डिवीजन ऑफिस पर संपर्क कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर पावा वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल जोन ईटानगर की ओर से जनहित में जारी।
1: दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला गीत फिल्म दिल का क्या कसूर से कटा तो जब हो कि हम हाले दिल किसी से कहें। इस खूबसूरत नगमे की फरमाइश आई है सुनीता पसुमतारी की तरफ से जो कि असम से है।

0: दोस्तों अब चलते हैं अगले गीत की तरफ, जो है फिल्म दीवार से कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। इसकी फरमाइश की है रोमेश रूनू और लकी ने कोलाकात असम से, और उन्होंने ये गीत डेडिकेट किया है अपने सभी करीबी दोस्तों को।
1: शिमारू

0: टीएनसी अप्लाई।
1: दोस्तों अगली फरमाइश आई है मैसा की देमाजी असम से बिमल बसुमतारी की तरफ से। उन्होंने सुनने की गुजारिश की है फिल्म सैनिक का गीत, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। तो सुनिए ये गीत।

दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गाना है बेफिक्रा, इसकी फरमाइश भेजी है हर्षित गोस्वामी ने बोखाकात आसाम से। पेश है ये ट्रैक।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाएं, जांच कराएं, भेदभाव मिटाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, क्योंकि आज गांधी जयंती का पवन दिन है तो इस खास मौके पर सरिहा

महाजन, कार्वी आंगलोंग से जोगेंद्र सोनाली और दौरभ गिरी ने फरमाइश की है फिल्म परिवार के गीत की। आज है 2 अक्टूबर का दिन और उन्होंने ये गीत आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के हर एक श्रोता को डेडिकेट किया है।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन डिमांड। चले चलते हैं अगली फरमाइश कर। एक बार फिर मैसा के धेमाजी आसाम से बिमल बसुमतारी ने फरमाइश की है फिल्म दिल तो पागल है के टाइटल ट्रैक की, और उन्होंने ये गीत अपने सभी दोस्तों को समर्पित किया है।

0: दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले हमारे रोज के नियमित श्रोता हितेंद्र दास ने गुजारिश की है उनका नाम एक बार फिर लेने के लिए। तो हितेंद्र जी, आपको आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अगला गीत हम विशेष रूप से आप ही को डेडिकेट कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये गीत जरूर पसंद आएगा।
1: शादी कर सकते हैं।

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत की फरमाइश की है लकी हेब्रोम बीमारी असम से, और उन्होंने ये गीत डेडिकेट किया है सोम पोदू और ज्योति सोरेन जी को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लिया और राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा है कि गांधी जी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक उपयोगी हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। कक्ष से जया भारती।
0: बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तक आगे बढ़ाया है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि आज दुनिया में हिंसा बढ़ रही है और ऐसे समय में महात्मा गांधी का अहिंसा और भाईचारे का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को आसान और तेज बनाने के वास्ते कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही भारत सुशासन की ओर बढ़ना है। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार

की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद अब उन्हें अबुधाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदा सिद्धू ने कहा है कि कनाडा ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और एयरोस्पेस क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इससे भारत के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के अवसर पर श्री सिद्धू ने कहा कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के प्रयास दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 70 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 24 रजत और 34 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो साथी बामिन सुम्पी और आप मेरे साथ बने हुए हैं हमारे आज के सेकंड ट्रांसमिशन में। श्रोता, इस ट्रांसमिशन के सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक गोपाल राय और तकनीकी अभियंता दीनयोग। आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं हमारे इस सभा के पहले कार्यक्रम को जिसका नाम है फिल्मी लहर। और कार्यक्रम फिल्मी लहर में आपको सुनवाते हैं यह पहला गीत।

जी हाँ श्वेता, आपसे मिलकर हमें बेहद अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि आपको भी उतना ही अच्छा लग रहा होगा। और हाँ श्वेता, अगर आप हमसे मिलकर अगर आपको अच्छा लग रहा है, हमारी बातें, हमारे कार्यक्रमों को सुनकर अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमें मैसेज करके भी बता सकते हैं श्वेता। जी हाँ श्वेता, हमारा नंबर है 9436887808, 9436887808 पर आप हमें मैसेज करके बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। जी हाँ श्रोताओ, इसी नंबर पर आप हमें हमारे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड के लिए भी मैसेजेस भेज सकते हैं। तो श्रोताओ, हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। श्रोताओ, हमारी बातचीत चलती रहेगी, फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओ, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी लहर। अब आइए आपको सुनवाते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, यानी कि पाश्चात्य गीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम वैसे मेलेडी। सबसे थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी और विद्यार्थियों ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तक आगे बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद अब उन्हें अबू धाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 11 मेट्रो स्टेशन अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली स्टेशन शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस, INA, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर मेट्रो की इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाई ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जिए को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन

दिल की बातें बता जाती हैं आंखें, धड़कनों को जगा जाती हैं आंखें। दिल पे चलता नहीं जादू चेहरे का कभी, दिल को तो दीवाना बना जाती हैं आंखें।

लिरिसिस्ट संतोष आनंद ने जिंदगी की तुलना एक खूबसूरत नगमे के साथ करी है। वो कहते हैं, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल, और इस कार्यक्रम में आखिरी गजल आप सुनेंगे जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गजल अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए श्रोता, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला कार्यक्रम गीतमाला।

खुद को खोजाने का सबसे खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो देना। ये सीख हमें दे गए हैं गांधी जी। श्रोता, आज गांधी जयंती के अवसर पर आइए हम याद करते हैं उनके कुछ खास शब्दों को, उनकी सोच को और उनके साहस को जो हमेशा हमें आगे बढ़ने में हौसला देते हैं।

गांधी जी कहते हैं, ऐसे जियो जैसे तुम्हें कल ही मरना है और ऐसे सीखो जैसे तुम्हें हमेशा जीना है। वो कहना ये चाहते हैं कि आप जिंदगी के हर पल को, हर पहलू को भरपूर आनंद उठाइएगा। आपको जो आज करना है आप करके रहिए। अगर किसी को शुक्रिया कहना हो या किसी से माफी मांगनी हो तो वो आज ही कर दीजिए, कल पर मत छोड़िएगा। दोस्तों, जो अच्छा काम करने का सोच रहे हो उसे आज कर लीजिए। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर आप कुछ सीख रहे हो तो ऐसा सीखिए जैसे आज आपका पहला दिन हो, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होता है। अब तो उम्र हो गई है, अब क्या सीखना। ऐसे शब्दों ने ही कई सारे ब्रिलियंट आइडियाज और ब्रिलियंट माइंड्स को रोक कर रखा है। तो श्रोता, आज आप भी एक बच्चे की तरह जिज्ञासा रखिए और हर दिन कुछ नया सीखिए।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला, और इस कार्यक्रम में आज हम महात्मा गांधी के कहे गए कुछ खास शब्दों को आपके पास लेकर आए हैं। उनकी इस सोच को हम याद कर रहे हैं। वो कहते हैं, अ मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। हिंदी में इसका अनुवाद करें तो ऐसा रहेगा, इंसान अपने विचारों की उपज है, वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। श्रोता, अगर आप दिन भर सोचेंगे कि मुझसे ये नहीं होगा, तो आपका शरीर और दिमाग वैसे ही काम करेगा और आप सच में हार जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि कोशिश करने से ये जरूर हो जाएगा, तो आप में वो हिम्मत आ ही जाएगी। श्रोता, जैसे बीज से पेड़ बनता है, वैसे ही एक विचार से आपका कल बनता है। इसीलिए गांधी जी कहते थे, अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वही एक दिन आपका जीवन बन जाएगा।

Strength does not come from physical capacity, but from an indomitable will. मतलब ये कि ताकत शरीर की क्षमता से नहीं बल्कि अटूट इच्छा शक्ति से आती है. मजबूत बाजू होने से कोई मजबूत नहीं बनता दोस्तों, मजबूत वो है जो गिरने के बाद भी कहता रहे एक बार और कोशिश करता हूं. शरीर थक जाता है पर अगर आपका मन हार नहीं माने तो इंसान कभी हारता नहीं है दोस्तों.

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतमाला। आपसे थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। फ्रांस के विदेश व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोरिसिये के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी तथा विद्यार्थियों ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले मैरीकॉम ने 2014 में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत के नित्रा कुमानन ने एशियाई खेलों में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पहलवान सुजित कलकल ने ओलंपिक चैंपियन को हराकर एशियाई खेलों के लिए 65 किलोग्राम फाइनल में जगह पक्की की। भारत पदक तालिका में 71 पदक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 34 कांस्य पदक शामिल हैं। महात्मा गांधी जयंती के कारण आज भारतीय शेयर बाजार बंद है। बाजार सोमवार को फिर से खुलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to Rs. 67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
3: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
2: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
3: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
2: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
3: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओ, वादा करना क्या होता है? ये सिर्फ दो शब्द नहीं होते, ये अपने कल को किसी और के नाम कर देना होता है। जब आप वादा करते हो तो आप कहते हो कि चाहे समय बदल जाए, चाहे हालात बदल जाए, पर मेरा ये शब्द नहीं बदलेगा। और श्रोताओ, लोगों को वादे को लेकर अलग अलग एक्सपीरियंसेस है लाइफ में। कहीं वादा पूरा होने पर खुशी हुई है तो कई वादे टूटने पर दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। इसीलिए कहते हैं, वादा सोच कर करो, पर जब कर लो तो उसे सांस की तरह निभाओ।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to Rs. 67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
3: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
2: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
3: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
2: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
3: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक 60s to 80s का आखिरी गीत फिल्म अभिमान से किशोर कुमार की आवाज में।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक 60 से 80 सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर। अरुण FM जहां होती है दिल से दिल की बात।

खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं जरूरत है। जब तक आप खुद अपने दोस्त नहीं बनोगे, दुनिया आपकी दोस्त कभी बन ही नहीं सकती। इसीलिए अपने आप को खोने से अच्छा है दुनिया को खो दो।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग सरन FM 103.1 MHz पर। और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: मौसम विज्ञान ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाई ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 12 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या बढ़कर 72 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बातचीत के दौरान भावुक कैप्टन स्मिथ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का फोन आने पर अपनी खुशी और गर्व का अनुभव किया।
2: उस मोमेंट पे सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था। मैं एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सोचा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और बाकी सबकी भी उतनी उसमें रोल था, बट जान के
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस के विदेश, व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिये के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ बैठक में श्री गोयल ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अनुपम मिश्र।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व

प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई अन्य मंत्रियों, सांसदों तथा विद्यार्थियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12-13 वर्षों में खादी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं।
1: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं। युवा मोदी जैकेट पहन रहे हैं, मोदी कुर्ता पहन रहे हैं। युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है। खादी की कुर्ती हो, जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज थिरु के कामराज की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि थिरु के कामराज ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा और आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको अटल सुरंग के माध्यम से इस दृष्टि को साकार रूप देने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
2: विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे के नीचे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्मित अटल टनल आधुनिक इंजीनियरिंग और सीमा सड़क संगठन की तकनीकी क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देश की महत्वपूर्ण आधारभूत और सामरिक परियोजनाओं में शामिल अटल टनल, जहां प्रदेश के कुल्लू व जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को वर्ष भर हर मौसम में जोड़े रखती है, वहीं आज हिमाचल प्रदेश के विकास, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 9 किलोमीटर से अधिक लंबी अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। इस पर करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल टनल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में उल्लेखनीय

0: लिए सकारात्मक बदलाव आया है। लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग निवासी सोनम जांगपो ने बताया कि अटल टनल स्थानीय लोगों के लिए परिवहन, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
1: अटल टनल जो खुलने से पहले हमें रोहतांग टॉप होके कुल्लू मनाली जाना पड़ता था, जिससे हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही टनल खुला उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम इजिली, इमरजेंसी कभी भी कुछ भी रहता है हम इमीडिएट एक दो घंटे के अंदर कुल्लू पहुंच जाते हैं। हमारे जो फसलें हैं, जो किसान बागवान भाई है, उन सभी के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: अटल टनल रोहतांग के बनने से जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं इसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों खासतौर पर लेह लद्दाख के लिए वर्ष भर आवागमन और अधिक सुगम हो गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में पंजाब के हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह सीनियर के प्रयासों की सराहना की थी। एक रिपोर्ट।
3: ओलंपियन राजेंद्र सिंह 1980 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जिसे इंडिया ने राजेंद्र सिंह द्वारा 3 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान से जीता था और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वह 1990 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई से जुड़े और अपना कोचिंग करियर शुरू किया। उनके समय में सब जूनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने कई नेशनल अवार्ड जीते। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि राउंड ग्लास अकादमी पंजाब में 60 हॉकी अकादमियां चला रही है, जिसमें 6 से 8 साल की उम्र के लड़कियों समेत 3,000 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल की बारीकियां सीख रहे हैं।
4: मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरा जिक्र किया और मुझे मेरे काम की सराहना की। मैं पिछले 5 वर्षों से राउंड ग्लास स्पोर्ट्स अकेडमी के साथ युवाओं को हॉकी को आगे ले जाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरणादायी शब्द सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और साथी कोचेस ओलंपियन को भी प्रेरणा दे।
3: उन्होंने भारत के लिए मजबूत हॉकी टीम बनाने के लिए काबिलियत वाले युवाओं को कोचिंग देते रहने का भरोसा दिया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाऊ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की सेपक टकरा के सेमीफाइनल में भारत को जापान से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत पदक तालिका में 72 पदकों के साथ 6 स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है।
2: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: श्रोताओं, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से मिडडे न्यूज तथा दोपहर समाचार और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, चलिए अब शुरू करते हैं हमारे अगले कार्यक्रम को, यानी कि कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s को।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
3: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
2: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
3: एचआईवी की जांच कराए, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
2: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
3: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 90s के कुछ रोमांटिक गानों को। श्रोता, रोमांटिक गाने सिर्फ गाना नहीं होता, ये वो खत होते हैं जो हम जुबान से कभी दे नहीं पाते, इसीलिए धुन में लपेट कर दे देते हैं। एक रोमांटिक गाना जब बजता है तो वक्त रुक जाता है, चाय ठंडी हो जाती है, बारिश धीरे हो जाती है और दिल थोड़ा जोर से धड़कने लगता है। रोमांटिक गाना सुनकर प्यार करने वालों को अपना प्यार याद आता है और जिसका कोई प्यार नहीं उसको प्यार करने की वजह मिल जाती है।

पूजा से जुड़ी आस्था के इर्द गिर्द घूमती फिल्म द वन 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को क्रिटिक्स से भले ही मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली हो, लेकिन दर्शक इस फिल्म को बड़ा पसंद कर रहे हैं। लोग इस फिल्म से इस तरह कनेक्ट कर रहे हैं कि थिएटर के बाहर ठेकुआ बांटा जा रहा है। सुपरनेचुरल और मिथोलॉजिकल फिल्म द वन बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ते से हाफ सेंचुरी मार ली है। इस फिल्म ने 1 अक्टूबर को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ का कारोबार कर लिया है। मात्र एक हफ्ते के अंदर इस फिल्म का कारोबार 53 करोड़ के करीब पहुंच गया है। अभी उम्मीद है कि गांधी जयंती फिर शनिवार और रविवार को फिल्म की कमाई में और भी उछाल आएगा।

एक्टर्स गुलशन देवैया और रसिका दुग्गल की फिल्म लिटिल थॉमस का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये ट्रेलर गोवा के एक अनोखे परिवार की जिंदगी की प्यारी और मजेदार झलक दिखाता है। फिल्म की कहानी एक छोटे से लड़के के सच्चे और भावुक दिल के इर्द गिर्द घूमती है। ट्रेलर में थॉमस नाम के एक छोटे लड़के और एक छोटे भाई को पाने की कहानी और उनकी पक्की कोशिश पर केंद्रित है। एक छोटा लड़का और उसकी एक छोटी सी इच्छा, इस मुख्य विचार पर आधारित ये ट्रेलर हल्के फुल्के मजाक और पारिवारिक ड्रामा के बीच संतुलन बनाता है। ये उस मासूम उथल पुथल को दिखाता है जो तब होती है जब थॉमस मामले को खुद अपने हाथों में लेने का फैसला करता है। फिल्म में गुलशन देवैया और रसिका दुग्गल थॉमस के माता पिता का रोल निभा रहे हैं और इस फिल्म में प्यार, साथ और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बच्चे किस हद तक जा सकते हैं, इन विषयों को लेकर ये बहुत ही प्यारे और पुरानी यादें ताजा करने वाले अंदाज में दिखाया गया है। कौशल ओझा ने इसकी कहानी लिखी है और डायरेक्ट की है। इस फिल्म में लिटिल थॉमस का रोल हृदांश पारेख ने निभाया है और इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने अनुष्का शाह, चारू ओझा, रजनीकांत ओझा, अक्षय ठक्कर, कबीर अहूजा और रंजन सिंह के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म के डायरेक्टर कहते हैं ये फिल्म उनकी बचपन से प्रेरित थी और इस फिल्म में सभी एक्टर्स की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी आई है और वो कहते हैं कि लिटिल थॉमस एक ऐसी फिल्म है जिसे टीम ने इसीलिए बनाया ताकि हमें याद दिलाया जा सके कि हम फिल्में क्यों बनाते हैं। श्रोता, ये फिल्म रिलीज होगी 23 अक्टूबर 2026 को।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे वांछो श्रोताओं के कार्यक्रमों को। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि अक्टूबर लेन मनी अनि तारीख शुक्रवार ई पोहासों आजम बजे पुनी मिनट मुई के पेशम नकेम वांचो साइका पांग कपई पोवा कहवा पाई फाले वांग का वांग सुवे देश अनि फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी पु क्या हो थम हो तब पुनी बन आनत अंग पा नि मन मा ची लुम सोम तोले हजा नि मन मा अनप सोम ए देश कैपिटल दिल्ली मक्या गांधीजी जुक्तिंग राजघाट माता सर्वधर्म प्रार्थना सभा जंगजोप साइजे तुसो अंगोत असोले बोम हजा जंगजोप तुसो मा हाकंतोले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधा कृष्णन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल हिया दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता अम ए महात्मा गांधी जुक्तिंग राजघाट मा नाइपुंग वंजौ को उदान ले गांधी जी लुम शोम तोले अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनेके अनि महात्मा गांधी पु क्या होथम होता पुनी बन आनत अंगपा नि मन मा स्टेट खनक मु अंकि मोंगमै का हो अंतो ले स्वच्छ भारत दिवस नि मन मा पोन पु जाय ते क्या हजा नि पोन ए पंगनुसा वै मोंगकन मा जी सन आशुक्ले होचिंग होजिंग ट्रुथ ता आहेसी नॉन वायलेंस तुमेलम खो पीस हिया चिकचौ का कोई क्लीनलीनेस हनपक मा मोकसा आजों अमोंग दोक्या गांधी जी ए अपु आहो ले तो क्या आसुमय होलमपो तो ले ले अंके मोंगते कन सुंग तांताई ले ना आचना दन ले तो होया ला ओंग हुतै पु ले वन ले गवर्नर राजबो मा महात्मा गांधी ए दे संख्या हो जिंग जिंग होचा खजों हिया पुंजों जान जाय होने खले चु चा सन फो चक मा ले देश खनक नु चक मा ताइपु ले वनजे हमपु ले चु वन ले अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ए अनि ईटानगर बैंक्वेट हॉल हम मा महात्मा गांधी पु क्या नि आखा आखन क्या मन मा सो क्या स्वच्छ भारत दिवस तुसो म वन क्या जंग वन मा

0: public khanak nu ang gandhi ji e apu ano le to kya tu mai lam khau peace here non violence holam to le tai ngo he olwan kya bo ma local communities chiksau ka koi samai wan mai le tai tham puku ma public khanak nu e mokosa le swak ang kya holam tai nang hute kya mo van zele khandu e haja bama haja tu so ma sector sector pho to khanak nu ang chik chau ka koi ba ma kya homo khosat apu no la aha ma tai ang kya swachhta wahan gari launch hon kya bo ma haja tu so ma ha ka hai kya la na no sam ya volunteers sam ang ta chik chau ka koi cleanliness pledge sau ju asau alang le arunachal pradesh chief minister pema khandu e ani ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आईएमसी होथम ए टिंखों हाखा या हमखो हमखो तो क्या जिला चिसा लाइसो कुंसों वेस्ट साइले आठत आवत अंक्या मोटो तामताई ले अचोन अम्माई पुकुमा अंग जिंगे जाओ के ता आईएमसी एप होका डाबले कहोमा अजंग बाजा एप मखंग ए हालक्या वेस्ट पाउले आवत अंग आहामते जाय ते क्या गार्बेज गारी ए ओजों कपन हे लक्या पक्तिक तो अंग चोक क्या बो मा डस्टबिन होप अकाइले आमनन पुली मा हजबाम क्या रिपोर्ट चु को तो नंग चोक कई चंग ते ते जापान देश आई ची नागोया होनुए मा इजुम ए असो अपोले ngo ते क्या एशियन गेम्स 2026 होबो फट पांतु सो मा India angkya hobo phat mi tham ani chu mawma mo holi hobo phat events ma medal kapla le bakle haje kha ma khat kha kya ang shako am puzam ban aga kg category boxing baupan ma lovelina borguhai e china de shako bau zi to lat angkya a gold medal kaple bo ma asian games ma shako am boxing bau ma india a gold medal kapla kya ijale होथम अनिपा सतना बोमाई याथो मा हालक्या मेडल 2014 जंग बोमा मेरी कॉम एटी तम लतन चंक्या हजा बोमा अनिवै इंडियन शको अम आर्चरी टीम थम एचु हिस्ट्री जो जिंगले हापसन थंगजिक पान बाउ मा गोल्ड मेडल कपलले बोमा इंडिया अंक्या मिक्स आर्चरी टीम थम एचुता सिल्वर मेडल कपले कहोमा अजंग बजा बा मा इंडिया ए अठा कपले हजा एशियन गेम्स 2026 हबो हपत पंतु सो मा बन अनि गोल्ड सा अली सिल्वर बोमा सा बन अली ब्रोंज ले खौ पुजम बन मेडल कप लत अना बोमा इंडिया मेडल तली मा अथा आजोग दन तो हाइले सतना नेशनल ब्लड डोनेशन डे नि मन मा अनि ईटानगर मक्या अरुणाचल मनी ईटानगर मा क्या अरुणाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली माता आजी डोनेशन कैंप टू सो अंगोट आसोले बोमहाजा मा आजी डोनेशन चू को अतुनपु ए ले स्टेट अंक्या राज्यसभा एमपी ताई तागक चू हकाहेले हजा ब्लड डोनेशन कैंप टू सो अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन हिया डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन होथम नि ए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट थम फाइ आशा मथम अन क्या ए अंगोद सो के चंग क्या बो माजा कैंप टू सो हाजा कैंप मोद सत्तो टेक्निकल लम मा आर के मिशन हिया त्रिम सिंह हम नि ए सो ओफोंगला असुन असेले काहो मा अजंग बा नेशनल ब्लड डोनेशन डे नि मन अखा अखन अंग हाजानिंग क्या ब्लड डोनेशन कैंप टू सो मनी तावंग होनोय जनरल ग्राउंड मक्या कालावंग पो होल माचू अंगोद असोले कहो इवे इजा आकाशवाणी ईटानगर काफे में साय अपहाई पोंपंगा इजा साय बानिम पोंगला हमडिंग मा अपहाई
1: HIV kakli bama hektik la yang sing thai ba haiyawai honu changpu HIV kak halake kakli phaike jemai ke aji hokan holi chitai le yip pam ke haning ka kak mi to tap do ke matkul makhang yang tap ba an to le honu ang ke hosa to le atai le parai le aka tham hai haya kak tam le ngo tong ke chak asap apong ke tam le sa ling ke मुन खाऊ मुन चौ ए जत के निंग के खांगे ले मन तैराई HIV kak tai dai cha le pan no ko haning ke ba ma pong pan ma yang sing yang lap thai ba kak lak ring le amai le san no le ngwang ka pai HIV kak li thong ta ra haning ke ba ma ata ta ang apo no le ko kak tai dai cha le ban ke bo ma ata ta to chu ta chak ta kon haya ba ma pang nu sing se the ba national aids helpline 1097 ma tik to twa kai eya ka pangnu san pakmale dhs nahalgan toke arunachal pradesh state aids control society ki makhange aile kha kha kha ka chu ivai
2: aap sun rahe the wancha shwata ke karyakramon ko aap inke aage ke karyakramon ko sun payenge arun fm maaf kijiyega akashvani tanagar मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर आप इनके आगे के कार्यक्रमों को सुन पाएंगे और श्रोताओं आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: वांछू श्रोताओं का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए सुनते हैं ईदू मिस में कार्यक्रम।
1: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर माचला पुची इन्नी मिट्टू बिल्ली एतानीची ईदू मिस में आहोला किसी दरगालंबो एतानी महात्मा गांधी आला mahu magaru ingunu naba gadi jointi enaga mahom ona medeli machi rajghat mahatma gandhi prachane dharam keba machi khum akhaga ma president Draupadi Murmu vice president CP Radhakrishnan prime minister Narendra Modi lok sabha speaker Om Birla union minister Manohar Lal donen ikisa imukachu kho giga bada la hoga etani india atiheta doba ewema hunhe taruba Mohandas Karamchand Gandhi ala inu mau mangaru inu naba ini India tika done auta abamane enaga machini Mahatma Gandhi me lau gamba ayama kebane chihim chichi egai bochi mauji dane Arunachal Pradesh Governor Lieutenant General Retired Kirti Parnaik me la hegane ali ini enaga jimane atikachi imume akua penga la kipimi aidone anjite imupa shagai bauchi mawujida lagada ahoga ambachi asito lapra done machi lapra ge amakara du khala Arunachal Pradesh machi imume aji ai done karuchi dega mane ame ai ho eji nana governor me lagane jo he kachi chu kajia je bu jo ya da lane Mahatma Gandhi me lamba chama a mane Arunachal Pradesh machi imume ai to ji na lagada ahoga खोआ दोंगाने इमु के बापराव के बने जम्मा महात्मा गांधी में अहिंबा आयोमा छिहिम छिछि जिना ने Arunachal Pradesh Chief Minister पेमा खांडू में ओना ईटानगर छि बैंकॉट हॉल मने अतिका से दे अखाउ छि पो प्रोग्राम अखगा मा गिबा माहो लगाने नि पिंगा इउ के बने से दे अखाउ अरुण दा पुगादा लाय बादा आओगा अतिका छिमु में खो नोगा गा इतुगा मजि ना ने चीफ मिनिस्टर में लाइबर प्रोग्राम मने आज हितया दोने एकिशा वॉलंटियर इमोन ब्रो है अतिका से दे अखोची पो लासे आथगा बदा अहोगा ओको ममने योबी ताइची अप्रोमा आरयावे इटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन IMCF मे है चीफ मिनिस्टर पेमा खान दुमे ओना अपा ब महो आएफ मने ताइची गेलाइगा ट्रक काजियामा थुगा खगा आइदोने kajama taichi khaga apalaga ba athu suji ga da la hoga Asian Games ta magama India ma chi yaku lovelina borghai me boxing chamaga ma ne gold medal ane te ba maho Mary Kom me aha inu ejar kayana hulupi ma chi nu gold medal ane te pa lovelina me ali ane te ga ma a me China ma chi bauji he manga 0 point ma ne ane bada ahoga India mache yakolom rume ipuli omaga mane gold medal anete oga ba maho netra kumanon me proto mane silver medal anete bada ahoga India me echa honi ba huluni gold anyaho kapi silver adone asoro kapi bronze medal la prage inhu medal anete ga bada ahoga national blood donation दे अमुमाने बुनी ईटानगर से Arunachal Pradesh Legislative Assembly माने इयु छगामा राज्यसभा एमपी ताइतागा लाप्रगे इमु उखमे इयु हा बता आहोगा ता इयु छावे कैंप है Arunachal Life Saving Foundation में Arunachal Pradesh Government माचे हायर डोने टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट आई डोने हेल्थ डोने फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गो आवागने अखनेगा महो तवांग अतिवचे जनरल ग्राउंड कलावांग पो होलमान अब आई कैंप आखने का दा आहोगा ऑपरेशन सद्भावना कोकोमा ने इंडियन आर्मी माजे स्पियर कॉर्प्स में बुनी निगा ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पासीघाट माजे वेटरन सेवा केंद्र माने लिबाचा APSSB एग्जाम आखगा मा प्रेगा बा में आहुलू प्राइस अपिगा बदा आहोगा अमहो सेवा कोकोमा ने वेटरन सेवा केंद्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोने हॉस्पिटलिटी कोर्स आहिगा मा आहे तो दया बेच का समझे मैं आका पे हूँ खेगा बु प्राइस आप होगा पता आओगा इतने चीज इतने मिश्मी आओ अलिमाओ उन तो भाई
2: एचबीएमबी एचबीएमबी चिपो आसवे आउटा कागा
3: एचआईवी हम बे है एचआईवी गिला में गी यू घर दोगा गे कांडो ने जी दोगा गे एचआईवी हम बे गिला इंजेक्शन थापो बीजीजी था दोगा गे माने एचआईवी की अली ओदा एचआईवी हम बे गिला नानी में आ गे माने खे दोगा ही
2: एचआईवी हम बे है जापा जी गे आंखों में गा गे जापा हाथ दोगा गे आई ओदा ने आरंडो में थोबा माने एचआईवी हम बे की गुमी
3: अलने एचआईवी हेम्बे गई जिंगाची तमाको अतुसु अरुंदा खागा हेम्बे गई ओबोचामा असागा गई गो अबोंगो याबु इजिगा अतुची तोगा हिव एचआईवी हेम्बे इजी मी कबा असागा अलाजीजी तमाको अगुतेने अतुसुजी इचा एचआईवी हेम्बे चिपुमा इचिबु असाओदा ओगा इबुया है नेशनल एड्स हेल्पलाइन जी नंबर खगे जीरो खिनी उमा कॉल एजी इचा कोबा है अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज नाहरलगुन में चिमे लाहेगा।
0: आप सुन रहे थे ईदो मिश्मी श्वेता के कार्यक्रमों को और आप आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेब 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर ट्यून इन करके आप इनके आगे के कार्यक्रमों को भी सुन पाएंगे। अश्वता अब अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम जारी रखते हैं अपना फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का और आपको सुनवाते हैं कुछ बेहतरीन गाने।
4: पत्थर है वो मुझे रोक टोक

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
3: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
2: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
3: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
2: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
3: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं के कार्यक्रमों को और उसी के साथ ही समाप्त होता है हमारा सेकंड ट्रांसमिशन और इसके बाद आप सुन पाएंगे हमारे तीसरे ट्रांसमिशन के सभी कार्यक्रमों को जिसके लिए आपके साथ जुड़ेंगे आरजे नीलम। तो श्रोता, आप मुझे यानी कि आपकी रेडियो साथ ही बामिन सुम्पी को आप दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोता मित्रों, आप सभी का इस तीसरी प्रसारण सभा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज के इस सफर में मैं हूं आपकी हम सफर, आपकी अपनी रेडियो साथी नीलम। जी हाँ श्रोता मित्रों, इससे पहले आप हमारी दूसरी प्रसारण सभा का आनंद ले रहे थे आपकी अपनी चहेती आरजे सुम्पी के साथ। जी हाँ, आरजे सुम्पी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परिचय के लिए और स्टूडियो की आगे की जिम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए। दोस्तों, अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं, तो चलिए अब आरंभ करते हैं तीसरी प्रसारण सभा। आप मानवता में विश्वास मत खोइए।

0: मानवता सागर की तरह है, अगर सागर की कुछ बूंदे गंदी है तो सागर गंदा नहीं हो जाता। राष्ट्रपिता गांधी जी के इस विचार के साथ पेश है कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है और कई मायनों में यह दिन बहुत ही खास है। आज महान व्यक्तित्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। श्रोता मित्रों, महात्मा गांधी की जयंती का दिन भारत के लिए राष्ट्रीय गौरव और पूरी दुनिया के लिए

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म से ये गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये दिन गांधी जी के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने के मकसद से मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस दिन को मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। 2 अक्टूबर का दिन भारत के इतिहास में बेहद मायने रखता है। इसी बीच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर साल इस दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। साथ ही इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। ये दिन महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर उनके अहिंसा के सिद्धांत को समर्पित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन को मनाने की शुरुआत कैसे हुई? आइए जानें इस दिन को मनाने की शुरुआत कब हुई और इसका क्या महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की पहल भारत ने की थी। वर्ष 2007 में भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव रखा जिसमें महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया गया। इस प्रस्ताव को 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वीकार कर लिया और संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अहिंसा के सिद्धांतों की शिक्षा और जन जागरूकता को बढ़ावा देना बताया। तो चलिए श्रोता मित्र, इसी के साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

श्रोता मित्रों, इससे प्रेरणादायक गाना को आप सुन रहे थे, धूम 3 फिल्म से, जिसे आवाज दी है शिवम महादेवन और अनुष शर्मा ने। श्रोता मित्रों, ये दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी की उस सिद्धांतों और जीवन को याद करने का अवसर देता है, जिसके जरिए उन्होंने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि दुनिया भर के स्वतंत्रता आंदोलन और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। जी हाँ श्रोता मित्रों, कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के तहत आज हमने कुछ बातें साझा की अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से जुड़ी। तो इसी के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे बारी बारी से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, और 5 बजते ही आप सुन पाएंगे नुक्ते श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मछार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कृतज्ञ देश आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टैट केटी पारनायक ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोगों से महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर नगर निगम IMC के तकनीक आधारित पहल IMC ऐप का शुभारंभ किया। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना। और एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाई ने महिला मुक्केबाजी में 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 12 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या बढ़कर 72 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मछार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
3: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई। और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। स्मिथ, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
4: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्ट्रेस और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी हौसला कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है।
2: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मॉलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों से संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
5: फ्रांस के विदेश, व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिये के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, UPI के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ बैठक में श्री गोयल ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अनुपम मिश्र।
2: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस हो रहा है। श्री शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का यह बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि सत्य और अहिंसा ने महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी पक्की प्रतिबद्धता को हर व्यक्ति की गरिमा का उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। इधर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पारनायक ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर मनाया जाने वाला यह अवसर सभी को महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। राज्यपाल ने कहा है कि महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में सत्य, अहिंसा, शांति और स्वच्छता के मूल्यों को समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि गांधी जयंती केवल स्मरण का दिन नहीं है, बल्कि सत्य, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और मानव सेवा के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत करने का अवसर भी है। राज्यपाल ने कहा है कि महात्मा गांधी का मानना था कि किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उनके लोगों में निहित होती है, विशेषकर उनके युवाओं में। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन के और कार्यों के माध्यम से पीढ़ियों को साहस, अनुशासन और उद्देश्य की भावना के साथ व्यापक जनहित के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोगों से महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वे आज ईटानगर के स्टेट बैंकेट हॉल में स्वच्छता ही सेवा 2026 के तहत आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री खांडू ने स्वच्छता बनाए रखने और स्थानीय समुदायों को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर नागरिकों से महात्मा गांधी की सत्य, अहिंसा, सादगी और सेवा के आदर्शों को अपनाने को कहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छ जीवन शैली के प्रति जागरूकता अभियान के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए स्वच्छता वाहन का औपचारिक शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर नगर निगम IMC की तकनीक आधारित पहल IMC ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप का उद्देश्य कचरा संग्रहण व्यवस्था को अधिक स्मार्ट, तेज और प्रभावी बनाना है। ऐप के माध्यम से कचरा उठाने वाले वाहनों की लाइव ट्रैकिंग की जा सकेगी। इसके अलावा लोग कचरे से भरे या ओवरफ्लो हो रहे कूड़ेदान की सूचना दे सकेंगे। ऐप में पहले और बाद की तस्वीरें दर्ज की करने की सुविधा शामिल है, जिससे शिकायत किए गए कचरे के हटाए जाने की निगरानी और या की जा सकेगी और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में पंजाब के हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह सीनियर के प्रयासों की सराहना की। एक रिपोर्ट।
6: ओलंपियन राजेंद्र सिंह 1980 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जिसे इंडिया ने राजेंद्र सिंह द्वारा 3 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान से जीता था और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वह 1990 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI से जुड़े और अपना कोचिंग करियर शुरू किया। उनके समय में सब जूनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने कई नेशनल अवार्ड जीते। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि राउंड ग्लास अकादमी पंजाब में 60 हॉकी अकादमियां चला रही है, जिसमें 6 से 8 साल की उम्र के लड़कियों समेत 3,000 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल की बारीकियां सीख रहे हैं।
7: मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरा जिक्र किया और मुझे मेरे काम की सराहना की। मैं पिछले 5 वर्षों से राउंड ग्लास स्पोर्ट्स अकेडमी के साथ युवाओं को हॉकी को आगे ले जाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरणादायी शब्द सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और साथी कोचेस ओलंपियन को भी प्रेरणा दें।
6: उन्होंने भारत के लिए मजबूत हॉकी टीम बनाने के लिए काबिलियत वाले युवाओं को कोचिंग देते रहने का भरोसा दिया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात व मध्य प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी और कामले के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शब्दसाची भट्टाचार्य। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे स्पोक टू ब्रेव इंडियन पायलट कैप्टन स्मिथ मचर, हुज हीरोइक्स इन थ्वर्टिंग ऑफ एन अटैक बाय हिज को पायलट सेव्ड 180 लाइव्स ऑन द फ्लाई दुबई फ्लाइट फ्रॉम दुबई टू तेल अवीव। Captain Mutcher gave details of his experience to the Prime Minister and spoke of what gave him courage during the incident. The Prime Minister applauded his bravery and wished him a quick recovery. Mr. Modi said the whole country is praying for him. He said Captain Smith's courage, presence of mind and composure saved many lives. The Prime Minister lauded Smith's spirit, saying that the country can proudly say that Indians are not those who take lives, but those who were willing to risk their lives to save others. During the interaction, an emotional Smith shared that PM Modi is his biggest idol and expressed how special and proud he felt to receive the call. The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A Sarva Dharma Prarthana Sabha was held at Bapu Samadhi, Rajghat, in the national capital. President Draupadi Murmu attended the Sarva Dharma Prarthana this morning and paid floral tributes to the father of the nation. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal and Delhi Chief Minister Rekha Gupta also paid tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat. The nation also paid homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on his 122nd birth anniversary today. He was born on 2nd October 1904 in Pandit Dindayal Upadhyay Nagar, previously known as Mughal Sarai in Uttar Pradesh. As a teenager, he joined India's freedom struggle and participated in the non-cooperation movement in 1921. Following independence, Shastri held several important positions in Uttar Pradesh and later in the Union government. Prime Minister Narendra Modi paid floral tribute to the former Prime Minister at his memorial Vijay Ghat in the national capital this morning. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held bilateral meetings with his counterparts from France, Canada, Saudi Arabia and South Korea on the sidelines of the G20 Trade Ministers meeting in Milwaukee, the United States. The discussions focused on strengthening bilateral trade relations with the respective countries. United Nations has welcomed India's approval of the 1.86 lakh crore rupees Green Energy Corridor Phase 3, GEC 3, describing the grid strengthening and battery storage scheme as a major step that will deliver big dividends for the country's people and economy. Russian President Vladimir Putin has said that Indian Prime Minister Narendra Modi has very good ideas aimed at finding a mutually acceptable solution to the Ukraine conflict. Speaking at the Wildlife Forum, Mr. Putin noted that Mr. Modi regularly raises the topic of ending the war during their discussions and shows strong interest in a peaceful settlement. The gold rush continued for India at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, as Indian athletes delivered a stellar performance on day 13, clinching 5 gold medals, 1 in wrestling, 3 in boxing and 1 in archery, in a spectacular display of skill, determination and sporting excellence. Indian wrestler Surjit Kalkal scripted a remarkable comeback to win the gold medal in the men's 65kg freestyle event. In boxing, Parvin Huda won the gold medal in the women's 65kg category, defeating Chinese Taipei's Nie Chin Chien 3-2 in a split decision in the final. Ankush Pangal clinched the gold medal in the men's 80 kg category, defeating South Korea's Kim Min-seung by a split decision 4-0 in the final. Earlier, Lavlina Borgohain also clinched a gold medal in the women's 75 kg category, defeating China's Bao Ziyi by a unanimous 5-0 decision in the final. With these impressive performances, India has climbed to fifth position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 75, including 15 gold, 25 silver, and 35 bronze medals. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh for the day. IMD said that the conditions are likely to become favorable for further withdrawal of southeast monsoon from remaining parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, and most parts of Gujarat and Madhya Pradesh during the next 24 hours. That's all in this news bulletin. Namaskar.
9: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए सुनते हैं नौकते श्रोताओं का कार्यक्रम।
10: आकाशवाणी ईटानगर डिब्रूगढ़ वा रंगजा वन बंगा सांपुआ डाउन इरेन नंगनोकते प्रोग्राम चौतरन तजा अक्टूबर जंग वन डी तारीख होनी बजा खबर को हैं तेलियन तांग जामा तजा वा खबर डाइंका Nangdiak Father of Nation Mahatma Gandhi Chatro Bangaloingik Chadja Rangbo Birth Anniversary Pa Taja Diak Pama Maniki Atena Honman Hon Hisama Taja Rangka New Delhi Wa Ate Mangrup Rajghat Wa Samadhi Ko Dharma Prathna Sabhab Rangsuampa Honjo Rewakwa President Draupadi Murmu Vice President C.P. Radhakrishnan Prime Minister Narendra Modi Lok Sabha Speaker Om Birla ngale Delhi Chief Minister Rekha Gupta hemaming Rajghat ko huwaklama Bapu nang honmanang sompa honujo rewakwa Prime Minister Narendra Modi ma social media nang post lama nging choy thukta ko Gandhi ji pa tuang tang ngale hanti lampo kju mani te wante kapho pjo dangwa dang ko ngale tema hethu chinthi hanti lampo pa athangwa sanpot koming nang mi nyanyu charang ma wante alam tuan pejo dai ka ngama modi ma choi thuk jo rewa nang state governor lieutenant general retired kt pranayak ma tejawa gandhi jayanti rangoja ko state kwa minyan hinang ate ngin sanjap ka greetings pa choi thuk governor ma ngin choi thuk ta ko are gandhi jayanti rangvo pa swach bharat divas rangvo ming koming mani ki ngale gandhi ji pa ate rondong dong tang ke chu jo tuangtang le hanti non-violence ngale asa cleanliness lampo ko mani te piju jo dangwa dang ko ngama governor ma choi thuk jo reka ero wate are gandhi jayanti rang vo pa nga nga ma jo hanti le tuangtang peace truth ngale ju ju jang jang integrity le self reliance ngale mi nyan nyu cha rang ma kam san mora katwan rang ma lagi thong hun ja rang vo pjo dai ka ngama governor ma choi thuk jo reka chief minister pema khandu maming are gandhi jayanti rangvo ko gandhi ji lampo truth peace ngale non violence lampo ko mani rang nok tang hinang atenge wa ngi pa choi thuk jo reka thaja are rangvo pa itanagara state banquet hall ko swachh bharat divas ming ko mani hon lok ta ko nging tho ta ko gandhi ji lampo ko dangli ma chanto thaya pe pa sa pong pong mamchi rang jo minyan he ma thongun minga ma te ma minyan he nang chotho ko jo reva ngale are rang vo ko sector sector he nang phong khom lama sa pong pong so tong clean living awareness camping he phong hon rang swasta wahan gari pa launch bang hon ko ngale students le volunteers nang cleanliness pledge tuam pa chief minister ma samthuk jo ming reva chief minister pema khandu ma thaja itanagar municipal corporation imc hetang ep wanted banglo sikwek are ep pama thepe he phongsa sit ngale garbage phong hante truck gari he cheryang nang phong khomi ka he ta phong chu jit ban nang ngale wan wan theja ganang dustbin he manja overflowing rang danga he ming phong chu jit ban nang ngale the he sa sit ma ko ngale sa sit di ko photo he khuwak lama upload ho rang ming are ep pa kam idivana National Blood Donation Day Rangvo pa maja Arunachal Pradesh State Legislative Assembly coming Mani Honokwa. Are Mani Honoktako, Rajya Sabha MP Tai Tagap Ming attend Dangwa. Are blood donation camp, State Legislative Assembly Le, Arunachal Life Saving Foundation Ngale, Health Le Family Welfare Department Tungko, Romwakla Majo, Kokam, Losirwakwa. Ngale, Ramakrishna Mission Hospital Le, Trims Ngemaming, Are blood donation camp ko, Technical Support Pa, Honjo, Rewakwa. Japan wa Aichi Nagoya Teko Atangwa Asian Games to Looming Waka ko Nang Diakma Boxing Nang Lovlina Borgohaima 75 kg category nang gold medal ba tachuika. Tema China te Bao Ji ba 50 points ma final ko jinika. Are gold medal pa chuika pa women boxing nang Asian Games nang India ma second gold medal pa jo tachuiki. Ma ko Hajani Chivan Bli rang pa ko Asian Games lomakta ko Mary Comma gold medal pa bangchuwa. India te dihya khe archery team pa maming gold medal pa tachuwa klama record pa hormon wakira. Mixed recurve team archery event naming India ma silver medal pa tachuwa ika. Ngale har Asian Games to looming waika ko nangdiak te medal pa thajato ko gold medal chivanram silver rokni wambli ngale bronze rokram wambli pa tachuli ma rokingik wanram medals pa lata chowanti ngale medal rank nang wani rock position ko ladangwati thaja atoy nonok te khabut latamata
11: hiv pawan te khonchat chi ara khonchat va perang asantha ma chojat pasan
12: hiv khonchat vingte he safety ahu thama dihak damnam romjup khonchat vingte nam sole va bg syringe sole le nyong va chana min tale min jo
11: hama arngin pa hunang thinan Room tong dak pak min khit min jam room chala mit chik ko HIV khonchat pa nang jat ma
12: HIV khonchat pa sok thuk re min homoy ko khonchat pa jet lo ti ko sok thuk pa ma ruan dong lo ta heng min jo HIV khonchat ran nak che aja ja khobot ba joinan khonchat pa sok thuk re yan khonchat jun ma mi anang mahon min jo are khonchat kho ko aja ja ngin cho jet rang national aids helpline number 1097 ko phone Are Kobot Pa Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS Nahalagan Neva Public Hubi Darangjo Lucidika.
10: A decisive program called Nema
9: Srotomitra Vihab Sundrehete Bari Bari Se Samachar Pehle Apne Suna Hindi Evam Angrijimi Samachar or अभी आप सुन रहे थे नुक्ते श्रोताओं का समाचार आपको बता दें कि नुक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जारी है आप जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं
13: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे
14: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा
13: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर

श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इस सफर में आपके साथ हैं आपकी अपनी रेडियो साथी नीलम। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार शाम के 5:08 हो रहे हैं। और इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का।

0: श्रोता मित्र, अभी आप बने हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का। आपको बता दें कि अभी आप सुन रहे थे धड़क फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग अजय और श्रेया घोषाल की आवाजों में। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि फिलहाल हम ले रहे हैं एक ब्रेक।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
4: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
5: बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
6: गीत संगीत
7: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
6: प्यार भरे अल्फाजों में
7: दिल से दिल की बात
6: बस आपके नाम
7: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

श्रोत मित्र, आप सुन रहे थे मोहित चौहान की जादुई आवाज में ये खूबसूरत गीत फिल्म दिल तो बच्चा है जी से। तो चलिए श्रोत मित्र, इसी के साथ ही हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत गजनी फिल्म से।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का यह आखिरी गीत गजनी फिल्म से जावेद अली की आवाज में। श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही इवनिंग ड्राइव कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दें कि आप जुड़े रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, क्योंकि आगे भी जारी रहेगा हिंदी फिल्मी गीतों का सफर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till the stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: श्रोता मित्रों, आपके शाम को और भी बेहतरीन बनाने के लिए लीजिए पेश है कार्यक्रम शाम की महफिल। कार्यक्रम शाम की महफिल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। श्रोता मित्र, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं किस्मत कनेक्शन फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत, जिसे आवाज दी है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

श्रोता मित्र आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल। जी हां, आप सुन रहे थे एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म से बेहद ही खूबसूरत गीत मलिक, माफ कीजिएगा, पलक मुचाल की आवाज में। श्रोता मित्रों, चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला खूबसूरत गीत, मैं वापस आऊंगा फिल्म से।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आपको बता दें कि इस वक्त शाम के 6:13 हो रहे हैं। श्रोता मित्रों, चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं आगे चंद हिंदी फिल्मी गाने। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं द डिप्लोमेट फिल्म से, जिसे आवाज दी है हरिहरन ने।

श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगा हर्ट्स पर और आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का। जी हाँ, आप सुन रहे थे लगान फिल्म से एक खूबसूरत गीत उदित नारायण और अलका याग्निक और साथ ही वसुंधरा दास की आवाजों में। श्रोता मित्रों, अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का आखिरी गीत, रंग दे बसंती फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग।

आप सुन रहे थे रंग दे बसंती फिल्म का एक टाइटल सॉन्ग दिलेर मेहंदी चित्रा की आवाजों में। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपको बताना चाहेंगे कि आगे कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार। फिलहाल आप आनंद लेते रहे इस गीत का।

0: HIV kinam abalok menggap gapanam aro rupa moyehnam lagangko takamam lukan lanbitu.
1: HIV kina amilok iya lamulok kinam de ayon hierung atirung kenno himap mimamilo kedbohila amur abo himilo HIV kinam de ayon hidu. HIV kinam de bejuatel keng midumanyam nengmilo ayon hiladung delok anade HIV gedung imilo kolokom ayon hiladung.
0: Idokom menggap galangka dubo dagbo hikolok ala khoruk hikolok gomruk hikolok dobotubo hikolok delo tarhungu bungkolok HIV kinam hu byaggong madung.
1: HIV kinam itum hidop potarlo manap kade hilangka dem imilo denam pa ye langolo kampo pa ye nam ye lado. HIV kinam pasop aimang kinam hok lagangan kenpu pa aidung delo kinam hum arorup kangit pa aidung delo SIV kina amiam luke loreng kapa aimang SIV kinam hok lagangam aipa kenpa mena kedinga National AIDS Helpline 1097 lo irikhila lagangam tannom hilangka. Arunachal Pradesh State AIDS Control Society Director Health Service Naharlaguna bana lagangam mingga bodola agamam bikanden botu.
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: अभी आप सुन रहे थे आदेश श्रोताओं का समाचार। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आदेश श्रोताओं का कार्यक्रम आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर अभी जुड़ सकते हैं। तो चलिए श्रोता मित्रों, हमारे अरुण FM के कार्यक्रमों को आगे जारी रखते हुए पेश करते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, आज के कलाकार। कार्यक्रम आज के कलाकार में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। श्रोता मित्रों, आज के हमारे कलाकार हैं निर्माता, निर्देशक और अभिनेता मनोज कुमार। उन्होंने लंबा सिनेमाई सफर तय किया। 9 अक्टूबर 1956 को फिल्मों में हीरो बनने का सपना लिए 19 साल का एक नौजवान दिल्ली से मुंबई आया। 1957 में अपनी पहली फिल्म फैशन में 19 साल के इस युवक को 80-90 साल के भिखारी का छोटा सा रोल मिलता है। इस नौजवान का नाम था हरकिशन गोस्वामी, जो बाद में मनोज कुमार के नाम से मशहूर हुए। श्रोता मित्रों, उनके बारे में विस्तार से कार्यक्रम में आगे जानेंगे। इससे पहले आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

आप आनंद ले रहे थे क्रांति फिल्म का इस गीत को महेंद्र कपूर और कोरस की आवाजों में। श्रोता मित्रों, हरि किशन यानी कि मनोज कुमार ने इसके बाद कुछ और फिल्में की जिसमें मीना कुमारी जैसे बड़े सितारों के साथ चंद सीन करने को मिलते थे, मानो हरि किशन के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा हो। आखिरकार 1961 में मनोज कुमार को बतौर हीरो ब्रेक मिला फिल्म कांच की गुड़िया से। इसके अगले ही साल विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता ने मनोज कुमार की जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। करीब 40 साल के लंबे फिल्मी करियर में मनोज कुमार ने फिल्मों में काम किया और खुद फिल्में बनाई। निरुपमा कोटरू ने द स्विंगिंग 70s नाम की किताब में मनोज कुमार पर लेख लिखा है। निरुपमा लिखती है, मनोज कुमार ने एक्टिंग के साथ कई फिल्मों का निर्देशन किया। इन सारी फिल्मों में उन्होंने फिल्म के कंटेंट और फॉर्म पर लगातार अपनी उस्तादी का प्रदर्शन किया। कहानी लिखने की कला में उनकी महारत थी। जो वो जानते थे कि भारतीय भावुक होते हैं, इसलिए वो ऐसी कहानियां लिखते थे जिनसे लोग आसानी से जुड़ाव महसूस कर सकते थे। हर तरह के दर्शक के लिए कुछ होता था। मसलन शोर एक परिवार की खूबसूरत कहानी थी जिसने मनोज कुमार को निर्देशक के तौर पर स्थापित किया। तो चलिए इसी के साथ ही आपको सुनवाते हैं उन्हीं की फिल्म का अगला गीत।

श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार का, जिसके तहत आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता फिल्म निर्देशक मनोज कुमार की। आपको बता दें कि मनोज कुमार के करियर में अहम मोड़ आया जब 1964 में भगत सिंह पर बनी फिल्म शहीद रिलीज हुई। यहीं से देशभक्ति की फिल्में करने वाले हीरो की छवि की भी शुरुआत हुई। पर आगे बढ़ने से पहले मनोज कुमार के अतीत पर नजर डालना जरूरी है, जो उनकी फिल्मों से जुड़े कई पड़ावों का संदर्भ देता है। मनोज कुमार का जन्म अब के पाकिस्तान के एबटाबाद में 24 जुलाई 1937 को हुआ था। इसी बीच देश का बंटवारा हो गया पाकिस्तान और भारत, वही भारत जो बाद में मनोज कुमार का दूसरा नाम बन गया। एक इंटरव्यू में मनोज कुमार ने बंटवारे के उस दौर को याद करते हुए बताया था कि बंटवारे के बाद हुई हिंसा में उनके चाचा मारे गए और पिता खूब रोए थे, लेकिन अगले दिन जब भारत आजाद हुआ तो उनके पिता उन्हें लेकर लाल किले गए और नारे लगाए। भारत के इन हालात का असर मनोज कुमार के फिल्में काम पर भी देखने को मिला, मसलन फिल्म शहीद बनने की कहानी। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म और राष्ट्रीय एकता के लिए नेशनल अवार्ड मिला। इस समारोह के लिए मनोज कुमार ने भगत सिंह की मां को भी बुलाया था। तो चलिए श्रोता मित्रों, आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत उपकार।

मनोज कुमार केवल एक देशभक्ति या फिर देशभक्ति से भरपूर फिल्म में बनाने वाले नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने हिमालय की गोद में, सावन की घटा और गुमनाम जैसी फिल्मों में रोमांटिक किरदार निभाए। 1981 में आई फिल्म क्रांति ने उनके करियर की आखिरी बड़ी सफलता के रूप में उन्हें यादगार बना दिया। मनोज कुमार केवल एक अभिनेता नहीं थे बल्कि एक असाधारण व्यक्तित्व, एक प्रेरणादायक निर्देशक और एक देश भक्त भी थे। उनके द्वारा बनाई गई फिल्में आज भी भारतीय सिनेमा में प्रेरणा के स्रोत हैं। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो उनके द्वारा दिए गए संदेश, संघर्ष, समर्पण और देशभक्ति हमारे लिए एक प्रेरणा बनकर उभरते हैं। तो चलिए श्रोता मित्र, इसी के साथ ही अगला गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे, वो कौन थी फिल्म से।

श्रोता मित्रों, इस सदाबहार गीत का आप आनंद ले रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, वो कौन थी फिल्म से। मनोज कुमार की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम शशि गोस्वामी है, जो एक अभिनेत्री है। उनके दो बेटे हैं, कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी। दोस्तों, हमारे प्रेरणा स्रोत और भारतीय फिल्म उद्योग के महान कलाकार मनोज कुमार ने 21 फरवरी 2025 को अंतिम सांस ली। भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन भारतीय सिनेमा में मनोज कुमार के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उनके नाम एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। भारतीय कला में उनके अपार योगदान के सम्मान में भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्मश्री से और 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। तो चलिए श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही अब हम कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं आखिरी गीत सावन की घटा फिल्म से।

श्रोता मित्रों, इस खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में सावन के घटा फिल्म से। इस खूबसूरत गीत के साथ ही महानिर्माता, निर्देशक और अभिनेता मनोज कुमार पर आधारित कार्यक्रम आज के कलाकार का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। श्रोता मित्रों, उम्मीद है आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आए होंगे। तो चलिए इसी के साथ ही आपको बता दें कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे निश्चित श्रोताओं का समाचार। फिलहाल आनंद लेते रहे इस सदाबहार गीत का।

मिलिंगम आल वॉल्यूम आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ सोबेला मेडियम वेब 444.4 मीटर क्लास 675 किलो हर्ज और सोगा निश्चय गम का मोदा ये रब दुकुन तंबो मुलिंगम हम रेतना अतः जब मेरे तपतन निश्चय पुयम हको के तपतन सुयम के तंगा माल बो निश्चय बेमिनम लेब पोले के सोले के लो न्याल के न्यायो आले के ओयम के कन मोदक निश्चय पुयम नुला दन तबाय हम का अगम होगा तपतन ना सुयम के निश्चय पुयसी सोलो गदांग तुप महात्मा गांधी के लीगला चमक तिल निह कन के दिर बोधिला पाद आलम हम ले पहले लो सोनिया कन को बहल और सोग मौसम सोलो गदाग कैपिटल न्यू दिल्ली के राजघाट आलो तुप गांधी के निबुंगम सर्व धर्म हम ले ले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कम ओपोताल हम ले जगन को बहल होग लगा वाइस प्रेसिडेंट तुप सी पी राधा कृष्णन प्राइम मिनिस्टर तुप नरेंद्र मोदी लोकसभा के स्पीकर तुप ओम बिरला यूनियन हाउसिंग द अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर तुप मनोहर लाल हो गए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर दन रेखा गुप्ता बुले कम राजघाट हो हाल तुप महात्मा गांधी निबू समाधि गम ओपू ताल हम निजुग्न हल हो लग लगा सोग मौत गब हल तुप नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया हो पुगो गोली बने बेगम तुप महात्मा गांधी अतग सीनम बुम पुंगम अन्या अभी लोग लोगो भी योलू सचिन दोम जतिंगम हिंग सील दोनम हल हो गब गदा सोग नि मुलिंगम कम विकसित भारत गब मृद लोक मृग मृजम हेंगब कागब गल सील दोनिया तुझका हलकम गौतम तम अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल तुप के टी पटनायक रोब तुप महात्मा गांधी के लीगला चमक तिल जिह कन दिन के दिर्बोधी ला पाद अमीन गब हुम ने चिग नुकवाहल होगा सोग मोद सोग अब मुय गोली गम तुप गांधी के दर पव्या स्वच्छ भारत के मुज ला युरु सचिन माव अन्याला आवी होगा जति के मुज होगा निय ऐ जागो मुदर हिंदर ताइकुन हल होगा अब रोलोग निचे चरह मुग मुजम मुबुम गदल सुईल दोन्या तिका हलकम गौतम तम ने जिग नुकवाहल पुये वेपादो सोलो गांधी जयंती ग सोद मोदम अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तु पेमा खांडू कम स्टेट ग वेंकित होल हो स्वच्छता ही सेवा 2026 के उरीलो स्वच्छ भारत दिवस के सोदम सोबम न्याग नुकवाहल होग सो सोद मो सो तु पे खांडू ग दाला रोलोग नीचे चे हम दरे पब्याला जे तिंग मुग अब गग दल सुइल दोन्या तका हल गोल जिल स्वच्छता ग बाहन हान बोंगम कम बोनिर अब मम दुकुम मको जेले दोकुम हो हान बोयम पोर ले बो तुलुंगम ला सेल्फ हेल्प ग्रुप तुलुंगम दरे पब्याग सील दोनम होगो दो किन दिन हो पागो गोसर तम से जिल दिन रे जोर गगन को बहल पुये वे पादो तन बहुत दन नुल आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम होगे निस्सु पुयम ताल दो दो ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टूलुंग कच तन्यांगाम कोचुम तचुम काल बोननिम दुको भन आईएमसी गे एप अकमलिन जिनमम बोननि रबमम दुको भल सोर चीफ मिनिस्टर तु पेमा खांदुम म कॉल बनिन जिग्न को भल होग सोग एपसी कच तन्या बापा जिन बो गाड़ी टूलु ग लाइव ट्रैकिंग कच तन्या हिरकुम हिर पातले दोन बम पुई पता जुले न लजिक होग कचम बापा मादबला बाहा को के बनम रिकॉर्ड म पुल अपचिताय कुन हल पुये विपादो जापान गदाग आईची नगोया हो एशियन गेम्स का सोका मीन्स दुख हो इंडिया गदाग ये भी अल जब सोल सोलो कम एगो अके पानिया गन को बहल होगा सो सो बॉक्सर लवलीना बोरगोहाई कम वोमेन ग 75 कैटेगरी के जी उरी लोग सोका मीन्स को हो चाइना ग बुआ जीन एन 5x0 हो गए सोया लाइल नया रेल गोल्ड मेडल ग अके पाग नुक बहल होगा सो गीतो सी और 2014 अन्य हो दन मेरी कॉम ग नयाल गोल्ड मेडल ग अके पाहो को लिंग को पाक नु महल होग लगा मिक्स्ड रिकर्व टीम आर्चरी इवेंट हो रूप सिल्वर मेडल गा केम पाया गन को बहल होग सेलिंग ग दिंची दिंही इवेंट हो रूप नेथ्रा कुमानम ब्रॉन्ज मेडल ग अकेम पाग नुक बहल होग लग लगा गदांग चमहकन गो मेडल ग नाल गोल्ड ग अली ले अनि गो सिल्वर चमी तेल अफी गो होग ब्रॉन्ज ग चमुम तेल अफी गो नाल मेडल तेली ग ही का मिस को हो इंडिया गदांग सिक्स पोजिशन हो हाथ को मग नुक बहल पुए विपादो मोलाल ईटानगर ग अरुणाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो नेशनल ब्लड डोनेशन ग आलम बोन येल सोग न्याग नुकवाहल होग सोग डोनेशन मख हो राज्यसभा ग एमपी तुप ताई तगा क्रूप जीवम दोबम गग नुकवाहल होग सोग उई डोनेशन ग बोन सम अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन गला डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन बुनिये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लोग बोन निबुम याक नुमहल होग सो सो रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल गला तोमोरोवा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल
खास तुलुंग अब डोनेशन कैंप ग टेक्निकल ग अच अमीनम कोबम जिबम जिकनम हल होग लग लगा सब आइन बेबोन कालम ग तवांग ग जनरल ग्राउंड ग काला वांगफो हॉल हो कम डोनेशन कैंप ग बनम दोग यागन कुबा हल्स पुए बेपादो केन लाल पासीघातक वेतरन सेवा केंद्र होस्पियर कॉर्प्स तुलुंग सद्भावना ऑपरेशन ओरेलो नंपिन ग पो लेह मन्या वो एम को तुलु ग कंपिटेटिव एग्जामिनेशन ग जिक अकलो नीतु ले न्या बहुदम आल जापा हल पहले हम ले जेल आके केज गन कुबा हल और सोग आके के क सोग अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड APSSB ओरेलो अली ले आहकन गो ये मिचापो बहुदम होग वेतरन सेवा केंद्र ग ओरेलो हाल आई टी ला हॉस्पिटल टी ग कोर्स ग मन्या कुन बो चेम्पटल अकिन गो एम को हदम रो आल जापा हल हम ले पहले जेल आके केजल हाता दिन मोदम रो आल जाप साल दो अम्यात को कहल तम सिर होने ल बोन गोनी के अग्न्यागन को हल पुए विपादो स्वयं गने से पुए हत को

0: 지따갑세 아감고 원래 아카스파니 이타나걸 일꿈로께서 부이샴 멀린지든 물론 이 물뚫루가 밥네 냠냐가고 아니오면 억실가봐 HIV라 AIDS가 빠고 삼닝의 진도 HIV AIDS의 알만보 HL 흡수틀소 HIN보삼 HIN암삼눌레 보스도브리마 판매 소 HCM요캄 지다파할소 닝은 이베압시탄할도 마드네 눈에 삼 알잡 채널도 두브리파 삼 채널도 두브리남 시에브뇨 감눌레 채널도 볼어서 에치 파고 삼눌레 아얍 가알 채널 발도 볼어 감눌소 에치 보응은 닝에 도자캄 소 에치 삼눌 아얍 스윽도 기타이네 시 코이고 스윽도 기타이네 호그 HIV라 AIDS시 오우까 지든 해볼로 감 시 냠냐가 도범 콜로 호그 소 우이 나코순 도이캄 호그 소소 BGP는 남 비코순 니 에치 보호가 비캄 호소 에치 도든 호그 So, H.C. Nule, H.C. Usi Madan, Nuluk Alash, Chirikolo, Chetin Minsil Doklo, Lakin Gov Devanda Amla Dojkam Nule, C.H.C. Umadane, O Gav, Nule, H.C. Dodne Domadane, Ham Mod Modam Kagda, Nul Medikilo Hala, Nul Engam Kakam Dovipane, O Penkolo, Muluning HIV La AIDS, Gutugralo, Yil Dodlo, Kam Honi Tulu Hamkam Nule, Anyabia Dodulidan, Sam Nule Timpado Limadane, Samia Nule Sakado Lipne, एम अब्दी सी सकाम अब अन्याम अब तिंपा बन्यो कम सोनी सी एच एफ ए दो तादना ओगे साम नुल चेन दो तकल बाहरा नुल चिन दलो कम नुल 1097 होस नंबर सो कॉल मग दो सम अन्याब तका तका ओगे साम चेम दो साम आयाब जिग मग दो साम नुल एच एफ नमा दो काल दो बोंग अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ओगे डीएचएस नहर लोगन लोगे जिलिन पनन कसे तकप से पुये हतकु पाया लिंचो
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: जी हाँ श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का कार्यक्रम, निशी श्रोताओं का समाचार। निशी श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स तथा डीआरएम 666 किलो हर्ट्स पर आगे जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ ही आपको बताते कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली केंद्र से विशेष कार्यक्रम प्रसारण किया जा रहा है। कार्यक्रम की श्रृंखला आगे आप कुछ ही क्षणों में सुन पाएंगे, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: Italian Smart Wave Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in...
1: आकाशवाणी है विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 16वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक इसमें भाग ले रहे हैं पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता और आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया
2: नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां हम चर्चा करते हैं जन सेवा से देश सेवा की और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजीत मेहता सीईओ एंड सेक्रेटरी जनरल पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और साथ ही साथ डॉक्टर शरद कोहली इकोनॉमिक एनालिस्ट नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद
3: नमस्कार निहारिका आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को हमारा अभिवादन
2: तो शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की एक समय ऐसा था जब हमारा देश एक कंज्यूमर इकोनॉमी था यानी कि हम हर प्रोडक्ट कंज्यूम करते थे वहां से लेकर एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने तक का सफर कैसा रहा
3: इंडिया हमेशा एक बहुत लार्ज मार्केट की तरह हमेशा देखा गया है और इनफैक्ट मेक इन इंडिया ने ये इस देश को दिया है कि इस देश में कितनी हम सिर्फ अपना एक लार्ज मार्केट ही नहीं है बल्कि हमारा विजन है हम इस देश में मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम जो पिछले 10 साल में क्रिएट हुआ है उससे आप एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए जैसे मोबाइल फोन्स इससे पहले हमारे यहाँ 100% मोबाइल फोन हमेशा इम्पोर्ट होते थे देश में लेकिन आज मेक इन इंडिया जब 2014 में लॉन्च हुआ आज 10 से 11 साल के पीरियड में पूरा हम 99% मोबाइल फोन्स हम इंडिया में बना रहे हैं यही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर देशों में हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और ओवरऑल आप एक इकोसिस्टम की बात करें मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप आज हमने डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा क्योंकि हमारे देश में करीब 80 करोड़ से ज्यादा MSMEs हैं तो MSMEs हैं तो उनके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना क्योंकि हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी इससे पहले तक थे हमारे आयात में हमारे कई सारी चीजें डिपेंड करती थी लेकिन आज मेक इन इंडिया की वजह से आप देखिए हमारे यहाँ चाहे वंदे भारत ट्रेन की बात करें आप डिफेंस सेक्टर में आप देख लीजिए या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए फार्मास्यूटिकल में देख लीजिए आप 2020 में कोविड आया था तो आप कोविड में किस तरीके से जब पूरी दुनिया जूझ रही थी तो भारत में एक बहुत ही साइलेंट मूवमेंट चल रहा था कि कैसे हम अपने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करें तो चाहे आप डिजाइन की बात करें क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो सिर्फ इंपोर्ट करके आप एक असेंबली करना ही उसमें काफी नहीं है बल्कि हमारे यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है बन रहा है चाहे डिजाइन की बात करें उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें और उसके बाद ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मेक इन इंडिया ने देश को एक ऐसा एक देश को विश्व स्तर पर एक ऐसी पहचान दी है कि हम सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे हैं बल्कि हम जो बाहर की कंपनीज क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है तो अगर यहीं पे वो बाहर की कंपनीज आके इन्वेस्ट करके हर स्टेट में जाकर के जहां जहां स्टेट्स में भी इसमें बढ़ चढ़ के जिन्होंने हिस्सा लिया आज उस देश में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है क्योंकि इंडिया आज दुनिया का सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट है और जो बाहर के इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी एक सुविधा है कि यहाँ पे अगर अपनी सप्लाई चेन डेवलप करेंगे इस इकोसिस्टम में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उनको जो है बाहर मार्केट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया एक खुद ही एक बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट है और इससे पहले अगर आप देखें तो साउथ साइड में हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग का एक कंसंट्रेशन था लेकिन मेक इन इंडिया के बाद आप देख रहे हैं चाहे नॉर्थ में यूपी फॉर एग्जांपल लैंड लॉक्ड स्टेट होने के बाद भी और जिस तरीके से वहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है और जो फैक्ट्रीज लग रही हैं क्योंकि फैक्ट्रीज लगती हैं तो देश में युवाओं के लिए रोजगार पैदा होता है तो ये मेक इन इंडिया की खास बात ये रही है इसने देश को एक नई पहचान दी है और हमारे उद्यमियों को एक ऐसा इकोसिस्टम दिया है जहां पे वो अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट करने के लिए भी अपनी चीजों को बना रहे हैं
2: इनफैक्ट मेक इन इंडिया

0: जो बुनियाद रही है वो रही है इन्वेस्ट, डिजाइन और इनोवेट, यानी हर तरीके से हम इतने सक्षम हो जाएं कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हर कड़ी को अपने से जोड़ सकें। डॉक्टर शरद, आपके क्या विचार हैं इस विषय पर?
1: जिस तरीके से चाइना का डोमिनेंस था, चाइना को दुनिया की फैक्ट्री बोला जाता, अभी तक बोला जाता था, और अगर हम पश्चिमी देशों में जाएं तो वहां पर जो चाइना प्लस वन की बात करी जाती थी कि उनको, वो लोग ढूंढते थे कि चाइना के अलावा कोई और भी होना चाहिए जो कि हमारी जरूरतों को पूरी कर सके। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को, जब वो पावर में आए तो आज 12 साल हो चुके हैं, उन्होंने सबसे पहले, हमें याद है वो जो शेर एक था मेक इन इंडिया का, और वो धीरे धीरे धीरे धीरे करके गरजने लगा, और जितना गरजने लगा, जैसे डॉक्टर मेहता बता रहे थे कि आज हर भारतीय जो मोबाइल फोन यूज करता है वो ऑलमोस्ट आप भारत का मैन्युफैक्चर। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मोबाइल हाथ में जब लेते थे कहां बन के आते हैं, किस जगह, ज्यादातर तो चाइना में बनते थे और भी देशों में बनते थे। और खाली मोबाइल फोन तक अगर मैं सीमित नहीं रखूं बात को, तो मैं दवाइयों की बात करूं, आज भारत दुनिया की फार्मेसी है और भारत की दवाइयां अमेरिका से लेकर यूरोप तक न केवल पसंद की जाती हैं बल्कि वहां उसकी कीमत को भी मैच कर पाना बाकी देशों के लिए मुश्किल होता है, जितनी रिसर्च जाती है उसमें। बहुत सारी चीजें हैं, टेक्सटाइल्स है, लेदर है, फुटवेयर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, मतलब हम अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाएं तो अब ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो कि सजावट के लिए होती है, पर उसमें भी आज भारत को महारत था। तो जरूरी चीज दवाई जैसी जिसके जो लाइफ सेविंग होती है, और एक सजावट वाली चीज, तो हम, मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में हमने अक्रॉस द बोर्ड हमने सब जगह एक एक जगह अपनी बना ली है दुनिया में, और दुनिया को आज लगता है कि हमें पूरी तरह से चाइना पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। भारत आज वो जगह धीरे धीरे लेता जा रहा है, और मुझे ये भी लगता है निहारिका कि भारत जैसा जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, 140-145 करोड़ लोग गिन के अगले साल सामने आ जाएंगे, सेंसस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा जब पॉपुलस कंट्री होती है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग ना केवल भारत की पहचान बताता है उत्पादन के क्षेत्र में, बल्कि यहाँ पर जैसा डॉक्टर मेहता ने कहा कि लोगों को रोजगार देने का बहुत बड़ा जरिया है। और अगर इतने बड़े स्केल पर देखिए, सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ कृषि क्षेत्र से आते थे, आज तक तो जब भारत आजाद हुआ था तो कृषि क्षेत्र पर ज्यादातर निर्भर था, आज वो निर्भरता धीरे धीरे धीरे धीरे कम हो गया है। मैं नहीं कहता कि कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो गया है, पर उस पर निर्भरता कम हुई है, और वो युवा आज जो, जिसको हम एस्पिरेशनल यूथ कहते हैं, वो पढ़ के निकल रहा है और वो चाहता है कि काम करना, कुछ भारत के लिए करके दिखाना, तो इसको हम वैल्यू एडिशन बाय यूथ कहते हैं, यानी कि आपने कोई चीज बनाई, उसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग के जरिए उसको कुछ और शेप दे दिया, इनोवेट करके कुछ और बना दिया। और मुझसे तो आप सच पूछिए, बहुत लोग पूछते हैं जो युवा आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि अगर हम स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टअप, आप देखते हैं युवा ज्यादातर उनका इंटरेस्ट टेक की तरफ होता है, कोई ऐप बना ली, किसी ने कोई गाड़ियां इकट्ठी कर ली, किसी ने पार्किंग इकट्ठी कर ली, किसी ने खाना इकट्ठा कर लिया। तो मेरे जो दिल में, एक स्टार्टअप मेंटोर भी हूं, मेरे दिल के करीब जो रहते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वाले रहते हैं, और मुझसे जब वो सवाल पूछते हैं कि क्या चीज मैन्युफैक्चर करी जाए, तो बड़ा आसान है, मैंने कहा तो आप, हम जैसे चाइना से बहुत सारा सामान मंगाते हैं, $100 बिलियन से भी ज्यादा का हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना से। मैंने कहा जो चाइना से सामान आता है, प्रधानमंत्री जी भी जब बार बार कहते हैं कि जब किसी पर निर्भरता रहेगी तो वो निर्भरता आपको कभी ना कभी तकलीफ देगी, और ये हमने अभी हाल में जो दुनिया के हालात हैं उसमें हमने इसको होते देखा और आज भी हम देख रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूं कि आप ये जो लिस्ट है चाइना से आने वाली, मेरे पास वो लिस्ट है, वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है, उसमें से कोई एक आइटम उठा के, चाहे आप अपने छोटे से गराज में, अपनी कहीं दुकान हो किराए की, दोस्त की कोई जगह हो, वहां पर आप छोटे से शुरू करिए। और डॉक्टर मेहता तो चेंबर से आते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी स्टोरीज आप पीछे जाके देखेंगे तो जब उन्होंने कभी शुरुआत की थी किसी जमाने में, तो आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलेंगी, छोटी सी घर के कोने में, एक घर की गराज में, एक छोटी सी दुकान में, एक छोटी सी मशीन लगा के एक फैक्ट्री लगाई थी, आज वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं। तो मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में भारत में पॉसिबिलिटीज बहुत है, और युवा शक्ति इसमें जितनी जुड़ेगी उतनी इसको, निहारिका, आपको धीरे धीरे रफ्तार मिलती मिलेगी, और पहचान भी इसकी तभी बनेगी, क्योंकि जब युवा आता है तो इनोवेशन साथ लाता है, युवा आता है तो इन्वेंशन साथ लेके आता है, और मुझे लगता है वही मैन्युफैक्चरिंग, ये चाइना ने ये करा बहुत साल पहले, और मुझे लगता है वही भारत की एक अलग पहचान बना के दिखाएगा।
0: आपने इसमें बहुत अहम कड़ी जोड़ दी जो है आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत का आगाज 2020 में हुआ था, और उस वक्त पैंडेमिक के दौरान हमारा मकसद था तत्काल आर्थिक सहायता हमारे देश को दी जाए, लेकिन अब उससे आगे बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक रेजिलियंस की ओर हम आत्मनिर्भर भारत को ले जा रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत का आगे जाकर क्या रोल रहने वाला है, और ये हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने में कैसे सहायता करेगा?
2: ये बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत भी एक मैन्युफैक्चरिंग से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत एक धारणा है, एक ऐसी पहचान देश को देनी है कि जिसमें कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंस ना करें, हमें हर चीज, हमारी ऐसी कैपेबिलिटीज हम

0: अपने देश में ऐसी कैपेबिलिटीज बनाएं जिससे कि हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस ना रहे और हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को कर सकें. और ये हमने सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे कि कोविड के टाइम में ये शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने कि उसमें कई सारी ऐसी स्कीम्स, क्योंकि हमारे देश का जो एमएसएमई का इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर आप देखें तो 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था तो उस टाइम हमारे देश में करीब 400 स्टार्टअप थे, बट आज जो है 200,000 से ज्यादा स्टार्टअप हमारे देश में काम कर रहे हैं और उसमें करीब वी आर द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड. तीसरे हम बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं. इसमें आत्मनिर्भरता की एक ऐसी एक मुहिम एक चली है, मूवमेंट चला है जिसमें कि हमारे देश का हर युवा, क्योंकि आज भारत एक सबसे बड़ा आबादी वाला देश ही नहीं है बल्कि हमारी 65% जो हमारी आबादी है लोग हैं, इसमें युवा हैं जिससे जो कि 35 से 40 साल तक के जो युवा हैं, तो उनके लिए ये आत्मनिर्भर भारत का जो एक मूवमेंट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है तो इसमें ये दर्शाता है कि हमें हर चीज अपने देश में, क्योंकि अपना देश में जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन की कमी नहीं है क्योंकि आज भी हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन ओरिएंटेड है. और चाहे गांव में आप, चाहे विलेजेस में, उसमें चाहे आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर देख लीजिए, क्योंकि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उससे कई ऐसी रोजगार की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल एक पोटैटो है, अगर आप आलू का, अगर एक आलू लेंगे तो मैक्सिमम कितने कुछ पैसे का मिलेगा, बट एक आलू से चिप्स का पैकेट बिकता है वो 15 से 20 रुपए का बिकता है, वो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की पावर. तो ये छोटे छोटे जो उद्योग हमारे गांव गांव में, क्योंकि इंडिया में आज हमारी जो इकोनॉमी है रूरल इकोनॉमी है आज भी, तो वहां पे आत्मनिर्भरता तब आएगी जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा है उसे जो है शहरों की तरह माइग्रेट ना करना पड़े, वो जो है उनके लिए ऐसे रोजगार की संभावनाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और स्टेट में पैदा हो जाएं कि जिससे कि वो वहीं पे उसको पैदा कर सकें और वो अपना आत्मनिर्भर अपने आप में हो सकें. वो एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई होगी. इसके लिए क्या है, भारत सरकार ने इस टाइम जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए हैं पूरे देश में, उससे क्या है एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है, क्योंकि हमारे देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी. तो इसी आत्मनिर्भरता की दिशा में ये देखा सरकार ने कि एक्सप्रेसवेज को बना के, रोड्स को बना के, और जो ट्रेन से और शिपिंग सारा जो है इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्रिएट करके के देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम किया, जिससे कि हम जगह जगह गांव में हर जगह आज रोड है, जहां पे रोड है वहां पे कोई भी आप उद्यम शुरू करके, कोई भी उद्योग शुरू करके उसको हब तक, जो बिजनेस हब्स हैं वहां तक आसानी से ले जा सकते हैं. मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है.
1: आपने अपने उदाहरणों के जरिए और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात करके एक बहुत अहम कड़ी और इसमें जोड़ दी. मेरा ख्याल है अब हमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में भी बात करनी चाहिए. हमारे विजन की शुरुआत हुई थी निवेश आकर्षित करने से, लेकिन अब वही विजन आगे बढ़ के स्केल, कंपेटिटिवनेस और एक्सपोर्ट कैपेसिटी को विकसित करने में जा चुका है. तो इस संदर्भ में पीएलआई की क्या भूमिका रहेगी और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए? डॉक्टर कोहली, पहले अगर आप कुछ कहना चाहें.
2: देखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, क्योंकि जब बात आई आगे बढ़ाने की, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए, तो मुझे लग रहा है पीएलआई सेक्टर ने, यहाँ पीएलआई की जो पूरी स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया. और हम अगर आप नंबर्स में जाइए तो टोटल प्रोडक्शन सेल्स की मैं बात करूं तो 20 लाख करोड़ से ज्यादा का इसके जो एनकंपस हो चुका है, इसके अंतर्गत आ चुका है. एक्सपोर्ट देखें तो 8 लाख करोड़ से ऊपर के एक्सपोर्ट्स पीएलआई के अंतर्गत आ चुके हैं. देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, मान लीजिए किसी का एक शेड चलता है, वहां से उसको 2 शेड लगाने के लिए एक इंसेंटिव मिल रहा है, वो मेहनत करता है, कोशिश करता है कि ऑर्डर्स और लेकर आए, तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है निहारिका, अगर हम उसको देखें तो करीब 14-15 लाख लोगों से भी ज्यादा को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इसके जरिए मिल चुकी है. और मुझे लगता है सरकार का इसमें एक तीर से कई निशाने लगते हैं. एक तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एक तरफ आपकी प्रोडक्शन स्केल अप होती है, एक तरफ जो स्पेयर कैपेसिटी है वो पूरी होती है, और सबसे बड़ी बात जो एक इकोनॉमी का इंजन होता है जब हम जीडीपी की बात करते हैं, जिसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो वो केपेक्स इसमें निकल के आता है, प्राइवेट केपेक्स. तो मुझे लगता है एक पीएलआई से ये इतनी कामयाब स्कीम रही है कि हालांकि आम आदमी को शायद सीधी तरीके से इसका ना पता लगे, हो सकता है हमें जो लोग सुन रहे हैं सबके सब, डॉक्टर मेहता तो खुद इंडस्ट्री से आते हैं, पर जो आम कंज्यूमर है उसके लिए पीएलआई स्कीम शायद सीधे तौर पे उसको मायने नहीं रखती है, पर पीछे से जो आप तक सामान पहुंच रहा है, शायद

0: आपके घर का कोई व्यक्ति वहां नौकरी कर रहा है उस फैक्ट्री में, उस इंडस्ट्री में, हो सकता है वो पीएलआई स्कीम की वजह से उसको नौकरी मिली हो, क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री स्केल अप नहीं करती, अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करती, अगर वो उसको नेक्स्ट लेवल पर ना ले जाती, तो शायद ये जो मैंने 15 लाख से ऊपर नौकरियों की बात करी, शायद ये नौकरी नहीं मिलती। तो मुझे लगता है पीएलआई की ऐसी स्कीम रही है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो ये हो नहीं सकता कि हम चाइना का एक मॉडल का ना सोचें। तो चाइना में जिस तरीके से काम किया गया, जब उसमें युवा का हाथ पकड़ के उनको प्लॉट दिया गया, उनको फैक्ट्री लगाई गई, उनको पैसा दिया गया, तो वो तरीका था कि उसमें बहुत सारे युवा ऐसा भी थे जो काम नहीं करना चाहते थे, पर उनको ऐसा लग रहा था कई बार जैसे हम उसमें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये पीएलआई स्कीम ऐसी है जहां पर आप एक स्कीम बनाते हैं, आपको एक टारगेट दिया जाता है, अगर आप इसको क्रॉस कर लेते हैं तो आपको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। तो आई थिंक पीएलआई स्कीम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, बहुत काम की रही है। और एक स्कीम के जरिए सरकार ने देखी ना, जो प्रोडक्शन बढ़ती है तो टैक्सेस भी आते हैं, प्रोडक्शन बढ़ती है तो ऑर्डर्स भी ज्यादा आते हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ते हैं, नौकरियों की मैंने पहले ही बात करी, और आपके जो देश में स्पेयर कैपेसिटी है मशीन्स में, मैं बहुत सारी फैक्ट्रीज में जाता हूं जहां पर कोई 70% पे काम कर रही है, कोई 60% पे काम कर रही है, कोई 50% काम कर रही है, उनके पास जगह भी है और कुछ एक के पास तो मशीन्स भी होती हैं, पर वो कहते हैं हमारे पास इतने ऑर्डर्स नहीं। अब जब इंसेंटिव मिलता है, ये एक मानसिकता है इंसान की कि जब कोई इंसेंटिव होता है तो वो आपको ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है, आपको और मेहनत करने के लिए वो उकसाता है। तो आई थिंक पीएलआई स्कीम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात पीएलआई स्कीम में हो रही है कि इसकी कामयाबी को देखते हुए इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज इसमें जोड़ी जा रही है। आप हर साल कुछ कुछ समय बाद सुनते हैं, अब इसमें भी पीएलआई स्कीम लाई जा रही है, अब इसमें भी लाई जा रही है, तो मुझे लगता है इसकी कामयाबी इस स्कीम को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है।
1: बिल्कुल, और आपने जो नौकरियों का उदाहरण दिया, शायद उसके जरिए हमारे श्रोताओं के लिए पीएलआई की आवश्यकता समझना बहुत आसान होगा। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। आज के जमाने में जहां आज की जीवन शैली टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और हमारी छोटी से छोटी चीज मोबाइल फोन से होती है, वहां पे सेमीकंडक्टर्स का क्या रोल है? आज के जमाने में सेमीकंडक्टर्स इतने ज्यादा आवश्यक क्यों हैं, और उसी रिस्पेक्ट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की क्या भूमिका है?
2: भी जैसे डॉक्टर कोहली ने भी कहा, क्योंकि पीएलआई स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो प्राइवेट केपेक्स है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने जो है देश में इन्वेस्टमेंट शुरू करी, और उनमें से एक जो सनराइज सेक्टर है, जो फ्यूचर का सेक्टर है, जो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक है देश के लिए, तो वो है सेमीकंडक्टर मिशन। क्योंकि जो इंडिया का सेमीकॉन मिशन है, ये बहुत बड़ी सोच है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ किन्हीं कारण से, बट आज ये हुआ है। कि इसमें क्या है कि जब जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे आप गाड़ी लीजिए, चाहे आप घड़ी लीजिए, बड़ी से बड़ी रॉकेट्स ले लीजिए, स्पेस ले, उसमें सब में क्या है, मोबाइल फोन है, सब में चिप आती है। तो चिप की मैन्युफैक्चरिंग देश में जो इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, और जो हम डिफरेंट कोलैब, क्योंकि आज जो है दुनिया में जो सबसे ज्यादा चिप का जो एक है वो है ताइवान में, तो जापान है, ताइवान है, इन देशों ने बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम बना रखा है। तो अब हम लोग उनके साथ कोलैबोरेट करके देश में, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विजन है, क्योंकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। जब तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आएगी चिप की, तब तक हम बड़े बड़े जो इनोवेशंस हैं देश में, जो नए नए प्रोडक्ट आएंगे, और जिस तरीके से एक पूरा परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, एक पूरा रैपिड चेंज हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आज टेक्नोलॉजी दिनों में नहीं घंटों में बदल रही है, इस युग में आज हम जी रहे हैं। तो उसमें जो है सेमीकंडक्टर मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है, बहुत ही एक महत्वाकांक्षी और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्कीम है हमारे देश के लिए। और इसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से हमारे देश से इसमें हिस्सा ले रही हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, चिप में आज हम विदेशों में निर्भर करते हैं, तो इसकी अगर पूरा हमने प्रोडक्ट भी बना लिया, अगर चिप अगर नहीं है तो प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए चिप की हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, राइट फ्रॉम कंसेप्चुलाइजेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड देन फाइनली मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो एक देश में सेमीकंडक्टर का एक इकोसिस्टम सरकार ने बनाया है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कदम है, जो इस देश को विकसित भारत बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी बाय 2047। मैं समझता हूँ जिस तरीके से इस पूरे मूवमेंट है, इस पूरे मिशन में बड़ी बड़ी कंपनीज देश हमारे जुड़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी उसमें हमारे देश में भी डेवलप कर रहे हैं, जिस तरीके से जो इंडिया की एंटरप्रेन्योरियल प्रोवेस है, जो हमारे देश के बच्चे हैं जो कि काफी साइंस है, मैथ्स है, एसटीएम के, तो ये बहुत ही ज्यादा इसमें जब

0: काम करेंगे तो जल्दी ही देश में एक नया इनोवेशन लाएंगे, तो ये वो दिन दूर नहीं जब चिप टेक्नोलॉजी में या सेमीकंडक्टर में हमारे देश भी दुनिया के देशों के बराबर का हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है ग्लोबल सप्लाई चेन में आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज की अगर हम ग्लोबल स्थिति देखें, आज की अगर हम दुनिया की दिशा देखें या रुख देखें, इतने उतार चढ़ाव आने के बाद भी हमारा देश डटा रहा, तो ऐसे केस में आत्मनिर्भर होना कितने मायने रखता है, और ऐसे केस में सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर मिशन की महत्ता क्या और बढ़ जाती है?
2: जैसा कि अभी बात हुई कि TSMC जो ताइवान की कंपनी है जिसका मुख्यतः इसमें शेयर हुआ करता था, आजकल कुछ साउथ कोरिया, कुछ जापान, कुछ चाइना, थोड़े बहुत अमेरिका के पास भी था, तो इस कदर से निर्भरता थी कि कोविड जब आया, और मुझे अभी भी याद है एक समय लैपटॉप्स की शॉर्टेज हो गई, फिर जितनी भी चीजें, सब लोगों को एहसास हुआ कि चिप नाम की भी कोई चीज है। उससे पहले तो लोगों ने इसके बारे में इतना सुना नहीं था। ऑटोमोबाइल्स हो गया, टेलीकॉम हो गया, डिफेंस हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्मार्टफोन्स है, रिन्यूएबल एनर्जी, जितने भी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब बिना चिप के नहीं बन सकती। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को देखा, और आज हम 2026 की शुरुआत की बात करें तो करीब 10 प्रोजेक्ट्स भारत में इस समय पाइपलाइन में है, लगने के अलग अलग स्टेज पे हैं, और कुछ तो सेंटर्स भी बन रहे हैं। तो इसमें भारत को अपने आप को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हम दुनिया की मार्केट है, और सोचिए वो मार्केट अगर निर्भर रहे किसी के ऊपर। अभी हाल में हमने देखा कि जब तेल की दिक्कत आई, सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, यहाँ पर हमें तेल के साथ स्ट्रगल करना पड़ा, भारत सरकार ने उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी संभालने की, पर कीमतों के लिहाज पे हम मजबूर हो गए। तो मुझे प्रधानमंत्री जी का बार बार वो बात याद आती है कि जो दूसरे पर निर्भर रहेगा वो कभी ना कभी परेशानी में जरूर आएगा। तो मुझे लगता है यहीं से आत्मनिर्भरता 2020 में कोविड जब आया था उस समय निकल के आई, और सप्लाई चेन आपने देखा कि दवाइयों की हो, रेयर अर्थ मिनरल्स की हो, फूड ग्रेन्स की हो, हालांकि भारत को आज दवाइयों के मामले में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन्स के मामले में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सेमीकॉन में भी आज से एक दो साल बाद हमें हो सकता है कि हम उल्टा दुनिया की जरूरतों को पूरी करें अपनी जरूरतों के अलावा, और कपड़ों के मामले में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर बहुत सारे देश निहारिका आज दुनिया में ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा दुनिया पर निर्भर करते हैं, और ऐसे वक्त जब कुछ देश कोशिश करते हैं कि इसको हम दूसरों को ना सप्लाई करें, नए नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, टैरिफ्स लगाए जाते हैं, तो ऐसे में और जरूरी हो जाता है आत्मनिर्भरता। मुझे लगता है आत्मनिर्भरता जितनी कोविड में जरूरी थी आज उससे कई गुना आज की परिस्थिति में और ज्यादा जरूरत बन चुकी
1: है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करनी चाहिए हमें इस चर्चा में। जहां तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, एक डिफरेंस में हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं हुआ कि हम कुछ इम्पोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जहां तक डिफेंस की बात है वहां पर सेल्फ रिलायंस वर्सेस बेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना, इन दोनों में बैलेंस और संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, हमारे देश की क्या भूमिका रही है?
2: बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि आत्मनिर्भरता का ये अर्थ नहीं है कि हम अपने आप को दुनिया से काट लें और हम अलग थलग हो जाएं, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जितनी आपकी ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ तो वोकल फॉर लोकल की, ग्लोबल की बात की जाती है, आत्मनिर्भरता का मतलब है कि अगर कोई देश या कोई दुनिया की सप्लाई चेन अपने आप को काट देती है, रोक लेती है, तो उससे हमें परेशानी ना आए। और डिफेंस की आपने बात करी, एक जमाना था जब हम नट्स एंड बोल्ट्स भी जो हमारे टैंक्स में, मशीन गन्स में लगते थे, वो भी बाहर से आया करते थे, और आज अगर आप देखें तो 2014-15 से लेके आज तक की बात करूं तो करीब 1,78,000 करोड़ के हम टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में जा चुके हैं। इसमें आज भारत का बना तेजस जो लड़ाकू विमान है, उसको अभी पीछे विदेशी मेहमान आए थे, उनको बैठा के उसमें चलाया गया, और ब्रह्मोस मिसाइल है जिसके हमें ऑर्डर्स दुनिया भर से मिल रहे हैं। करीब करीब 70-80 देशों को आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट करने की पोजिशन में, वो देश जो नट्स एंड बोल्ट्स बाहर से मंगाता था आज ना केवल अपने लिए बना रहा है बल्कि दुनिया के लिए बना रहा है। तो यही मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग का सारा जादू है कि आप किसी तरह धीरे धीरे उसको सब्स्टिट्यूट करके पहले खुद अपने लिए बनाएं और अपने लिए बना के फिर आप दुनिया के लिए बनाने लग जाएं। तो ये डिफेंस एक ऐसा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद दूसरे नंबर पे अगर आप मुझसे पूछें कि जहां इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत ने महारत हासिल करी है तो डिफेंस में दूसरे नंबर पे डालूंगा, जहां पर हालांकि मैंने जैसे आपको कहा लेदर है, फुटवेयर है, टेक्सटाइल्स है, ये सब तो चलते ही हैं, पर जहां पर हम पूरी तरह से निर्भर थे वहां पर अगर हमने काफी हद तक आत्मनिर्भरता लाई है तो वो डिफेंस सेक्टर है, और यहीं पर सप्लाई चेन का महत्व बढ़ जाता है। और आजकल जैसी निहारिका, ये ना भूलें, हम जैसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया में बन रही है, मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर का धीरे धीरे आपको महत्व और बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
1: बिल्कुल,
3: देखिए डिफेंस एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पहले हम एक नट बोल्ट भी बाहर से इसमें इम्पोर्ट करते थे, बट आज डिफेंस सेक्टर को जो स्ट्रेंथ मिली है, आप देखिए ब्रह्मोस मिसाइल की बात करिए,

0: अब वंदे भारत ट्रेन एक ऐसी चीज है जो ना केवल ये कहने के लिए है कि भारत के पास एक नई ट्रेन है, लेकिन वो इंडिजिनस इंजीनियरिंग का बहुत खूब प्रदर्शन है।
1: देखिए, वंदे भारत उस एक पूरे इकोसिस्टम का एक रिजल्ट है जो पिछले 12 साल में देश में बना है, जो मेक इन इंडिया है। तो कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वंदे भारत जैसी ट्रेन भी हमारे ट्रैक्स में चलेगी, और जहां पे कि जो सुविधाएं हैं जैसे प्लेन में मिलती है, वही सुविधाएं आपको वंदे भारत में एकदम क्लीन, नीट, क्लीन, फास्ट, ऑन टाइम। बिल्कुल, ये एक ऐसी ट्रेन है जिसमें कि आपको सफर करने में एक बार आप उससे जर्नी करेंगे तो आपको बार बार उसमें करने का दिल करेगा। ये एक नए भारत की पहचान है। वंदे भारत एक नए भारत की नई पहचान है, एक कॉन्फिडेंट इंडिया की पहचान है।
0: आपके विचार वंदे भारत ट्रेन के बारे में?
2: मुझे लगता है निहारिका कि जो लोग विदेश जाते थे और खासकर जो विकसित हिस्सा दुनिया का है, वहां जाके जब ट्रेन में बैठते थे तो अक्सर उनके मुंह से एक बात आती थी कि ऐसी ट्रेन हमारे यहाँ क्यों नहीं होती हैं। तो मुझे लगता है वो सपना पूरा हो चुका है। अगर आप वंदे भारत को देखेंगे, जिन लोगों ने सफर किया, आज 162 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन भारत में ऑपरेशनल हैं, और हर थोड़े दिन बाद हमें एक नई वंदे भारत होती है, अब तो उसमें स्लीपर भी आ गया है। तो मुझे लगता है वंदे भारत ने भारत के रेल नेटवर्क को एक नई पहचान दी है, और इसको आधुनिकीकरण में पूरे के पूरे रेलवे का बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसमें स्पीड आई है, कम्फर्ट आया है, क्लीनलीनेस आई है, एफिशिएंसी आई है, और आपको एरोप्लेन का जो अनुभव जो लोग करते थे, उनको लगता था कि ट्रेन, क्योंकि यहां से जब जाते थे लोग कहते थे जो प्लेन में सुविधाएं हैं वहां ट्रेन में दिखती हैं, आज वो सुविधाएं हमारे देश में आ चुकी हैं। और इसकी वजह से निहारिका, मैं ये भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन हुआ है। आज रेलवे स्टेशन वो पहले वाले रेलवे स्टेशन नहीं रहे, आज बहुत सारे रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो कि आपको एयरपोर्ट की शक्ल में दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल। एक सवाल मैं यहाँ पर हमारे देश के एमएसएमई के बारे में पूछना चाहूंगी। हम यूं तो बड़े उद्योगों की और बड़ी फैक्ट्रियों की बात करते हैं जब हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें एमएसएमई की भी बहुत अहम भूमिका है।
1: बिल्कुल, देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आज हमारे देश में जो पहले रजिस्टर्ड एमएसएमई हुआ करते थे, करीब वो थे 2 से 3 करोड़, आज 8 करोड़ जो है रजिस्टर्ड, 80 मिलियन रजिस्टर्ड एमएसएमई हमारे देश में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी लाने के बाद जिस तरीके से एक फॉर्मल इकोनॉमी में इनका इंक्लूजन हो गया, और जिस तरीके से कोविड के टाइम में जो एक एमएसएमई को पूरा उसमें बहुत बड़ा दिक्कत आई थी, सरकार ने जिस तरीके से एमएसएमई को सपोर्ट किया, उसके बाद जो एमएसएमई की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 3-4 साल में, ये इसलिए देखने को मिली है जो इतने सारे जो हमारे स्कीम्स, बड़ी बड़ी जो योजनाएं चली हैं, चाहे आप मेक इन इंडिया की बात कर लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात कर लीजिए, आत्मनिर्भर भारत की बात कर लीजिए, या अब सेमिकॉन की बात करें, तो उसमें जो सप्लाई चेन में जो है, क्योंकि एक तो बड़ी कंपनीज है लेकिन उसमें एमएसएमई की बहुत बड़ी भूमिका है। जब एक ओवरऑल सप्लाई चेन, एंड टू एंड सप्लाई चेन की बात करते हैं, तो हमारे देश के एमएसएमई उसमें जुड़ेंगे, जुड़ रहे हैं, जो कि हमारे एक देश के लिए ओवरऑल इकोसिस्टम बनाने में बहुत बड़ी मदद होगी, और पूरा मैन्युफैक्चरिंग कल्चर हमारे देश में इससे पैदा हो रहा है।
0: बिल्कुल, और मेरा ख्याल है इससे और अपॉर्चुनिटी डेवलप करना भी एक बहुत आसान चीज हो जाएगी, ताकि आगे जाकर यही फैक्ट्रियां बड़े स्तर पर काम कर सकें।
1: बिल्कुल।
0: एक आखिरी सवाल आप दोनों से मैं करना चाहूंगी, और वो ये कि अगर हम बड़े चित्र को देखें, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई, डिफेंस, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव क्या रहा है और आगे जाकर हमारी कहानी किस तरह की होने वाली है?
2: मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव, शुरू में डॉक्टर मेहता ने बताया कि हमारे 65% आबादी 35 साल से कम की है, तो सबसे बड़ा बदलाव हमारी युवा शक्ति का एस्पिरेशनल होना है कि आज हमारी युवा शक्ति सपना देखती है, और वो 2047 में विकसित भारत खाली एक तारीख नहीं है, एक साल नहीं है। हर युवा कोशिश कर रहा है कि अपनी बेहतरी के साथ साथ वो देश की बेहतरी करे। और सबसे बड़ा बदलाव तो मैं मैन्युफैक्चरिंग को मानता हूं, तो मैं इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग जब भारत में जीडीपी में योगदान इसका बहुत कम हुआ करता था, धीरे धीरे वो योगदान बढ़ रहा है। और जो अगला बदलाव सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स, जिसकी बात करी, तीसरा बड़ा हम इकोसिस्टम है, और युवा आज नौकरी करने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए मेहनत कर रहा है कि मैं और साथ में लोगों को नौकरियां दूं। बहुत लाखों लोग आज स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं। बदलाव की बात करें निहारिका, तो शायद हमें 2 घंटे भी कम रहेंगे पर मुख्य मुख्य आपने पूछे तो मैंने उसका जिक्र
0: जी किया। बिल्कुल बिल्कुल।
1: सबसे बड़ा बदलाव जो पिछले 12 साल में देश में देखने को मिला है, ये एक बहुत ही विश्वास से भरा नया भारत। जो नया भारत आज भारत की पहचान है, भारत के नागरिक जब विदेशों में जाते हैं, जो पहले जाते थे, जिस तरीके से उनमें विश्वास है, और जो लोग जिस तरीके से हमें देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जिस तरीके से हमने मैन्युफैक्चरिंग

0: में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, और जो बाकी सेमीकंडक्टर अब जो मिशन बना रहे हैं, और बाकी फार्मास्यूटिकल्स में, जिस तरीके से हमने सारे स्ट्रेटजिक सेक्टर में अपने देश में एक नया इनोवेटिव कल्चर पैदा किया है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्योंकि आज जो है इनोवेशन जो लाने में सबसे बड़ी भूमिका है वो है स्टार्टअप्स की। और जिस तरीके से पिछले 3-4 साल में करीब 114 से ज्यादा यूनिकॉर्न इस देश में आए हैं, जो कि 2-2, 3-3 साल में, ये हमारी उस ताकत को दर्शाता है कि जब इकोसिस्टम एक बनाया जाएगा तो कैसे इस देश का युवा पूरे दुनिया को दिखा सकता है कि भारत कुछ भी करने को तैयार है। ये एक नया भारत है, ये हमारी नई पहचान है।
1: बिल्कुल, यानी आज के जमाने में हमें हर रूप में आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।
0: शुक्रिया, थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 16वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता और आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला। श्रोता मित्रों, आप सभी का पुनः स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि आगे कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो, फरमाइश
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेम सिंह जी, हमसे फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद आपका भी कॉल उठाने के लिए। बताइए कैसे हैं आप?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, और आप कॉल करेंगे और मैं ना उठाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
1: जी बिल्कुल, आकाशवाणी ईटानगर की सबसे अच्छी खासियत यही है कि आपका कॉल कनेक्ट हुआ तो जरूर से रिसीव होगा, रिसीव भी होगा और कॉल शामिल भी होगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और
1: मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हमारे यहाँ पे भी सोयाबीन की कटाई चल रही है।
0: ओके।
1: हाँ, और अभी दो हफ्ते में फिर से मतलब ये तो सामान पूरा मतलब फसल तैयार हो गई है ना, तो ये निकाल के घर ले जाएंगे और फिर से लहसुन और गेहूं की फसल लगाएंगे हम लोग।
0: अच्छा अच्छा, और ये फसल आप सिर्फ घर के लिए ही उगाते हैं या फिर कहीं बाजार में?
1: इसकी बिल्कुल सेल करते हैं, हम यहाँ से ले जाते हैं क्योंकि सोयाबीन हमारे पूरे क्षेत्र में लगाई जाती है ना।
0: अच्छा अच्छा, जी जी।
1: तो काफी उत्पादन होता है और व्यवसाय के रूप में मतलब खेती भी कर रहा हूँ मैं और भजन गायक भी हूँ।
0: अच्छा अच्छा, जी जी जी
1: जी। और हमारे पूरे क्षेत्र में सोयाबीन की फसल लगाते हैं, मतलब मैदानी इलाके है यहाँ पर। हमारे तो काफी अच्छी पैदावार हुई फसल की अभी।
0: जी जी जी।
1: और
0: हाँ जी।
1: अभी हमारे लोकेन जी से और हमारी बात भी चल रही थी।
0: अच्छा जी।
1: कि हाँ जी, ईटानगर के रिकॉर्डिंग के बारे में ही चल रही थी, तो बोल रहे थे कि हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग होगी, 100% होगी और सर ही आएंगे।
0: जी लोकेंद्र जी सभी को जानकारी देते हैं मगर उनका कॉल लगता नहीं है, ये अफसोस की बात है।
1: लगाते उनका भी लग जाता है, बट उनको थोड़ा टाइम कम मिलता है ना।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो भी बिजी रहते हैं अपने सैलून में।
1: हाँ जी
0: जी जी जी। तो प्रेम सिंह जी, आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: आप सुनवा दीजिएगा, फिल्म का नाम है आपकी कसम, इसका है करवटे बदलते रहे सारी रात हम। क्योंकि अभी करवटे बदल रहे हैं क्योंकि थोड़ा थकान हो रही है ना खेतों में काम करने की वजह से, तो थोड़ी नींद कम आ रही है।
0: जी जी जी जी, हाँ जी।
1: लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हंसी खुशी से पूरा दिन गुजर जाता है काम करते हुए। और जो हमारे सहयोगी काम करने के लिए आते हैं ना, तो उनसे भी मतलब हंसी मजाक मतलब बातें होती रहती है, उनके बारे में भी वो भी बोलते हैं। और ज्यादातर मैं फोन इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता हूँ ना, तो वो लोग भी सभी जानते हैं कि अभी सर को फोन लगाएंगे, मैडम को फोन लगाएंगे, हम आप रिकॉर्डिंग करवाएंगे, ऐसे ऐसे मतलब हमारी बातें होती रहती है।
0: ओके ओके। अभी फिलहाल कहाँ से बोल रहे, खेत से या घर से?
1: हाँ फिलहाल खेत से ही हम, सोयाबीन की कटाई हो गई है ना।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो बस अब कोली इकट्ठी करेंगे सभी लोग।
0: ओके ओके, जी जी जी। तो आज किन श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: जैसा कि हमारे कैप्टन साहब है लोकेंद्र वर्मा जी रहेंगे जी, भगवान सिंह परमार, आशुतोष अविनाश जी है, और केसे सिंह रातू, सुनिंदा रमेश चल, और हाँ इन सभी के लिए रहेगा डेडिकेट। और हमारा ग्रुप है ना हेलो फरमाइश ग्रुप
0: जी,
1: उसके गौतम राय बोले सर के लिए भी।
0: ओके, तो प्रेम सिंह जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो, फरमाइश।
1: सितारों के बीच से चुराया है आपको, मन से दोस्त बनाया है आपको, इस रिश्ते को कभी टूटने मत देना, बड़ी मुश्किल से दोस्त बनाया है आपको।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त शायरी।
1: धन्यवाद सर
0: जी।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से आपका मित्र दिलीप आहूजा बात कर रहा हूँ।
0: और सुनाइए, आप कैसे हो? बहुत दिनों के बाद आपने कॉल किया।
1: सर थोड़ा गैप रखना मेरी आदत है।
0: ओके जी जी, बहुत ही अच्छी बात है,
1: ताकि प्रोग्राम को भी हम बराबर सुन सके और हमारे जो दूसरे साथी भाई हैं
0: जी
1: वो भी अपना कॉल लगा सके।
0: जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। आप कॉल नहीं लगाते हैं फिर भी प्रोग्राम सुनते ही रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल सर
0: जी,
1: दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए ना।
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे लोगों से भी बातचीत होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें भी जी।
1: बाकी उदयपुर का मौसम अभी थोड़ा सा इन दिनों महीने भर से तो थोड़ी गर्मी बढ़ गई है।
0: अच्छा जी,
1: बरसात के आते पते नहीं है सर।
0: अभी
1: 9 सितंबर को हुई थी थोड़ी सी।
0: अच्छा,
1: ऐसा लगा था कि अब शुरुआत हो जाएगी। लेकिन वो बादल पता नहीं कहाँ रूठ के चले गए।
0: ओके, रूठ गए आपसे उदयपुर से।
1: बिल्कुल सर
0: जी जी जी। तो आज
1: सर,
0: हाँ जी,
1: दोस्ती से ही हमने शुरुआत की है तो आज एक दोस्ती मूवी का एक गाना याद आ रहा है।
0: अच्छा जी।
1: चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा।
0: जी, आवाज मैं ना दूंगा, ये सही है गाने के लिए, मगर हमें जरूर आवाज देते रहेगा बीच बीच में।
1: जी बिल्कुल जी। सर
0: हाँ जी, और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को दिलीप जी?
1: सर सबसे पहले तो आप रहेंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: उसके बाद में हमारे प्रिय मित्र महाकाल की नगरी उज्जैन से लोकेंद्र वर्मा जी, योगेश जांगड़े जी, श्रीपाल गोयल जी, गौतम राय बोले जी, तुकाराम यादव जी, गंगाधर सावनकर जी, रामपाल यादव जी, और उदयपुर से उदयलाल टेलर जी, जब्बार मोहम्मद जी, मुकेश जिंगर जी, और हमारे मित्र हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप के अन्य साथीगण।
0: इन सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं दोस्ती फिल्म के इस गीत को?
1: जी सर
0: जी। तो दिलीप आहूजा जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल।
1: सर जी आपका निमित्त श्रोता शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात करता हूँ सर।
0: जी शिवा लोहट जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मैं यही सोच रहा था कि कॉल मिलेगा कि नहीं, पर आज मेरी किस्मत ने साथ दिया और मेरा कॉल मिल गया। बहुत खुशी हो रही है सर आपसे बात
0: जी,
1: करके।
0: आप दिल से कॉल करेंगे, हम जरूर उसे उठाएंगे और कॉल लगेगा भी जरूर।
1: जी सर जी, जी। और ये आपकी आकाशवाणी की ईटानगर की यही खासियत मुझे सबसे दिल को छूती है और सर यहाँ बार बार आने की इच्छा होती है।
0: ओके जी, आइए जब भी दिल चाहे। जी जरूर आइएगा।
1: अगर रिकॉर्डिंग चलेगी तो कॉल जरूर रिसीव होगा, घंटी जाएगी। सिर्फ हमको मेहनत ये करना है कि घंटी को पहुंचाना है।
0: जी जी जी, हम तक पहुंचाना है घंटी उज्जैन से। जी जी जी।
1: और कैसे हैं सर आप?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर जी, और आपसे बात हो गई तो और अच्छा लग रहा है सर
0: जी। और क्या कर रहे हैं फिलहाल?
1: अभी सर जी कॉल ही मिला रहा था और
0: अच्छा।
1: आपसे बात कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद देखूंगा क्या करता हूँ।
0: अच्छा, और कहाँ कहाँ कॉल मिलाया आज आप?
1: सर जी देखिए, आज तो मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, आज मेरा लगभग कहीं 10 बजे तक मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने
0: अच्छा
1: कहीं नहीं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी
1: जी
0: जो और हमारा समय हुआ तो आपने हमें कॉल लगाया।
1: जी जी सर, सबसे पहला कॉल आपको ही लगाया है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और ये थोड़ा रहता है सर जी कि हम थोड़ा सा कहीं पे भी कॉल लगा रहे हैं, थोड़ा अंतर रख सके तो अच्छी बात
0: जी जी ये
1: है।
0: बहुत ही अच्छी बात कही जी।
1: उसमें ये रहता है कि नए लोगों को मौका मिलने का अवसर भी मिल जाता है।
0: जी जी जी
1: जी सर जी।
0: तो आप लोग थोड़ा सा गैप करते हैं तो नए श्रोता हमसे जुड़ते हैं, काफी सारे नए श्रोता हमसे जुड़ गए हैं इसके
1: जी
0: लिए
1: जी
0: जी
1: सर।
0: आप।
1: और फिर वो मजा भी नहीं आता, नया श्रोता आता है, नए विचार रखता है,
0: हाँ
1: नई
0: जी
1: बातें करता है,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल।
1: फिर वही वही कॉलर आते हैं तो सर जी वो अच्छा नहीं लगता है कि सर जी दाल रोटी कब तक खाओ,
0: घर की
1: बाहर
0: मुर्गी
1: का
0: दाल
1: खाना
0: बराबर।
1: तो खाना ही पड़ेगा।
0: जी घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना।
1: जी सर जी।
0: तो आज कहिए कौन सा फिल्म का गाना हम आपको सुनाएं?
1: सर जी एक मूवी है बर्दाश्त, उसमें गाना रहेगा सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा।
0: ओके जी, और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: हमारे मित्र रहेंगे सर जी पूरन वर्मा जी, पुरुषोत्तम कुमार जी, अविनाश जी, राकेश जी, गोल्डी जी, और अमल जी, विमल जी, और हमारे रमेश प्रजापति जी, गजराल लोधी जी, कल्याण सेन जी, और जितने भी लिसनर हमें इस कार्यक्रम में आज की शाम हमें सुन रहे हैं, सभी को डेडिकेट रहेगा सर।
0: ओके तो शिवा लोहट जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: ओके सर, बाय बाय।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया जी नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी योगेश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बस दो बार ट्राई किया फोन।
0: अच्छा, दो बार में ही लग गया, क्या बात है, आप तो किस्मत वाले हैं। बाकी लोग तो कंप्लेन करते हैं कि हमारा कॉल लगता ही नहीं। जी
1: कई बार मेहनत के साथ किस्मत का साथ होना बहुत जरूरी होता है।
0: जरूरी होता है।

0: कहा। जी,
1: जी
0: तो आपकी किस्मत ने आप साथ दिया और आपका कॉल लग गया, तो आज कहिए कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं।
1: रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से, ये वाला प्यारा सा गीत सुनवा देंगे फिल्म चांदनी से।
0: ओके, चांदनी फिल्म का गीत, और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: हमारे तमाम साथी जो लगातार आपके स्टेशन से जुड़े हुए हैं, सबके लिए।
0: ओके, तो योगेश जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी अब ये कुछ नाम ले ही लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: कुछ शिकायत करते हैं,
0: ये बात तो सही है। जी जी जी
1: जी जी जी, रानू जी हैं, श्रीपाल गोयल जी हैं, और लोकेंद्र जी हैं, दिलीप पहुजा जी हैं, जगदीश राय गर्ग जी हैं, धीरज रबारी जी हैं, और इसके अलावा सभी साथी जिनका नाम छूट गया होगा उनका भी स्पेशली।
0: ओके, तो योगेश जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ce bătă fia.
1: Din cu ce e cam fia, tu ne muce bătă.

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्कार सर।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका स्वागत है।
1: जी धन्यवाद सर, जैसे तैसे कॉल लगाए अभी।
0: ओके
1: हो गया सर।
0: जी जी जी, बहुत लोग कॉल ट्राई करते हैं ना, इसलिए बिजी रहता है।
1: जी सर।
0: जी, और
1: कैसा है सर? ठीक है, अच्छा है।
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
1: जी सर अब भी ठीक है, बस घर में बैठा हुआ है अभी।
0: अच्छा अच्छा, अभी दुकान जाने की तैयारी हो रही है?
1: जी सर अभी खाना पीना खा के दुकान जाएगा।
0: ओके ओके, हाँ जी हाँ जी। और आज कुछ ऑर्डर है कपड़ों का?
1: ऑर्डर तो है सर, बनाना अच्छा, पड़ेगा जाके।
0: अच्छा जाके बनाना पड़ेगा ना।
1: जी सर।
0: तो बिमल जी आप अकेले काम करते हैं दुकान में या फिर आपका कोई हेल्पर भी है?
1: जी सर मैं अकेला खुद ही करता हूँ,
0: खुद ही
1: है ना, बस्ती का दुकान।
0: ओके ओके,
1: कर लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी अच्छी बात है।
1: सर मोहरा फिल्म का मैंने सुना दीजिए, सुबह से लेके शाम तक मुझे प्यार करो ये गाना।
0: ओके जी हाँ, जरूर सुनाएंगे
1: जी। और ये गाना सबसे पहले आपको दिल के रहेगा।
0: थैंक यू।
1: और हम लोग का स्टाफ है अमोल बसुमतारी, फाइकुन मुंडा, रमेश पात्र, दिवासी हजूरिका, सुनीता बसुमतारी, संजय रानी गोगोई, विनोद गोगोई, अजित कुमार शर्मा, हुनाराम लालू, चंद्रकांत टाइट, सबको दिल के रहेगा। और रमेश प्रजापति, राकेश गोल्डी, भगवान सिंह परमार, पूरन वर्मा, शिवा लोहर भैया, पुरुषोत्तम भैया, और जितना सुन रहा है सबको दिल के रहेगा भैया।
0: ओके सभी को डेडिकेट करना चाहेंगे। ओके तो विमलदा कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्ते सर
0: जी। नमस्ते। हेलो फरमाइश, ईटानगर में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: शुक्रिया। वेलकम सर, मैं कश्मीर सोनामर्ग से आपका निमी श्रोता लतीफ अहमद रैना।
0: जी लतीफ अहमद रहमा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद कॉल उठाने के लिए।
0: जी जरूर कॉल उठाएंगे जब भी आपकी कॉल आएंगे। और काफी दिनों के बाद आपने कॉल किया हमें।
1: तो भी यहाँ पे थोड़ा यहाँ बिजी लग गया, यहाँ पे थोड़ा काम था उसकी वजह से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी
1: जी।
0: हाँ काम भी तो जरूरी है, काम भी करना चाहिए।
1: सही बात। यहाँ पे आजकल तो ज्यादा ये अखरोट का सीजन है ना सर, अखरोट और ये एप्पल का उतारते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी।
1: वो रहता है वैसे।
0: लतीफ जी आपका अपना बगीचा है?
1: हाँ है, यहाँ पे बहुत है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी।
1: कम ही है, उतना नहीं है, कम ही है। तो
0: अच्छा।
1: लोगों को तो बड़ा बड़ा
0: अच्छा,
1: एक एकड़ में है, दो दो एकड़ में है,
0: दो
1: चार चार बीघा में है।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: हाँ सर।
0: और जो
1: ज्यादा यहाँ तो जो हमारे गांव में है ना सर, ज्यादा तो अखरोट ही है।
0: अच्छा अच्छा, अखरोट ही ज्यादा उगता है।
1: हाँ ज्यादा तो अखरोट, और आजकल तो गिरी निकालते हैं सर।
0: अच्छा अच्छा जी।
1: आजकल जो ये महीना चल रहा है ना अक्टूबर का सर, इसमें तो हम तो गिरी निकालते हैं, जो है ना साफ साफ एक नंबर का गिरी होता है।
0: अच्छा अखरोट से?
1: अखरोट से गिरी निकालते हैं, वो ही बेचते हैं।
0: अच्छा जी जी जी।
1: यहाँ एक नंबर एक गिरी लेते हैं बापारी लगभग 1000 में।
0: अच्छा क्या बात है।
1: वहाँ पे कितना में बिकता है
0: इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं।
1: अच्छा।
0: जी जी जी, मैं तो सिर्फ अखरोट ही लेता हूँ जी। उसे अच्छा। जो आप गिरी निकालते हैं उसके बारे में हमें पता नहीं है।
1: वो तो यहाँ से 400 में एक किलो एक नंबर ये अखरोट बिकता है।
0: अच्छा जी जी जी।
1: हाँ सर।
0: तो लतीफ जी काफी अच्छी बात कही आपने आज अपने खेत बाड़ी के बारे में। तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत?
1: आजकल बादाम भी, जो बादाम है ना सर।
0: अच्छा।
1: उसको भी गिरी निकालते हैं, वो भी मार्केट में बेचते हैं।
0: बादाम का भी?
1: बादाम को जो गिरी होता है ना सर, उनको भी गिरी निकालते हैं, वो भी बादाम में।
0: अच्छा अच्छा।
1: बाजार में बेचते हैं।
0: ओके, तो बादाम की खेती भी होती है आपके वहाँ?
1: हाँ, जो ऊंची ऊंची जगह पहाड़ी क्षेत्र लोग है ना सर, वहाँ पे ये बादाम बनते हैं।
0: अच्छा जी जी जी जी।
1: अच्छा, जो मैदान इलाके ना जहाँ पे पानी होता है ज्यादा, वहाँ पे कम बनता है।
0: अच्छा ओके ओके जी। तो आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे लतीफ जी?
1: हम भी सुने लता मंगेशकर की आवाज में बेदर्दी प्यार में बालमा, नहीं वो गाना।
0: जी जी जी। हाँ जी
1: हाँ, वो ही गाना सुनाएंगे।
0: और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: रमेश प्रजापति।

0: जेलर मास्टर और राकेश शुमला और लोकेंद्र वर्मा नाना खेड़ बस स्टैंड उज्जैन से और गजराज लोधी लोकेंद्र वर्मा. थैंक यू.
1: ओके, इन सभी साथियों के साथ सुनना चाहेंगे. तो लतीफ जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। सर
0: जी लोकेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हो आप, सुनाइए।
1: बस बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आपके आकाशवाणी से जुड़े हुए रहते हैं। अभी ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है
0: जी
1: और श्राद्ध पक्ष में जो 16 दिन का जो रहते हैं, हमारे पूर्वजों को याद करने का दिन रहता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद तो हमारे परिवार पर बना ही रहता है।
0: जी जी
1: पर खास ये हमारे संस्कृति में 16 दिन ये श्राद्ध पक्ष के बनाए गए हैं हमारे पूर्वजों को याद करने के लिए, क्योंकि हम जलपर्ण का धूप ध्यान देते हैं, जो भी हमारे पूर्वज जो गुजर चुके हैं और उनको धूप ध्यान देकर पूजा आराधना करते हैं सर जी।
0: ओके, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले।
1: हाँ जी बिल्कुल सर जी।
0: ओके,
1: और मेरा तो मानना ऐसा है, जैसे पूर्वजों को तो हम याद करते हैं, उसके अलावा अपने जो घर में भी माता पिता हैं,
0: जी
1: हम उन्हें भी जो अभी हमारे घर में हैं उनको सेवा करें, उनकी सेवा का लाभ लें, क्योंकि मेरा तो मानना ऐसा है कि सर जी के चारों तीर्थ जो आप दर्शन करने के लिए जाते हैं उसमें आप अगर अपने माता पिता घर में हैं उनका ही चरण वंदन करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तो आपको तीर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस
0: नहीं।
1: उनके चरणों में ही सारे तीर्थ हैं सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी सर। और उज्जैन में जैसे महाकालेश्वर जी का प्रसिद्ध स्थान तो है ही सर ही, उसके अलावा यहाँ का एक इतिहास और पौराणिक कथाओं में बताते हैं कि राजा जो दशरथ जी जो शांत हुए थे, जब उनके उनका पिंडदान जो है यहाँ की क्षिप्रा नदी है यहाँ पर किया गया था, श्री राम जी ने किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, और एक गया कोटा मंदिर है यहाँ पर उज्जैन में, जो अभी काफी प्रसिद्ध है सर ये मंदिर भी अन्य मंदिरों की अपेक्षा में। यहाँ बहुत से तीर्थयात्री बाहर से आते हैं, जैसे गया जी है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, ऐसा यहाँ पर भी यह मंदिर है। बाकी बाकी मतलब बहुत प्रख्यात मंदिर है सर ये गया कोटा के नाम से।
0: अच्छा अच्छा
1: जी
0: बहुत
1: सर।
0: ही धार्मिक, बहुत ही पावन नगरी है उज्जैन। जी
1: जी बिल्कुल सर जी
0: जी किसी समय अगर वक्त मिला तो जरूर आएंगे दर्शन के लिए।
1: आइएगा सर जी, आपका स्वागत है, हम तो आंखों में पलके बिछाकर आपका इंतजार करेंगे, जब कभी भी आपका दौरा लगे तो आप जरूर उज्जैन आइएगा
0: जी। और आपके एक पकवान के बारे में काफी सुना था मैंने, आपका पकवान बनाना अच्छा लगता है।
1: जी जी
0: जी,
1: जी बिल्कुल, पकवान भी बनाएंगे और आपको यहाँ का जो प्रसिद्ध भोजन है, दाल बाफला, लड्डू है, ये सब कचौरी है, पोया है, जलेबी है, ये मतलब सभी पकवान आपको बिल्कुल खिलाएंगे आपको, मतलब मेरे साथ में बैठ के खिलाऊंगा आपको।
0: जी आपके बातों से मुंह में पानी आ ही गया है।
1: अभी सर नाश्ता कर रहा हूँ मैं, कचौरी खा रहा हूँ मैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा क्या बात है। जी जरूर आऊंगा, कभी जरूर आपके साथ खाऊंगा। हाँ जी,
1: जी सर।
0: तो
1: जी,
0: खाते
1: तो
0: खाते
1: सर
0: कौन
1: जी,
0: सा गाना आप सुनना चाहेंगे आज?
1: गाना सर इसी से जुड़ा हुआ है मेरा, फिल्म का नाम है संतान है।
0: ओके,
1: दीपक तिजोरी की फिल्म है, एसपी बाला सुब्रमण्यम।

0: ने इसको गाया है और गाने के बोल है दिलों में दुआएं आंखों में पानी जीसा जी, और कुछ दोस्त भी हैं हमारे, प्रेम सिसोदिया जी है, साधा प्रसाद जी है, दिलीप पाहुजा जी है, सतीश रघुवंशी, अनु कुमार भट्टाचार्य जी, अर्जुन प्रसाद जी, टेक चंद्र अग्रवाल जी, सुनील झा जी भोपाल से, और भाईकर मुंडा जी, और यह गीत भी रहेगा आकाशवाणी के लिए कि दिलों में दुआएं।
1: ओके, तो लोकेंद्र जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं
0: जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: That concludes our playlist. Music has a special way of helping us understand emotions that are often difficult to express, and these songs did exactly that. Thank you for joining me for this reflective collection of music. Stay tuned with us again tomorrow, same time, same station. This is Coco signing off, and keep listening to Akashvani Tanagar. Bye-bye.
1: जी हाँ श्रोता मित्रों, आप आनंद ले रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का। जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। जी हाँ श्रोता मित्रों, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के ठीक 9:01 हो रहे हैं और इसी के साथ ही अब समय हो चला है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। श्रोता मित्र, आइए कार्यक्रम के तहत आनंद लेते हैं गुजरे जमाने के कुछ

अनमोल गीतों का। इशारों को समझ लो जी, नजर का झुक जाना, जुबा का रुक जाना, इसी को मेरी जान मोहब्बत कहते हैं। नजर का झुक जाना, जुबा का रुक जाना, इसी को मेरी जान मोहब्बत कहते हैं। जी हाँ श्रोता मित्रों, पेश है कार्यक्रम का पहला नगमा पासपोर्ट फिल्म से, जिसे आवाज दी है गीता दत्त ने और इसे गीत के बोल लिखे हैं कमर जलाल जलालाबादी ने और संगीत से सजाया है आनंद जी विरजी साह ने। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये पहला गीत।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे पासपोर्ट फिल्म से इन खूबसूरत गीतों को। जी हाँ, ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। जी हाँ श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर और आप आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों का। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं निशान फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे निशान फिल्म के गाने। जी हाँ, इस गीत को आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। श्रोता मित्र, हम लौट रहे हैं एक अंतराल के बाद। आप जुड़े रहे हमारे साथ यानी अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे मैं चुप रहूंगी फिल्म से, इस गीत को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। श्रोता मित्रों, चलिए आपको इसी फिल्म का अगला गीत सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में।

श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे थे साहिब बीवी और गुलाम फिल्म के इस गीत का, आशा भोसले और अन्य साथियों की आवाजों में। इस आखिरी गीत के साथ अब हम कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के समापन पर पहुंच चुके हैं, साथ ही आप सभी से विदा लेने का समय भी हो चला है। श्रोता मित्र, उम्मीद है इस तीसरे प्रसारण सभा के कार्यक्रम आप सभी को पसंद आए होंगे, जिन्हें आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ बने हुए थे प्रसारण निष्पादक टी तांगजंग तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम और साथ ही हमारे अन्य सहकर्मी। जाने से पहले ये भी बता दें कि हमेशा की तरह आगे आप जुड़ने वाले हैं दिल्ली केंद्र के FM गोल्ड के साथ, तो आप जुड़े रहे अरुण FM 103.1 MHz पर। और आपसे फिर होगी मुलाकात कल प्रातः 5:48 पर, यानी हमारी पहली प्रसारण सभा के तहत। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो साथी नीलम को दीजिए अनुमति। आप रखे अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: रही लाल रंग सियामी ने रिवर्स शॉट उठता हुआ लगाया तेज और एकदम निशाने पर आंखों में चस्पा हो जाने वाला गोल शायद गोल ऑफ द टूर्नामेंट। भारत 1-0 से आगे हो गया और इसके बाद भारतीय रणनीति सिर्फ और सिर्फ रक्षण करने की रही। गाहे बगाहे मिले अवसरों को छोड़ दें तो खेल मध्य मैदान में होता रहा या गेंद चीन के खिलाड़ियों के पास ही रही और दूसरे क्वार्टर में भी चीन हमला ही करता रहा, भारत बचाव करता रहा। खासतौर पर सुशीला चानू और नवनीत कौर ने बहुत शानदार तरीके से चीनी आक्रमण विफल किए। फिर आया एक और दिल थाम लेने वाला क्षण, चीन का अटैक बना। पहले पेनल्टी कॉर्नर मिला, वो बेकार गया। उसके थोड़ी देर बाद उन्हें मिल गया पेनल्टी स्ट्रोक। किसी को भी लगेगा अब तो स्कोर बराबर। सविता पूनिया ने अकल्पनीय पूर्वानुमान के साथ अपने बाईं ओर गिरते हुए ग्लव से पेनल्टी स्ट्रोक का शॉट रोक दिया। हाफ टाइम स्कोर 1-0 और इसके बाद चीन ने चाहे जितना दबाव बनाया भारतीय अंततः उसे बेकार ही करते रहे। डिफेंस पूरी तरह शबाब पर, चीन के विरुद्ध चीन की दीवार की तरह डट गया भारतीय रक्षण। चौथे क्वार्टर में भारत ने यही रणनीति अपनाए रखी। समय की सुई घूम रही थी, वैसे वैसे चीन की खींच भी बढ़ रही थी, लेकिन भारतीय लड़कियां गेंद को मध्य में रख समय बिताने की कोशिश में लगी थी। अंत में हुआ ये कि चीन ने अपने गोलकीपर को भी मैदान से बाहर कर दिया, यानी सभी 11 खिलाड़ी अटैक पर। लेकिन तब भी भारत गोल पोस्ट खाली देखकर भी प्रत्याक्रमण के मूड में नहीं आया, बस एक ही मूव बनाया चीनी डी तक पहुंचने का और जैसे ही हूटर बजा लड़कियां उछल पड़ी, देश उछल पड़ा, स्वर्ण पदक भारत को। अब इंतजार रहेगा कि भारत की पुरुष टीम भी कल फाइनल में मलेशिया को मात दे दे और स्वर्ण पदकों की जोड़ी पूरी करे और वो भी 2028 ओलंपिक में सीधे प्रवेश कर ले। इस जीत ने भारतीय हॉकी और नीति नियंताओं को भी अच्छा मौका दे दिया है। अब तैयारियां करने, प्रयोग करने, नई प्रतिभाओं को मौका दे, देश के लिए बेस्ट टीम तैयार करने के लिए 2 साल का समय मिल गया है, वरना अभी करीब 1 साल और इंतजार करना पड़ सकता था ओलंपिक कोटा के लिए। चलते चलते ये भी बता दूं कि इसके पहले 1982 में अंतिम बार भारत ने महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था एशियन गेम्स में।
1: Next on to the wrestling mat, and this was a day when India had plenty at stake across 4 weight categories, and one of those bouts produced a quite extraordinary comeback. Here's Shahid Azmi with a wrestling report.
2: 8 साल का इंतजार खत्म हुआ, वो भी ऐसे कमबैक के साथ जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भारत के सुजीत कलकल ने एशियन गेम्स में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या में न सिर्फ इजाफा किया बल्कि जकार्ता 2018 के बाद पहली बार भारत को एशियन गेम्स में पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं रजत रुहाल, प्रिया मलिक और दीपांशी सहित 3 भारतीय पहलवान मैट पर उतरे थे, लेकिन वे कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सके। पहले बात गोल्डन बॉय सुजीत कलकल की। फाइनल मुकाबले में सुजीत ने ताजिकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदियेव को रोमांच के प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में 10-9 से शिकस्त देकर भारतीय खेमे को खुशी से भर दिया। सबसे खास बात यह रही कि पहले पीरियड के बाद सुजीत 2-9 से पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार 8 अंक जुटाए और मुकाबले के आखिरी 10 सेकंड में निर्णायक टेकडाउन के साथ बाजी पलट दी। इससे पहले सुजीत ने राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के सैयद उमर ज़ज़ाई को 13-3 से और क्वार्टर फाइनल में ईरान के अब्बास इब्राहिम को 10-0 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने जापान के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन कोटारो कियोका को 3-3 के बराबरी के बाद पॉइंट क्राइटेरिया के आधार पर मात दी। आपको ये भी बताते चले, सुजीत साल 2026 में अब तक अजेय है। एशियाई चैंपियनशिप और वर्ल्ड अंडर 23 खिताब जीतने के बाद अब एशियन गेम्स का गोल्ड भी उनके नाम रहा। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में दीपांशी कांस्य पदक से चूक गई। कांस्य पदक मुकाबले में उन्हें कजाकिस्तान की जेने बयानोवा ने चित करके यानी बाईफॉल के जरिए शिकस्त दी, जबकि महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया मलिक को राउंड ऑफ 16 में किर्गिस्तान की एपेरेमेडिट काइजी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह पुरुषों के 125 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में रजत रुहाल राउंड ऑफ 16 में कजाकिस्तान के एदगे कासिम बेग से 3-8 से हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कल भारत के 5 पहलवान मैट पर उतरेंगे, जिनमें पुरुषों में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम और दीपक पुनिया 97 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं में अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम और मनीषा 57 किलोग्राम में मैट पर उतरेंगी।
1: Now to the boxing ring. Three Indian boxers went into gold medal bouts today. Lavlina Borgohain, Parveen Hooda and Ankush Panghal. And all three emerged as Asian Games champions. For a golden day for Indian boxing, here's Shahid Azmi.
2: मुक्केबाजी रिंग में भारतीय मुक्केबाजों ने विरोधी बॉक्सरों पर ऐसा पंच जड़ा कि एक ही दिन में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लग गई और इतिहास के पन्नों पर लिख दिया एक नया गोल्डन अध्याय। एशियन गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा।

0: और अंकुश पंघाल ने अपने मुक्कों से बैक टू बैक 3 स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाल दिया। पहले बात लवलीना बोरगोहेन की, अपने जन्मदिन पर लवलीना ने खुद को और देश को शानदार तोहफा दिया। महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में लवलीना ने चीन की बाओ जी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही हांगझाऊ के रजत को स्वर्ण में बदलते हुए लवलीना ने इतिहास रच दिया। वे मैरी कॉम के 2014 के बाद एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई। लेकिन भारत का स्वर्णिम पंच यही नहीं रुका। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा का मुकाबला चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन चेन नियन चीन से हुआ। मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन परवीन ने शानदार धैर्य दिखाते हुए 3-2 से जीत दर्ज की और पहली बार एशियन गेम्स चैंपियन बन गई। इससे पहले परवीन ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमोवा और सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। और फिर बारी आई तीसरे स्वर्ण की। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अंकुश पंघाल ने कोरिया के किम मिसियोंग को 4-0 से हराकर भारत के लिए तीसरा गोल्ड जीता। अपने पहले ही एशियन गेम्स में अंकुश ने शानदार प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में 5-0 की जीत के बाद सेमीफाइनल में उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के फजलुद्दीन एरकिन बोए को 4-1 से हराया और फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भी अंकुश ने कोई मौका नहीं दिया और भारत की झोली में तीसरा स्वर्ण डाल दिया। इस तरह भारत ने बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण और 3 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते। इन 6 पदकों में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज पुरुषों ने जबकि 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज महिला बॉक्सरों ने जीते। आपको ये भी बता दे, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने इस इवेंट में 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत 4 पदक जीते थे।
1: Next to the archery range, and another memorable day for India. There was history in the women's recurve team event, while the mixed and men's team competitions also had Indian interest. Shahid Azmi has a complete story.
0: Nagoya में भारतीय तीरंदाजों ने आज निशाने पर ऐसा तीर चलाया कि पदकों से झोली भर गई। एक ही दिन में भारत ने तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किए। महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि मिश्रित और पुरुष रिकर्व टीम ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। यानी आज धनुष की डोर से निकले हर तीर ने भारत के लिए इतिहास की नई इबारत लिखी। बात पहले महिलाओं के ऐतिहासिक प्रदर्शन की करते हैं। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और सिर्फ 17 साल की कुमकुम मोहोत की भारतीय तिकड़ी ने तेज हवाओं के बीच शानदार धैर्य और सटीक निशाने का प्रदर्शन किया। फाइनल के शुरुआती 2 सेट बेहद रोमांचक रहे। दोनों सेट 54-54 और 56-56 की बराबरी पर खत्म हुए, लेकिन तीसरे सेट में भारत ने बड़ा पलटवार किया। दक्षिण कोरिया के तीरंदाज लगातार 3 बार 8 अंक पर रुके, जबकि भारत ने 55 अंक जुटाकर सेट अपने नाम करने के साथ 4-2 की बढ़त बना ली। चौथे सेट में दोनों टीमों का स्कोर 54-54 रहा। कीर्ति शर्मा के एक तीर ने समीक्षा के बाद 8 के बजाय 9 अंक दिए और भारत ने इतिहास रच दिया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में चीन को 5-1 से हराकर पहली बार महिला रिकर्व टीम के फाइनल में जगह बनाई थी। 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला रिकर्व टीम ने नागोया में पदक का रंग बदलकर सीधे स्वर्ण कर दिया। उधर रिकर्व मिश्रित टीम इवेंट में भारत ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए खेले गए फाइनल में धीरज बम्बा देवरा और कुमकुम मोहोत की भारतीय जोड़ी का सामना चीन से हुआ। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन चीन के हाथों भारत को 3-5 से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने शुरुआती 2 सेट गंवाए, लेकिन तीसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए 37-36 से जीत दर्ज की। चौथे सेट में दोनों टीमों के बीच 37-37 की बराबरी रही, लेकिन शुरुआती बढ़त के दम पर चीन ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। स्कोर लाइन की बात करें तो भारत को 34-38, 35-37, 37-36 और 37-37 से कांटे भरे मुकाबले में शिकस्त मिली। वहीं दिन के आखिरी फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक हासिल किया। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। पहला गेम 56-56 की बराबरी पर खत्म हुआ। उसके बाद दूसरे गेम में भारत 50-57 और तीसरे गेम में 54-56 से पीछे रह गया। इस तरह दक्षिण कोरिया ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत के हिस्से रजत पदक आया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी में भारत के पदकों की संख्या 7 हो गई है, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है।
1: On to Sepak Takraw, where both the men's and women's quadrant teams were in action today. Here's Anupam Pathak with the report.
2: Sepak Takraw में पुरुष क्वाड्रेंट में भारतीयों ने इतिहास रच दिया और इस स्पर्धा में पहला पदक कांस्य पदक हासिल कर लिया। आज भले ही सेमीफाइनल मुकाबले में जापान से उन्हें 12-15 और 13-15 से सीधे सेट्स में हार मिली, लेकिन सेमीफाइनल चक्र में पहुंचकर पदक तो उन्होंने पहले ही पक्का कर लिया था।

के आईची नगोया शहर में आयोजित हो रहे 20वें एशियाई खेल 2024 का सीधा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोताओ, आइए सुनते हैं सदाबहार गीतों पर आधारित कार्यक्रम जुगनू।

जुगनू कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल आवाज में गिरफ्तार फिल्म से।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

श्रोताओं, आइए अंतिम गीत सुनते हैं जसवाल सिंह और हेमलता की आवाज में फिल्म नदिया के पार से।

ये बेहद ही खूबसूरत गीत जसवाल सिंह और हेमलता के युगल आवाजों में 1982 में आई फिल्म नदिया के पार से। इसके गीतकार और संगीतकार है रविंद्र जैन। इसी गीत के साथ ही जुगनू कार्यक्रम का आज का ये सफर यहीं पर समाप्त होता है।

श्रोताओं को बता दूं इस वक्त हमारे सिरोही घड़ी में रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। इसी के साथ समय हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। उम्मीद करती हूं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। इसी प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हम आपके समक्ष पुनः हाजिर होंगे कल सुबह के 5:48 पर, यानी हमारी प्रभातकालीन प्रसारण सभा के अंतर्गत। तब तक के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सभी सहकर्मियों सहित प्रसारण अधिकारी तेलियन थंगजंग और तकनीकी अभियंता ताना आतुम के साथ अपने उद्घोषिका मारा को दीजिए इजाजत। शुभरात्रि। जय हिंद।